0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 21 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 14 डिग्रीज आज मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। वैसे यस, सनराइज जो है वो 6:29 पे हुआ था एंड 7:36 पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: Kiara, namaste, sat sri akal, welcome back. You are listening to Lunchbox Show. And yes, आप बने रहिए, because बहुत सारी बातें बतानी है इस आर में भी। How was your first hour? आप अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं? वैसे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप रेडी रहिए, कुछ मौके भी दूंगा यहाँ पे। सबसे पहला मौका मैं देने वाला हूँ इस आर में, जहाँ पे आप जीत सकते हैं ड्रॉ में शामिल होके ढेरों इनाम। वो इनाम क्या है वो तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी बोला और अभी आ गया, उसके लिए अच्छे से गाने सुनने पड़ेंगे, अच्छी बातें सुननी पड़ेगी, मुझे कॉल्स करने पड़ेंगे, मुझे मैसेजेस करने पड़ेंगे। सो या, दैट इज़ हाउ इट शुड, क्योंकि अच्छी चीज़ों पे थोड़ा सब्र भी चाहिए और साथ में सेम टाइम थोड़ी मेहनत भी। और यहाँ पे मैं फिजिकल मेहनत की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बस आप मुझे सुनिए और अपने आप को इन्वॉल्व करिए कुछ भी कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेशन और ये सारी चीज में। सो या, पहला गाना सबसे पहले तो चलाते हैं शौक। बहुत ही प्यारा लगता है यार मेरे को, मतलब एक नंबर गाना लगता है ये। सो यस, वो हम सुनेंगे गाना एंड उसके बाद मैं एक आज की कहानी भी लेके आने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो यस उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। एनी आइडिया किस तरह की कहानी होने वाली आज वो? वेल ऑब्वियसली रोमांटिक स्टोरी जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यस, यू स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू मी ऑन माई शो जिसका नाम है लंच बॉक्स शो, ओनली ऑन हम 104.2 FM के जरिए।
0: जाओ क्या?

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, movie music thode chala lete. That's pretty much kind of what music I wanted. Well, ye music isliye because ek kahani hai yahan pe padhne wala hu jo mujhe mili hai Project Gutenberg, The Gift of the Maggie. और उन्होंने ये लिखी गई है बाय ऑनरेबल हेनरी की ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मैगी 1905 की ये कहानी है. सो देयर यू गो. आज की कहानी है एक ऐसे कपल की जिनके पास पैसे बहुत कम थे लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा था. जिम और डेला एक छोटे से घर में रहते थे. क्रिसमस आने वाला था और डेला चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड जिम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो उसके लिए बहुत स्पेशल हो लेकिन उसके पास सिर्फ $1.87 ही थे. डेला के पास एक खूबसूरत चीज़ ये थी कि उसके लंबे सुंदर बाल और जिम के पास अपने फादर से मिली एक पुरानी गोल्ड वॉच थी जो उसके लिए बहुत ही कीमती थी. जिम के लिए वैसे गिफ्ट खरीदने के लिए डेला ने अपने बाल बीच बेच दिए और उन पैसों से जिम की वॉच के लिए एक ब्यूटीफुल चेन भी खरीद ली. जब जिम घर आए और उन्होंने डेला को शॉर्ट हेयर में देखा तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए. डेला को लगा शायद जिम को उसके बाल जो है वो पसंद ना आए लेकिन जिम ने अपने गिफ्ट निकाला. वो एक सेट ऑफ ब्यूटीफुल कॉम्ब्स थे जो डेला बहुत टाइम से अपने लंबे बालों के लिए चाहती थी. डेला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जिम को अपनी वॉच की चेन दिखाई लेकिन तब उससे पता चला कि जिम ने वो कॉम खरीदने के लिए अपनी गोल्ड वॉच ही बेच दी थी और दोनों के गिफ्ट अपने अभी उसी उनके पास नहीं थे. डेला के बाल छोटे थे और जिम के पास वॉच नहीं थी जिसमें चेन लगी लग सकती थी लेकिन उस रात दोनों को समझ आया कि उन्होंने एक दूसरे के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है. और इस कहानी की खूबसूरती यही है कभी कभी गिफ्ट की वैल्यू उनकी प्राइस से नहीं बल्कि उस प्यार और सेक्रीफाइस से होती है जो उसके पीछे छुपा होता है. जिम और डेला के गिफ्ट शायद उस वक्त काम नहीं आ सकते लेकिन उन्होंने एक दूसरे को दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट दिया और वो था अपना प्यार. और शायद इसीलिए द गिफ्ट ऑफ द मैगी आज भी हमें याद दिलाती है कि ट्रू लव का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं बल्कि उसकी खुशी के लिए अपनी फेवरेट चीज़ें भी छोड़ देना. बट यस, यहाँ पे आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये और इससे कोई बेहतर अगर आपको कहानी लगती है कोई तो फ्लिक मी द मैसेज 5599 पे आप मुझे भेजिए ताकि हम और उस पर चर्चा कर सकें.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम. हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
3: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
3: बस इतना ही.
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं. हमसे ना हो पाएगा.
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
12: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colors and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.
13: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
14: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
15: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल 09846-9934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।

0: visit abcsolutions.co.nz for more details.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum. Lunchtime rant line.
3: Well, ये रहा लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मैसेज नेहा का आया है. कहती हैं, आई एम फ्रॉम पापा टोटो. माय रेंट इज अबाउट पीपल हु कीप चेकिंग देयर फोन्स व्हाइल यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद देम. आई मेट अ फ्रेंड फॉर कॉफी यस्टरडे एंड एवरी टाइम आई वाज टॉकिंग शी वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और रिप्लाइंग टू मैसेजेस. एट वन पॉइंट I literally stopped talking completely and she did not even notice. If you wanted to spend time on your phone, why did you bother meeting me? That is so true. Bahut hi zyada irritating hoti hai that you are आप मिले हो किससे, किसी से मीटिंग है, एंड देन सडनली इन बिटवीन आप फोन चेक करते हो, ये सब करते हो, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन तो बिगड़ता ही है. सामने वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि भाई तू, तेरे को अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो क्यों. जस्ट से कैन वी टॉक लेटर, समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ ये चीज़ जो है ना, ये मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है दैट यू नो, जब मैं इन्वकागिल में था तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी मेरे को सीखने को मिली. बिकॉज आई वुड से आई बी ऑनेस्ट, और मैं खुद भी ऐसी हरकतें करता था जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ दैट दिस इज़ वेरी वेरी, वो कहते ना कि जब खुद करते हो तब पता नहीं पड़ता, लेकिन जब खुद के साथ होता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, जो आप कर रहे थे वो गलत है. और यहाँ पे ये है कि लिटरली दे आर ऑन फेस. जब मैं फ्रेंड्स बने थे यहाँ पे, तो जब आप कुछ कर रहे हैं, इनफैक्ट जब वो भी बिजी है तो दे विल जस्ट टेल यू, ब्रो इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई जस्ट क्विकली हैव अ लुक, ओ आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, ये सारी चीज़ें बातें जो है ना वो बोलते हैं, विच फेल्ट लाइक यार हाँ यार ये चीज़ सही है, लाइक दे समथिंग विच वी शुड बी लर्निंग एज वेल. तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है. बट यहाँ पे बताइए, अगर इफ एनी वन ओवर हियर वुड लाइक टू गिव सम रिस्पॉन्ड ऑन दिस, आप मुझे बता सकते हैं कॉल करके भी 0800-004-866 पे, या फिर मुझे बताइए ऑन 5599 टेक्स्ट पे भी. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हुई है तो आपने किस तरह से हैंडल किया है, आप मुझे बता सकते हैं टेक्स्ट करके या फिर कॉल करके. बट येस, मीनवाइल लेट मी जस्ट पुट सम लाइट ऑन वन मोर थिंग जो कि मौका देगा आपको जीतने का. लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर भी ना देख लो. रामकृष्ण मंदिर 25 वॉन्सलो एवेन्यू मनुकाव में नवरात्रि सेलिब्रेशन चल रही है, 20 अक्टूबर तक चलने वाली, शाम के 6 बजे के बाद. श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल नॉर्थ शोर, ये यहाँ पे होने वाला है 6:15 के बाद. श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर फ्रॉम 11 टू

0: वेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया। घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
9: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
0: इंडिया आ रहा है ऑकलैंड एंड द ब्लू टाइगर्स नीड योर वॉइस बिहाइंड देम। देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स की अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को। एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।
10: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
12: Kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
13: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
14: दिवाली बस आने ही वाली है तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
15: लंच बॉक्स विद केतन।
16: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
15: इसके पीछे
0: हम
15: Bosch pe. Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: वेलकम बैक. चलिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में ये रहा मौका जहां पे आप जीत सकते हैं शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम. वेल ड्रॉ जो है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है और पहला मौका ये रहा जहां पे आपको मुझे फॉर्च्यून लिख के FORTUNE लिख के स्पेस और अपना नाम मुझे 5599 पे भेज दीजिए बिकॉज इसके जरिए आप जीत सकते हैं $1,000 कैश. And yes, Fortune with whole grains, essential vitamins, Fortune fuel every event and big or small, bring home the fortune. So yes, इनकी तरफ से ये है प्राइज. आप जरूर हमें अभी से मैसेज लिखना भेजना शुरू कर दीजिए. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई. आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं hum.roa.nz और अभी से लेके आपके पास सिर्फ उसे 5 मिनट है जहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं. So yes, within 5 minutes, you need to start sending me text. Write down Fortune, space, और अपने नाम के साथ भेज दीजिए मुझे 5599 पे.

चाक बुरा करते हाथ, पलक फड़के हाय के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमां, कातिल अदा जालिम हया।

0: उसने तन्हा छोड़ दिया, हवाओं की तरह मैंने भी रुख मोड़ दिया। बराबरी का खेल रहा इस दफा यारो, मैंने उसका उसने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
2: मैं हूँ हरीश लोढ़िया। दिवाली की धूम एट सोना संसार, नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है। सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है। लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटॉय कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 6293333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
4: अच्छा
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: Time check. Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800 000010.
8: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 2. National is promising it will legislate 5 key commitments in its first 100 days if it's re-elected. They include widening access to 5% deposits for first-time buyers and extending paid parental leave. The party says the aim is to make New Zealand more attractive and affordable for young people. Meanwhile, Labor's leader is standing by his party's claim that the typical family is $6,000 a year worse off under Luxon. ACT has hit back, pointing to high inflation when Labor was in power. But Chris Hipkins says the math stands.
10: These are facts. These are verifiable numbers that anyone can go and check.
9: Public health experts want more effort to help new parents establish screen-free routines. It follows a review of offshore studies linking it to a range of harms. Auckland Uni's Samantha Marsh says it requires a shift.
11: Parents turn to screens during these things like mealtimes because they're difficult times of the day. I was encouraged to do that when my kids were little, around brushing their teeth.
9: Electric Avenue is releasing an extra 4,000 tickets for its sold-out festival in Christchurch. However, they are being put aside exclusively for Greater Christchurch residents, with a promise that full details will be revealed soon. To Rugby League with Machinery House, and while most hype is centred on Thursday night's opening World Cup clash between the Kiwis and the Kangaroos, there is another crucial game coming up. Tongan coach Christian Wolf is preparing his team to meet England.
12: We're both getting the same preparation, and this game is a big one for us. It's a big one for both teams. If you have all the lineups, it is going to be a cracker. It's two really strong teams as well.
9: And in football, Coventry City has thumped Newcastle 4-1 to win their first Premier League game at home in 25 years.
7: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: वेदर के हालचाल आज जान लेते हैं। आज करीबन 23 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है एंड 15 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। 10% चांस है बारिश के आज, लेकिन 7:36 पे होगा आज का सनसेट।
8: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
14: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। लंच बॉक्स विद केतन।
15: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
13: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan hai aur aap mujhe sun rahe hain hum 104.2 FM ke zariye. Waise yes, बने रहिए, बिकॉज इस आर में भी आपके लिए बहुत कुछ है जो मौके मैंने लास्ट आर में दिए हैं, और अगर आपने मिस आउट किए हैं तो डोंट वरी, एक और मौका यहाँ पे मिलने वाला है, आप इस आर में ट्राई कर सकते हैं. बट यस, द थिंग इज यू नीड टू लिसन टू मी एंड आई मीन लाइक कीप लिसनिंग द शो एंड ऑफ कोर्स एंजॉय द म्यूजिक एज वेल. सबसे पहले तो कंगना तेराणी साण कर दे इशारे, मेरे को सीखना है यार. आई वॉन्ट टू बी गुड इन पंजाबी, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक बार पंजाबी गाने ट्राई कर. मैं उनको बोलता हूँ कि यार मेरे को हिंदी गाने याद नहीं होते ढंग से, पंजाबी कैसे गाऊंगा. एक तो लैंग्वेज भी एकदम ही लाइक दिस इज़ माई थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज आई वुड से, तो मतलब कम्प्लीटली न्यू है. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आजकल आई एम ट्राइंग टू लर्न इट, बट यस एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू लर्न बिकॉज काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक गाने हैं. एंड इनफैक्ट मैं बॉलीवुड के गाने बहुत ही गाता था, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले भी आजकल क्या कितने सालों से यूज़ करें, लेकिन आजकल की फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. दे आर सो डिपेंडेंट ऑन पंजाबी म्यूजिक विच इज़ सो ग्रेट, एंड ऑब्वियसली पंजाबी म्यूजिक चलता है तो मज़ा तो आता ही है. सो यस, मुझे सीखना चाहिए. कोई अगर किसी ने मुझे अगर सुना है, मेरी आवाज़ सुनी है, तो कोई गाना आप बताइए जो मेरी आवाज़ को सूट करेगा एंड विच आई शुड बी मेकिंग अ कवर ऑन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट विद द बैंड. सो आई शुड बी मेकिंग दैट, बट आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. अभी के लिए एंजॉय करिए कंगना तेरानी बाय लैम्बर.
8: बचाओ क्या

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. और ये रहा एक लेटेस्ट खबर जो कि है अबाउट वेलिंगटन टनल में मिला ह्यूमन ब्लड और पुलिस ने कहा है कि सस्पिशियस नहीं है. वेलिंगटन के रोंगोटाई एरिया में कॉट स्ट्रीट के पेडेस्ट्रियन टनल में 4 अक्टूबर की रात को ब्लड का एक बड़ा पूल मिला था और ये टनल वेलिंगटन एयरपोर्ट के नीचे से गुजरता है और मीरो स्ट्रीट मीरामर तक जाता है. रात करीब 10:40 पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई. इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि ब्लड ह्यूमन ब्लड था लेकिन पुलिस को आसपास कोई इंजर्ड पर्सन नहीं मिला और अब पुलिस ने कहा कि ये इंसिडेंट सस्पिशियस नहीं है और इस मामले में अब फर्दर पुलिस एक्शंस की जरूरत नहीं है. हालांकि ब्लड वहां कैसे आया पुलिस इसकी सर्कमस्टांसेस जो है वो कंफर्म नहीं कर पाई है. सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या अपडेट आता है आफ्टर उनकी जो पूरा चेकअप हो रहा है उसके बाद जैसे ही कुछ खबर आती है डेफिनेटली वी विल लेट यू नो. बड़ा भी के लिए एंजॉय करिए अमेजिंग से एथ एंड ऑफकोर्स उसके बाद आपको मौका भी देने वाला हूँ मैं बहुत ही जल्द जहाँ पर आप जीत सकते हैं ड्रॉ में शामिल होने का मौका और उसके थ्रू बहुत सारे इनाम.
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: Ladies and gentlemen,
4: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 80 years.
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
5: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
6: How does one person finance on a new JQ sound? Right now at West City Omura JQ, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the JQ J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
7: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtaon ke vastra, sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Deena and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
12: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. दैट्स commonwealthvault.co.nz.
13: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
14: कभी भी कहीं भी. लंच बॉक्स विद केतन.
15: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
14: इसके पीछे
13: हम
14: स्किप या रीप्ले.
16: चलिए, ये मैंने पहले भी अनाउंस किया था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस स्किप या फिर रिप्ले. इसको स्किप तो करने दूंगा नहीं, रिप्ले मैं जरूर कर देता हूँ अपना अनाउंसमेंट. एक दिया एक कहानी. दिस दिवाली ऑन हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक ऐसा त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए, जो आप सभी को पता है कि दिवाली किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है. द विन ओवर द एविल्स. बट यस, सेलिब्रेट समवन स्पेशल इन योर लाइफ एज वेल. वो बस आपके ब्लड मेंबर नहीं होना चाहिए, बट फैमिली बाय हार्ट डेफिनेटली. तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है 0800-004-866 पे और हमें बताना है एक स्पेशल दिवाली शाउट आउट. जी हाँ, वो कौन सा शख्स है जो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट शुडन्ट बी योर डायरेक्ट रिलेशन टू दैट पर्सन, यानी कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए बेसिकली. सो यस, आप करिए और हम उससे शाउट आउट भी देंगे, एंड प्लस उसके साथ ही आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और वहां से आप जीत सकते हैं $300. ड्रॉ जो है वो 6 नवंबर को होगा, सो यस, इस दिवाली सिर्फ दिवाली नहीं, आप उस शख्स के लिए भी एक स्पेशल शाउट आउट दो एंड मेक दैट पर्सन फील सो गुड एज वेल। सो अभी आप फोन कर सकते हैं मुझे 0800-004-866 पे, मैं मोस्टली एक ही कॉल उठाने वाला हूँ। सो यस, जल्दी से आप अपना लक ट्राई करिए एंड गिव मी द कॉल एंड या उसके साथ ही आप उसके बाद ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जिसके जरिए आप जीत सकते हैं $300। सो यस, योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वेरी लिमिटेड टाइम इज लेफ्ट, बट जब तक कॉल नहीं आता है मीन टाइम मैं कुछ और भी अपडेट देता हूँ आपको। दिवाली स्पेशल ऑन हम, दिवाली आप एक्सपीरियंस करिए। मंडे ऑनवर्ड्स शुरू हो चुका है, हम आपके लिए लेके आए हैं रामायण एक गाथा, अ स्पेशल प्रोड्यूस सीरीज ऑफ 1 to 2 minute एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट, जहाँ पे ऑफकोर्स आपको कुछ मेमोरेबल स्टोरीज का भी पता पड़ेगा, कैरेक्टर्स एंड मूवमेंट फ्रॉम द रामायण, और उसके साथ ही जो डिफरेंट टाइम्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। सुबह 8:20 पे, फिर 1:30 और फिर 6:45 पे, एंड दी शॉर्ट बट पावरफुल स्टोरीज आर डिजाइन टू ब्रिंग द स्पिरिट, जी हाँ, जो आप सुन सकते हैं। सो रामायण एक गाथा ओनली ऑन हम, और उसके साथ ही इलेक्शन टाइम भी चल रहा है तो क्विल वोंग, वी आर पुटिंग द स्पॉटलाइट फॉर द अपॉर्चुनिटी पार्टी, जहां पे हम बात करेंगे पार्टी लीडर क्विल वोंग, उनसे कन्वर्सेशन होने वाली पार्टी पॉलिसीज को लेके, पॉलिटिकल अलाइनमेंट एंड विजन फॉर न्यूजीलैंड एज वेल। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो पार्टी कहां स्टैंड करती है और क्या थॉट प्रोसेस है उनका, सो ये सारी बातें आप सुन सकते हैं 5599 पे, मुझे ड्राइव लिख के भेज दीजिए अगर आपका कोई सवाल है, तुम्हारा सवाल लिख के। चलिए फोन आ रहा है, फोन उठा लेते हैं। हेलो,
17: हेलो,
16: हाय, किससे बात हो रही है?
17: मैं ज्योति बोल रही हूँ, इट्स हम एफएम।
16: हाँ जी, हाँ जी, आप ऑन एयर हैं अभी, सो आई एम प्रीटी श्योर आपने सुन के कॉल किया, राइट, विद अबाउट द रिगार्डिंग द कंपटीशन, राइट?
17: या,
16: परफेक्ट। तो बताइए, बताइए हु इज दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ?
17: ओके, सो स्पेशल पर्सन लाइक मेरे हस्बैंड के जो ग्रैंडफादर हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मेरा उनसे मतलब कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मतलब लाइक वो मेरे फादर इन लॉ के वो फादर
16: जी,
17: तो उन्होंने हमेशा मेरे को आफ्टर मैरिज हर बात के लिए बहुत इंस्पायर किया है, लाइक जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब थी तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि कभी भी छोड़ना नहीं चाहे कुछ भी हो जाए,
16: right.
17: और ये बहुत मुश्किल से मिलती है, चाहे आफ्टर बेबी कुछ भी हो, तुम्हारे पास कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, डोंट लीव योर जॉब, ब्रेक ले लेना, बट कभी भी मत छोड़ना और किसी की बातों पे मत आना कि right. तुम छोड़ दो, फैमिली प्रेशर है या कुछ भी है, किसी की भी मत सुनना। और मुझे उनकी ये बात हमेशा बहुत याद रहती है, अभी तो वो नहीं है, और हर बात पे वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक गवर्नमेंट जॉब में थे और वो मुझे हर टाइम गाइड करते रहते थे कि नहीं ज्योति तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अब यहाँ पे तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो लाइक यू नो, जैसे मैं शाम को ऑफिस से घर पहुंचती थी तो वो लिटरली मेरी वेट कर रहे होते थे कि वो मेरे से चिट चैट करें कि पूरा दिन कैसा रहा, और यू कांट बिलीव उनकी एज उस टाइम 87 थी। 87 तो मैं लिटरली उनके लिए ना रास्ते से समोसा और जलेबी लेके जाती थी और हम बैठते थे, चाय बनाती थी मैं और हम बात करते थे, वो मुझे अपने दिन का सारा दिन का हाल बताते थे और मैं उनको बताती थी। और मुझे याद है कि जब हम न्यूजीलैंड मूव हो रहे थे, मुझे नहीं पता वो कब गए, क्या हमारे घर के पीछे एक टेम्पल था वहाँ, वो रोज मतलब पंडित जी के पास जाते थे और कहते थे कि ये मेरी डॉटर, मतलब डॉटर टू मतलब डॉटर इन लॉ ही होगी मैं उनकी, कब मूव होएगी, यू नो इसको ये बहुत अच्छे उसमें है भी जॉब में, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता बाहर चला जाए और बाहर जाके सेटल हो जाए। वो हमेशा उनके पास जाते थे, पंडित जी से पूछते थे, हम दोनों की पत्रियां भी ले गए, पूरा दिखाया, सब कुछ करा, फिर पता नहीं एक के पास मेरे को लेके गए, वो मेरे मतलब उनके रिलेशन में ही थे, वो भी बहुत बुजुर्ग थे, तो उनसे कोई रिंग बनवाई कि ये तुम पहनो और इससे तुम्हारा लक बहुत अच्छा आएगा। तुम सोचती थी हे भगवान, मतलब ये कितना सोचते हैं ना लाइफ में, कोई किसी के बारे में इस एज में आके सोचेगा, तो मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता, मतलब मेरे पेरेंट्स से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखते थे और सोचते थे मेरे बारे में, विच इज यू नो, मैं बिल्कुल, मेरे को वर्ड्स नहीं आके एक्सप्लेन करने के लिए. वो जहाँ भी हैं, मैं यही प्रेयर करूंगी कि गॉड उन्हें हमेशा खुश रखे और यही थिंकिंग लेके वो दोबारा आए होंगे इस दुनिया में. तो या सो सबको मैं विश करती हूँ कि सबको ऐसी फैमिली मिले जहाँ आपके फादर इन लॉ के फादर आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं.
16: मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंसान करे, नॉट जस्ट फादर इन लॉ, फादर के फादर इन लॉ. नहीं
17: बिल्कुल हाँ, मतलब मेरे को इतना डर लगता था ना उनके पास बैठ के शुरू शुरू में. सब ये होता है ना कि लाइक वो थोड़े बहुत बुजुर्ग थे तो सब कहते थे नहीं आप मतलब हमेशा उनके सामने साड़ी में ही जाना है या ये ड्रेसअप ऐसे होके जाना है. बट वो इतने फ्री थे ना, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते थे. वो कहते थे मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, मतलब तुम सूट पहनो कुछ भी करो, मेरे सामने पल्ला वल्ला करने की भी कोई जरूरत नहीं है. तो मतलब वो मतलब बहुत बियॉन्ड जाके उन्होंने मेरी हेल्प करी है और उन्हीं की विशेष की वजह से मैं न्यूजीलैंड आ पाई.
16: राइट.
17: तो मैं कहती हूँ हाँ मैं बहुत सक्सेसफुल रही इसमें. तो उन्होंने ही मुझे यहाँ आने के लिए भी बहुत मोटिवेट करा कि नहीं तुम जाओ और जब तुम्हारा वहाँ सेटल हो जाए तब तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ना. मैं लिटरली एनओसी लेकर आई थी अपने ऑफिस से.
16: वाओ.
17: जब मैं यहाँ मूव हुई थी हाँ मैं 2-3 महीने का ब्रेक लेकर आई थी, एनओसी लेकर आई थी मैं, ताकि मैं यहाँ आके देख लूँ कि मैं सेटल हो सकती हूँ कि नहीं. जब मैं सेटल हो गई तब जाके मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी.
16: That's so sweet. That's so sweet.

0: उठाना है, अब ये बात करनी है, मतलब लिटरली ना बहुत वो, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के लिए इतना भी कर सकेगा.
1: ट्रू ट्रू
0: तो
1: ट्रू
0: मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जब भी जाती थी हमेशा उनके बारे में बोलती थी, नहीं बाबा ऐसे हैं, बाबा ये हैं, क्योंकि हम उन्हें बाबा बोलते थे घर में,
1: जी जी
0: बाबा
1: जी
0: जी ऐसे हैं, बाबा जी ये हैं, बाबा ने आज ये किया, आज वहां वो मुझे ले गए उस टेम्पल में, कहते थे यहाँ पे हाथ जोड़ो तुम्हारा काम हो जाएगा. भगवान कितना सोचते हैं वो,
1: ट्रू
0: बल्कि
1: ट्रू
0: अपने पोते के लिए नहीं, वो उनके लिए नहीं इतना वरिड करते थे, लेकिन मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे,
1: वो एक्चुअली
0: तो
1: इम्पोर्टेंट
0: उनको
1: भी है,
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: बहुत लगता था.
1: हाँ वो एक्चुअली है भी सही है. बट थैंक यू सो मच ज्योति जी आपके कॉल के लिए एंड शेयरिंग सच ए वंडरफुल स्टोरी, सच ए वंडरफुल आपकी पर्सनल स्टोरी शेयर करने के लिए. बट यस, आपका नाम होता है ड्रॉ में शामिल एंड एंजॉय द इवनिंग. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू, बाय. Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dream.

0: Dear. Streaming on Rover.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
2: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
3: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800-564-424।
4: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th नवंबर। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
6: Exclusive UK and Europe flights are on sale now at Flight Centre. Experience world class with Singapore Airlines, flying return to London from 2,625 per person. Book online or in store today. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
7: 35 minutes and we've moved 3 kilometres. Welcome to Peak Hour Commute, bye. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
8: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
7: Yeah, that sounds like me.
8: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
7: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
9: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The cosmetic clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali!
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ, अच्छा
12: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
16: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
16: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। लंच बॉक्स विद केतन।
18: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
16: इसके पीछे
17: हम।
16: टेक टॉक।
19: टेक टॉक में आपका स्वागत है। चलिए बता देता हूँ अभी की लेटेस्ट खबर। ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ने फॉल्टी बस कार्ड रीडर्स की वजह से पैसेंजर को ओवरचार्ज करने पर अब तक 400,000 से ज्यादा रिफंड कर दिया है और इस टेक्निकल ग्लिच से लगभग 14,400 पैसेंजर्स की 19,500 जर्नी अफेक्ट हुई है। एक पैसेंजर ने तो 17 जर्नीज के लिए करीब 433 एक्स्ट्रा चार्ज हुआ और जिसका टोटल 562.60 रिफंड किया गया। प्रॉब्लम टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन की थी, जिसकी वजह से सिस्टम ने कुछ जर्नी गलत रिकॉर्ड की और पैसेंजर्स से डिफॉल्ट फेयर चार्ज किए। अभी भी लगभग 47,800 का रिफंड 1,615 पैसेंजर्स को देना बाकी है, जिनके ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है। पैसेंजर्स अपना रिफंड क्लेम करने के लिए एटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लेम करने के लिए उनके पास 6 साल तक का टाइम है। कॉमर्स कमीशन भी एक्सेस कर रही है इस मैटर में, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं। बट यस, ये तो थी कहानी इसकी टिकटॉक की। बट एट द सेम टाइम लेट मी पुट दिस हियर, अभी दूसरा जो मौका है फॉर्च्यून फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहां पे आप जीत सकते हैं शेयर्स ऑफ $5,000 प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। कीवर्ड लिखना है आपको IH, जी हाँ IH लिखिए स्पेस के साथ अपना नाम और मुझे भेज दीजिए 5599 पे। जो इनाम है वो लेके आ रहे हैं इनडेलिबल होम्स, उनकी वेबसाइट भी आप विजिट करिए indelibleHomes.co.nz। एक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं ये, बहुत ही बढ़िया घर बनाते हैं। सो यस, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई और इस ड्रॉ के थ्रू आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स। वेल यस, hum.rua.nz जहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और आपके पास ठीक 5 मिनट है जहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ड्रॉ। सो IH लिखिए स्पेस और अपना नाम मुझे भेज दीजिए 5599 पे।
5: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है। बिन ट्राई रहे फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
8: The Cooperative Bank are in the house. Got that home dream, but don't know where to start? Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for where you could be tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. We got you.
9: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz for T's and C's.
10: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
11: यस बेबो.
10: कैच क्या है?
11: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स. साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
10: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
11: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड.
12: PNC supply.
13: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
14: अच्छा,
13: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
14: मिसेस सिंह.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 0928130050 और विजिट फोकस किचन.
0: Time check.
9: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00-00-10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
17: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Prime Minister has shrugged off questions about New Zealand's perceived lack of commitment to pandemic cooperation. We're one of the two countries that abstained on a political declaration of prevention, preparedness and response. Christopher Luxon says Winston Peters made the call.
18: There's a number of UN declarations. In this case, this doesn't require a cabinet decision. It is a decision for the Minister of Foreign Affairs.
17: Winston Peters says it's essential that sovereign decision-making on health is protected, but Labor says we've shown cowardice. Changes are coming for the Teaching Council in the wake of a damning report. It found there were at least 10 opportunities to intervene over former teacher Timothy Fisher, who has been jailed for indecent assault. Governing Council Chair Patrick Walsh says they're apologising to children and their parents.
19: And to the profession, because the vast majority of teachers are professional and competent, but we need to do a better job removing the bad apples.
17: Police have confirmed a large pool of human blood found in a pedestrian underpass in Wellington's Rongotai is not suspicious. They have determined its source since the weekend. And Taika Waititi has revealed he's slowly chipping away at a sequel to the hit movie Boy. In an interview on Rover, the Kiwi filmmaker confirmed he's wanting to make Girl, adding he's only about 10 sentences in. To sport, a busy week for top New Zealand sport in Sydney. On Thursday night, the Rugby League World Cup kicks off. The Kiwis well stocked up front for the likely wet conditions against the Kangaroos. On Saturday evening, Game 2 of Rugby's Bledisloe Cup. AB's coach Dave Rennie seemingly intent on increasing competition ahead of the Northern Tour. And tomorrow evening in Sydney, the NBL, the Breakers continue the sweep of away games, taking on the third-placed Sydney Kings.
9: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 19.2 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. थोड़ा ह्यूमिडिटी लेवल भी आज रहने वाला है. सनसेट आज 7:36 पर.
0: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Coffee break with Sandy.
1: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप? एंड कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड 4 तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. 4 के बाद ड्राइव शो यहाँ पे शुरू हो जाएगा. एंड लेट्स सी इफ रुजबे जॉइंस अस टुडे और नॉट. व्हाट डू यू थिंक? आज रुजबे यहाँ पे पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा? वोट नाउ. 5599 इज द नंबर. एंड खैर इसके बारे में और बात करेंगे. एंड दिवाली के टाइम पे ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. तो डिफरेंट टाइमिंग्स में आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है. $300 कैश भी है. एक दिया एक कहानी. ये कहानी क्या है अगर आपने मिस आउट की है, इसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी इसी आवर में. ऑल वाइट्स वर्सेज इंडिया के मैच का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए भी स्टे ट्यून. एंड अगर आप बाली एंड बैंकॉक का प्लान बनाना चाहते हैं फॉर द मार्च 2027, डिटेल्स आपके लिए और एक स्पेशल ऑफर दिवाली के मौके पे ये भी शेयर करने वाली हूँ.

0: 3:13 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड एक आर्टिकल पढ़ा है मैंने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, और इस आर्टिकल के रिलेटेड मेरे पास एक सवाल भी है। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, एंड मेरे साथ एक्चुअली मैं आज स्टूडियो में एक गेस्ट भी है जिनका नाम मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, बट सबसे पहले उनके साथ हाई हेलो करते हैं। मैं नाम ही बोलने वाली थी हाई में। हाय, हाउ आर यू?
1: I'm good, thank you. How are you?
0: Good. How was your day today?
1: Busy as, but getting better now.
0: Better हो रहा है धीरे धीरे।
1: हाँ, आपके साथ तो better ही होगा ना?
0: कोई नसीब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये dialogue थोड़ा सुना सुना सा है?
1: अच्छा।
0: किसी के साथ? What do you think, guys? किसका dialogue है ये? लिख के भेजो। बढ़िया। उससे पहले ना, so एक article आया है। Shoot, एक मिनट कहाँ गया? वेट, या शुड न्यूजीलैंड लोवर द वोटिंग एज टू 60? सो क्या है इस आर्टिकल में ना, थोड़ा मैं बताती हूँ कि आर्गूमेंट्स हो रहे हैं फॉर लोवरिंग द वोटिंग एज। सो यंग पीपल आर्गूमेंट इज कि यंग पीपल डिजर्व अ वॉइस, गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन एजुकेशन लाइक हाउसिंग, क्लाइमेट चेंज, एम्प्लॉयमेंट, और मेरे को लगता है एजुकेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर यंगस्टर्स जो है ये बहुत ज़्यादा एंथू है, बहुत ज़्यादा। एंड इनका कहना है कि दिस अफेक्ट देयर फ्यूचर फॉर डेकेड्स। They already have responsibilities. This is a second point. Ki supporters argue ki young people contribute to society and should have say in decisions which affect them. And they built voting habits very early. So introducing voting at 16 wo unko encourage kar sakta hai lifelong participation in democracy. Ki unko education in cheezon ki pehle se aa jati hai. Political awareness hoti hai. And there are arguments which is going against the voting age, lowering the voting age. कि मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, कि क्रिटिक्स क्वेश्चन करें कि वेदर 16 ईयर ओल्ड हैव इनफ लाइफ एक्सपीरियंस कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझ में आए कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, या उनकी पॉलिसीज के बारे में समझ में आए।
1: बट फाइनली आप मेरे को बताओ, कितने एल्डरली लोग को भी समझ में आता है क्या क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में?
0: पॉइंट है। या
1: मैं आई एम नॉट फॉर इट और अगेंस्ट इट, बट मैं बस बोल रही हूँ कि Even people जो in their 30-40s, उनको भी पता नहीं है क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। लोग ब्लाइंडली जस्ट वोट करते हैं आजकल।
0: हाँ, कि उनको ये मे बी कई बार लॉयल्टीज होती है, और कई बार उनको होता है कि यार देखते हैं कि इन्होंने शायद न्यूज़ पढ़ी है कि इन्होंने अच्छा किया है, ये किया है, वो किया है, तो इनको कर लेते हैं।
1: Also, I think when you're staying with a family, and if your family has certain type of views, and if you are not yourself doing the research, you'll be like, yeah, my family is voting for this XYZ party, even I should vote for them.
0: Yeah.
1: So that influence also sometimes happens. So I don't think age is a big criteria that we should really think about. I think it's educating people more on what parties are doing and how it's going to help our country.
0: Yeah. Yeah, that's a very good point actually. तो सी इन्होंने जैसे ये बोला कि इन्फ्लुएंस बच्चों को इन्फ्लुएंस हो सकता है, 16 ईयर ओल्ड को इन्फ्लुएंस हो सकता है अडल्ट से, कि कंसर्न है कि वेदर पेरेंट्स टीचर्स जो है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जिनको हम पसंद करते हैं। सिविक्स एजुकेशन के बारे में इनका कहना है कि सम आर्ग्यू कि यंग पीपल नीड स्ट्रॉन्गर एजुकेशन अबाउट पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट एंड वोटिंग बिफोर द वोटिंग एज चेंज। करंटली अभी लॉ क्या है न्यूजीलैंड में कि जनरल इलेक्शन वोटिंग एज इज 18 है। सो इन नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि मिनिमम वोटिंग एज ऑफ 18 वॉज इनकंसिस्टेंट विद एज डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन इन न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट एक्ट, बट डिक्लेरेशन डिड नॉट ऑटोमेटिकली लोअर द वोटिंग एज।
1: ओके,
0: सो मतलब क्योंकि ये चेंज हो सकता है कभी भी, ऐसा नहीं है कि कभी चेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि पत्थर के ऊपर लिखा हुआ जैसे होता है ना कि ये कभी चेंज नहीं होने वाला है जो लिख दिया है, ऐसा नहीं है। वो चेंज हो सकता है इफ देर आर राइट arguments and there is a like zyada log uske agreement mein hai.
1: Yeah, but as I said, I think educating people should be the priority rather than first reducing the age. Because jitne sare log hai jo jinko pata hi nahi hai, wo vote hi nahi karte because they are not aware ki kya chal raha hai. So they're like better hai ki main na karu.
0: This is election year, aur is election year mein hamari community ke kitne log hai jo jaake vote kar rahe hain.
1: Yeah,
0: would love to know ki aapne kya apni vote banayi hai, guys. लेट मी नो, 5599 पर मैसेज करो या कॉल करो यहाँ पे 0800 हम पर कि क्या आपने रजिस्टर किया है वोट के लिए येट और नॉट। एंड यहाँ पे दिस इज़ सो ईजी टू रजिस्टर, यू जस्ट हैव टू गो टू vote.nz। वहाँ पे एक है कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इफ़ यू आर एलिजिबल, उसके ऊपर क्लिक करो, यू कैन चेक ऑनलाइन, आप विद इन 2-3 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। एक है कि आपको चेक कर सकते हो कि आपने अगर कभी रजिस्टर किया था अभी भी आपकी एंट्री है कि नहीं, कई बार एड्रेस वगैरह चेंज होता है.
1: अच्छा.
0: तो वो भी आप चेक कर सकते हो वहाँ पे कि यू नो कि आप फिर से अगर अप्लाई करना चाहते हो. एंड अगर फिर से अप्लाई करना है, इट्स वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन जस्ट रजिस्टर ओवर देयर.
1: और आपको मेल भी आ जाता है ना आफ्टर यू रजिस्टर.
0: मेल भी आ जाता है. एग्जैक्टली. सो इट्स वेरी इजी. और मुझे लगता है कि वोट करना अगर आप एलिजिबल है बहुत ज़रूरी है जिस कंट्री में आप रहते हैं. देन यू हैव राइट टू क्वेश्चन एज वेल.
1: उसी कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में झगड़ो भाई.
0: इधर उधर की नहीं. सिर्फ उसी कंट्री की. कॉफी ब्रेक
2: विद सैंडी. हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
2: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
2: बस इतना ही.
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं. हमसे ना हो पाएगा.
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
5: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
7: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
8: The Cooperative Bank are in the house. Got that home dream, but don't know where to start? Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for where you could be tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. We got you.
9: Ah, the in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
10: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtao ke vastra. Sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Veena and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
11: Glad I got my enrollment sorted the other day.
12: See, bhai, I told you it was easy.
13: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
12: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
13: Really? What if I miss it?
12: Well, your vote won't count for this year's election.
13: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
14: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: Reliance Ventilation System.
16: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
15: Moisture और ventilation का problem लगता है.
16: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
15: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
17: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: doing is we are asking you to light up one diya for that person who is light in your life. So this is not the family by blood, this is family by heart. Hum kai baar jo kehte hai ki, because hum bahut baar yahan pe aate hai, there are not much people we know. So then you make that the people your family. Yeah. So who is the light of your life? So someone who has supported you, inspired you, made you smile, simply made your life brighter. So aaj aapko drive show mein mauka milega Diwali shout out dene ke liye. 0800 00 hum par aapko call karna hoga. So you need to call and let us know ki why you appreciate having them in your life, and you can win, you are go in the draw to win $300 cash as well.
1: Oh wow.
0: Yeah. मतलब उस $300 में आप खुद के लिए भी कुछ कर सकते हो, एंड यू कैन डू समथिंग फॉर दैट पर्सन ऑल्सो जिसको आप शाउट आउट दे रहे हो.
1: So guys, give a call, yeah.
0: तो आपको आज ड्राइव शो में ये मौका मिलेगा, और इसका ड्रॉ होने वाला है दिवाली से पहले. अभी देखो हमारे पास पहले कॉल आ गया, लेकिन अभी वैसे पार्टिसिपेट नहीं करना, वैसे बात करते हैं आपसे. हाय सपना.
2: हाय सैंडी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया, आप कैसे हो?
2: मैं ठीक हूँ. मेरे दो जनों को करना था मुझे, और मैं वेट कर रही थी ड्राइव शो मतलब आपके और उसपे के आने का.
0: हाँ, तो अभी नहीं. हाँ,
2: मैं बिजी थी. ओह नो, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी. ठीक.
0: अच्छा, 4 बजे के बाद भी नहीं कर पाओगे आप?
2: शायद मैं बिजी हो जाऊं क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं.
0: अच्छा, ऐसे करो ना, आप मेरे को बता दो, बाद में किसी और को. हाँ,
2: मेरा दिया ही करा रहे, जो मेरे लिए दिया था यहाँ पे वो ही करा रहे.
0: तो लेट मी नो ना, सब आप बताओ ना कहानी, तो आप बताओ उनके बारे में. Who is light in your life?
2: मेरे दो जने हैं. तो एक वेलिंगटन में है, मेरी आई मीन मेरे हस्बैंड की धर्म सिस्टर है, वो क्या राखी सिस्टर है.
0: राखी सिस्टर
2: तो
0: है,
2: वो है. हाँ, तो मतलब नॉट बाय ब्लड बट या वो मेरे हस्बैंड के साथ बचपन में खेलती थी. जब मेरे हस्बैंड बॉर्न हुए थे तो उनको हॉस्पिटल से वो ही लेके आई थी.
0: यू
2: नो, पड़ोस में रहते थे. हाँ, तो वो हम लोग जब यहाँ मूव हुए तो उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी हर चीज में. और आज भी जब मुझे कुछ जरूरत होती है ना, तो मैं एक फोन उन्हीं को करती हूँ कि दीदी ये ऐसा हो गया, तो शी हेल्प्स मी आउट ऐसा. और एक दूसरे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्होंने तो उन्होंने जितना किया है ना हमारे लिए, उतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता. मतलब हमारा जो फर्नीचर आया, सब असेंबल करवाना, घर देखने जाना, स्कूल फाइनल करना, उसमें वो सब में हमारे साथ है. तो आई मीन हैट्स ऑफ टू देम.
0: वाओ,
2: जितना उन्होंने किया वो कोई भी नहीं कर सकता.
0: और अच्छा रहता ना कि जब आप यहाँ पे आते हो, देयर इज समवन हु केयर फॉर यू.
2: राइट. और मैं जब उनको थैंक यू बोलती हूँ तो मुझे यही बोलते, बोले हमने तुम्हारे लिए किया और तुम किसी और के लिए करोगे, तो हमने कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ, इतना ग्रेट नहीं है हम लोग कि हमने तुम्हारे लिए कुछ. दे नेवर मेंशन दैट यस दे हैव डन इट, लाइक ऐसा है. तो बहुत अच्छे लोग हैं.
0: थैंक यू सपना, थैंक्स फॉर शेयरिंग.
2: आप लोगों ने मेरे को कभी अकेला नहीं फील होने दिया.
0: ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच.
2: आप लोग भी मेरे लिए दिया हो.
0: थैंक यू सपना,
2: मेरे लिए भी. फिंगर्स क्रॉस, मैं सबके लिए कुछ करूंगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा.
0: तीन सुबह क्या कर लूंगी सपना, सबके लिए गाई करूंगी तुम्हें गाई के टाइम पे.
2: छोटे कार्ड भी, अगर मेरी बेटी छोटा कार्ड भी बना देगी आप लोगों के लिए, तो मुझे पता है आप लोग खुश हो जाओगे.
0: अरे 100% दैट मैटर्स अ
2: लॉट. और ये आपके साथ जो है, जो वो वीकेंड पे आती है, अभी इस संडे भी सुबह थी, वो है क्या?
0: ये जो मेरे साथ है, थोड़ी बात करो.
1: हेलो सपना जी, कैसे हो आप?
2: मैं ठीक हूँ. आप होती है ना संडे सुबह? आरजू अभी नहीं है, तो अभी आप होती है ना?
1: नहीं नहीं जी, मैं कोई और हूँ.
2: अच्छा, ओके. I'm sorry.
1: नहीं नहीं, कोई बात नहीं.
2: ओके, यू टेक केयर गाइस.
0: थैंक यू सपना, थैंक यू, बाय बाय. सो या आपको मौका मिलेगा 4 बजे के बाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. यू हैव समवन इन योर लाइफ, नाम बोलने वाली थी मैं.
1: एक्चुअली मैं आपको पूछने वाली थी संडी.
0: ओ, मेरी लाइफ में? हाँ, मैं मेरी लाइफ में दिया, अगर ब्लड रिलेशन ना हो. नाम लेना पड़ेगा ना, बहुत ट्रिकी हो जाएगा. एक कर लूँगी दूसरा बुरा. एक दूसरे को बुरा लग जाएगा. मैं बताऊँगी थोड़ी देर में, बताऊँगी मैं
1: भी एंड में बताऊँगी.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 80s के रेट्रो गाने

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Intaha ho gayi
1: intezaar ki. Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
3: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
2: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
3: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
2: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
3: बुक नाउ विद सन टूर्स।
2: कॉल करें 0800 478686।
1: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
4: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
5: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
6: T's and C's apply.

0: 18 मिनट बाकी है 4 बजने में. एंड ऑफ कोर्स आज मेरे साथ यहाँ पे गेस्ट भी है एक. हाउ इज इट गोइंग सो फार? कैसा जा रहा है सब?
1: गुड,
0: सब अच्छा ही जा रहा
1: है. हैज एनीवन आइडेंटिफाइड मी?
0: अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया ना.
1: आप लोग
0: और बात करो.
1: आप लोग वो गेम खेलते थे ना, क्या था वो?
0: कैरेक्टर गेस.
1: नहीं वो वाला नहीं यार. हाँ वो तो अभी फेमस कैरेक्टर्स का है ना. आप वो लोकल वाले के साथ कुछ खेलते थे ना, हाइड एंड सीक टाइप्स.
0: हाइड एंड सीक?
1: नहीं हाइड एंड सीक नहीं था. हाँ. सैंडी, आप रेडियो पे हाइड एंड सीक कैसे खेल सकते हो? मैं नाम भूल गई गेम का. बट इफ यू ऑल रिमेम्बर गाइस प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट यार.
0: तो उसमें क्या होता था?
1: आप हिंट्स बताते थे एंड दे हैड टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन एंड देन दे वुड विन $500.
0: Oh, have to win the $500 as well.
1: हाँ.
0: अभी नहीं है $500 guys.
1: नहीं अभी नहीं है $500.
0: क्योंकि हमारे बहुत तेज है listeners. कैश का नाम सुन के फटाफट
1: तो फिर guess करो. देखते हैं हम आपको क्या दे सकते हैं.
0: Yeah. Guess करो ये किसकी आवाज है. अगर आप ये guess कर सकते हैं who do you think this person is? और बताओ ना अपने बारे में, थोड़ा ऐसा हिंट दो अपने बारे में. व्हाट आई डू इज आई डू व्हाट एम आई. व्हाट एम आई में मैं थोड़ा हिंट देती हूँ. दिस इज व्हाट एम आई.
1: दिस इज मतलब थोड़ा मैं
0: हिंट जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास रोड्स हैं लेकिन सड़क नहीं है. मेरे पास हाँ मैं रास्ते बता सकता हूँ लेकिन मेरे पास सड़क नहीं है.
1: अब मैप
0: मेरे पास पहाड़ी. हाँ ऐसे मतलब समथिंग ऐसे.
1: Guess कर दिया. Yeah. Guys, can you be as quick as me and guess who am I?
0: Yeah, now give hints.
1: I like cooking. Hint number one.
0: I like cooking.
1: अभी क्या है
0: तू? How can they relate with you कि तुम कौन हो सकती हो? उसके related hint दो.
1: नहीं वो बहुत easy हो जाएगा.
0: मतलब कि ऐसा connecting hint दो कुछ. Not exactly the name and everything, but कनेक्टिंग है.
1: जो मेरे को आ रहा है ना सैंडी बोलने के लिए वो लोग ऐसे ही गेस कर लेंगे.
0: ये कह सकते हो तुम कनेक्टेड हो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सिंगर के साथ, समथिंग लाइक दिस ना.
1: नहीं नहीं मैं नहीं हुआ गाइस.
0: एमर्जिंग सिंगर के साथ.
1: बहुत ही अच्छा सिंगर नहीं है गाइस, प्लीज सैंडी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो.
0: नाउ यू नो हु दिस पर्सन इज बिकॉज इससे बोला वो बहुत अच्छा सिंगर नहीं है.
1: वो बहुत पैशनेट है.
0: या The person is very passionate about singing, but is not the good singer.
1: Passionate about everything, guys. Everything. Not only singing.
0: मेरे पास आंसर आ गया एक.
1: वही तो मैं बोल रही थी, वो बहुत इजी हो जाएगा. इसके लिए मैं नहीं देना चाहती थी.
0: Yeah. आप भी गेस कीजिए. कोई कॉल करके यहाँ पे बताएगा तो मजा आ जाएगा. 0800 00 हम पर किसकी बात कर रही है दिस पर्सन की. She's connected with someone who is very passionate about singing, but is not a good singer. But that person is passionate about everything.
1: Sandy Carrier is not. नहीं मैंने भी बोला actually.
0: Yeah, but yeah. But exactly is not a good singer. So.
1: But makes a good effort.
0: Yeah, but makes good effort.
1: 100%.
0: किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो आप call करो 0800 00 हम इसे number. यहाँ पे कुछ लोगों ने सही गेस भी कर लिए यार.
1: हाँ मैंने बोल दिया बहुत इजी हो जाएगा. अब सलमान
0: खान किसने लिखा है?
1: सैंडी हाउ कैन यू से सलमान खान व्हेन सैंडी इज सिटिंग हियर गाइस. ये तो बहुत बुरा हो गया सैंडी.
0: So, देखो ना उन्होंने हिंट पकड़ा. पैशनेट अबाउट सिंगिंग बट नॉट अ गुड सिंगर. Yeah, anyway.
1: And if I was related to Sandy, na, wo mereko yahan pe aaram se baithne nahi. Sorry to Salman.
0: Hi.
2: Haan, Sandy.
0: Ji.
2: Kaisi ho?
0: Ekdam first class. Aap kaise ho?
2: Drink kiya na?
0: Ji.
2: Bahut din baad aapko call kiya humne.
0: Yeah. So.
1: Haan ji, bahut din ho gaye. Aapka naam?
2: Aapka saathi, judwa saathi jo hai na.
0: Haan.
2: यही है होगा वो.
0: ये आपको आपको क्या लग रहा है? ये रुजबे है?
2: बिल्कुल.
0: ये रुजबे की आवाज आपको लग रही है क्या?
2: ऐसा लगा तो नहीं. वो गाने में वो बड़ा बड़ा बहुत कोशिश करता है बेचारा ना.
0: हाँ बेचारा. तो आपको क्या लग रहा है कि ये रुजबे ही है? ये रुजबे के साथ कनेक्टेड है?
2: सुना, मैंने गाना नहीं सुना. मैं केवल आपका डायलॉग सुना हूँ.
0: अच्छा अच्छा अच्छा.
2: कोई ऐसा है जिसको बहुत इंटरेस्ट है ना गाने में, लेकिन लेकिन कोशिश बहुत करता है लेकिन इतना पहुंच नहीं पाता है ना.
0: ओके. तो आपको आपका नाम क्या है?
2: अवस्थी.
0: अवस्थी जी. अच्छा अवस्थी जी, ये बताइए कि मेरे साथ कौन है?
1: हेलो अवस्थी जी, कैसे हो आप?
2: बढ़िया बढ़िया. मैं नहीं पहचान पाया.
1: नहीं पहचान पाया ना.
0: ठीक है, आप सुनते रहो, आपको पता चलेगा.
1: बट आपने आंसर सही किया.
0: हाँ, आपने जो गेस किया वो बिल्कुल सही किया है.
1: आप ऑन द स्पॉट हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस हो गया बस.
2: चलो कोई बात नहीं.
0: ठीक है, हैव अ गुड डे वसी जी.
1: थैंक यू जी.
2: बस पूजा करा के घर जा रहा
0: हूँ. ओके, ठीक है ठीक है. हैप्पी नवरात्रि.
2: हैप्पी नवरात्रि आपको भी.
3: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 19.2 डिग्रीज और आज ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे इट्स ऑलमोस्ट क्लाउडी आज, मिक्स वेदर रहा. सनसेट आज का 7:36 पर.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: चार बज के 3 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. रुज़बे तो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है. हाय, काफी लोगों ने सही आंसर वैसे गेस कर लिया है. हाय नुशीन, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड सैंडी, हाउ आर यू?
1: गुड. एक्चुअली मुझे लगता है कि ना कि हमने जो हिंट दिया था,
4: हमने,
1: हाँ
4: हमने कि आपने, मैं आपको बोल रही थी
1: पैशनेट अबाउट सिंगिंग वाला.
4: अच्छा, वो वाला पार्ट ना. हाँ वो वाला पार्ट. ओके,
1: लोगों ने गेस कर ही लिया. रुजू लिख के भेजा काफी लोगों ने. बढ़िया नुशीन, काफी ने यार लिख के भेजा. So,
4: मैं तो बोलने वाली थी ना, मेरे जिंदगी में जो है ना उसके बाल थोड़े कम हैं.
1: ये तो अभी फिर पता चल जाता है, डायरेक्टली पता चल जाता है. ये अभी देखो सिंगिंग के नाम पे कईयों ने सलमान खान भी लिख के भेजा, बट बालों से तो सीधा रुज़बे का ही नाम आता है यहाँ पे. हाउस इज हेडफोन डूइंग राइट नाउ? नए वाले
4: अभी तक तो यूज हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर ही इज वेरी हैप्पी विद इट. आई थिंक ही मिसेस द एक्टिव नॉइज कैंसलिंग फील. Because with this is, I don't want to promote any brand.
1: Yeah.
4: But it uses bone technology.
1: Okay.
4: So your ears are open. Your ears are not covered in this, which is good for your ears. But I think nowadays we are so used to the active noise cancellation. We don't want us feel ki awaaz. Wahi to. But I think once you get adjusted, but uska mic bahut bhari hai yaar. Main bahut surprised hoon. Jo bhi headphones humne aaj tak use kiye, uska mic बेस्ट लगा मेरे को.
1: ओके,
4: वो कौन से भी जगह पे हो, जितनी भी आवाज हो, उसकी माइक बहुत अच्छी है.
1: व्हाट इज द मैक्सिमम यू हैव स्पेंट ऑन हेडफोन्स?
4: सैंडी, आई एम रुज़बेज़ वाइफ.
1: या
4: आई डोंट स्पेंड मनी टू.
1: वो तो 700 का लेके 600 का लेके बैठा है ना.
4: वो तो मैंने उसको एनकरेज किया था.
1: ओके,
4: वो तो मैंने किया. आई वाज लाइक वंस इन अ व्हाइल द बॉय शुड स्प्लर्ज ऑन हिमसेल्फ, ही डिजर्व्स इट.
1: सी कितनी स्वीट है नुशीन गाइस. रुज़बे की बातों में मत आया करो.
4: एग्जैक्टली गाइस, टुडे आई एम हियर, लिसन टू माय साइड ऑफ द स्टोरी.
1: सो या, ये सब बातें भी यहाँ पे होने वाली हैं. एंड आपको मौका मिल रहा है ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया का मैच जाके देखने के लिए. दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज आफ्टर मैनी ईयर्स इंडिया की फुटबॉल टीम यहाँ पे आने वाली है एंड ऑल वाइट्स के साथ यहाँ की फुटबॉल टीम के साथ खेलने वाली है. दिस इज़ अमेजिंग
4: एक्चुअली.
1: या एंड पहले ये टीम्स भिड़ी हैं. सो प्रीवियसली ऑल वाइट्स ने इंडिया को फेस किया था 2 ओकेजन्स में. 1981 में जब ड्रॉ हुआ था दोनों के बीच में नील के साथ, एंड देन 2018 में जहाँ पे ऑल वाइट्स की जीत हुई थी 2-1 के साथ. सो आफ्टर 2018, 2026 इस साल में दोनों टीम्स साथ में खेलने वाली है. सो दिस इज़ एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑल्सो बिकॉज 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स सेलिब्रेट हो रहा है बिटवीन द बोथ नेशंस. तो ये जो गेम्स है ये उसी का ही एक पार्ट है. एंड ये होने वाली है गेम्स गो मीडिया स्टेडियम में. एंड लिसनर्स के पास चांस है डबल पास जीतने का. व्हाट यू हैव टू डू इज़ गो टू अवर फेसबुक पेज. वहाँ पे फीचर फोल्डर होता है ना, जहाँ पे पिन होती है पोस्ट, तो वहाँ पे ऑल वाइस वर्सेस इंडिया की एक पोस्ट है. तो आपको अपने फ्रेंड को टैग करना है एंड प्रेडिक्ट करना है स्कोर क्या होगा. एंड मैंने जाके प्रेडिक्शंस देखी है. अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस है सब प्रेडिक्शंस ने ऑल वाइट्स को जिताया है.
4: अरे यार गाइस, ऐसे क्यों कर रहे हो?
1: बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. सो या, दिस गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस. और अगर आप जीतना चाहते हैं इस मैच का डबल पास, यू जस्ट हैव टू प्रेडिक्ट अ स्कोर, फाइनल स्कोर क्या होने वाला है इस गेम का, एंड अपने फ्रेंड को टैग करो. इट इज़ सो ईजी. एंड हम का फेसबुक पेज अगर ज्वाइन करना है, डू यू नो हाउ टू डू इट नुशीन?
4: Yes, I already follow Sandy.
1: हाँ, तो फेसबुक पे जाके सर्च करना है. What's the handle name? ऐसा टेस्ट कर रही हूँ मैं.
4: हम
1: हम 104.2 FM, okay?
4: But हम is हम, अब हम डाल दोगे तो आ जाएगा, बट नहीं आया तो गाइज 104.2 डालना उसके बाद फिर आएगा यार. And hit the follow button and join the competition.
1: Join
4: yeah?
1: the competition, exactly. So, ये आपको करने वहाँ पे, and you are in to win this. And also, आज हम यहाँ पे chance दे रहे हैं आपको $5,000 worth of prizes जीतने का भी. खैर, उसके लिए भी stay tuned. Lots of stuff is coming up.

0: 414 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. रिमेम्बर इलेक्शन स्पेशल आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एवरी थर्सडे. और ये थर्सडे भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज इस थर्सडे को आपके लिए हम अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर के साथ हम बातें करने वाले हैं, उनके साथ हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं. यू नो अपॉर्चुनिटी पार्टी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है रिगार्डिंग वेरियस पॉलिसीज, एंड स्पेशली जब क्रिस हिपकिंस ने इनके बारे में कमेंट किया था कि अगर आप इनको वोट करते हैं तो आपकी वोट वेस्ट हो जाएगी. सो क्यू वॉन्ग के साथ हम यहाँ पर कन्वर्सेशन करने वाले हैं पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में, पोलिटिकल अलाइनमेंट्स के बारे में कि किस पार्टी की ओर वो है, उनका विजन क्या है न्यूजीलैंड के बारे में, एंड ऑल्सो कि क्रिस हिपकिंस के इस वेस्टेड वोट कमेंट के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं उनके साथ. सो अपॉर्चुनिटी पार्टी की जो लीडर है क्यू वॉन्ग, इनके साथ हम बातें करने वाले हैं दिस थर्सडे, इसी थर्सडे को. सो रिमेंबर अगर आप चाहते हैं कि हम उनसे कोई सवाल पूछें, आपका कोई सवाल हम उनसे पूछें, तो आप ड्राइव कीवर्ड के साथ अपना क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही भेज डालिए. बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे पास उस समय पर टाइम लिमिटेड होता है, एंड अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑलरेडी पहले के आए हैं तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है, फिर बाकी क्वेश्चंस रह जाते हैं. सो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले से ही सवाल यहाँ पे भेज रहे हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ. यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस नाउ ऑल्सो, कभी भी भेज डालिए, हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड हम आपका सवाल फिर पूछेंगे प्रायोरिटी बेस पे. डेफिनेटली आपका हम सवाल पूछेंगे. सो दिस थर्सडे 5 PM ऑनवर्ड्स हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी पार्टी की लीडर क्यू वॉन्ग के साथ, डिटेल में बातें होंगी. एंड दिवाली का मौका है, ऐसे मौके पर कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जैसे कि 6:45 पे आज आप सुनने वाले हैं रामायण एक गाथा. सो रामायण एक गाथा एक स्पेशली प्रोड्यूस्ड सीरीज़ है, 1 to 2 मिनट की एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट है, जिसमें हम आपको मेमोरेबल स्टोरीज़, कैरेक्टर्स एंड मोमेंट्स फ्रॉम द रामायण, ये आपके लिए हम लेके आते हैं. सो दिस इज़ प्रेजेंटेड अक्रॉस डिफरेंट टाइमिंग्स थ्रू आउट द डे. सुबह बिटवीन 8:15 to 8:20 के बीच में आप सुनते हैं, देन दोपहर को लंच बॉक्स में 1:30 PM एंड शाम को 6:45 PM पे ये पावरफुल स्टोरीज़ आप सुनते हैं. लेकिन अगर ये स्टोरीज़ आप मिस आउट कर लेते हैं, डोंट वरी, आप रोवा पे जाके भी सुन सकते हैं. अगर आप दिवाली लिख के भेजते हैं 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपके पास ये फुल एपिसोड, पूरी की पूरी ये जो सेगमेंट है ये आ जाएगा. और ये ज़्यादा बड़ा सेगमेंट नहीं होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू द यंगर जनरेशन. अगर आप नॉलेज पास ऑन करना चाहते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड वे टू डू दैट एज़ वेल. सो या ये रामायण एक गाथा आज आप मिस मत कीजिएगा. दिस विल बी अराउंड 6:45 PM एंड फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इसमें पार्टिसिपेट करने का वक्त अभी आ चुका है. सो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आप रेडियो पे $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीतने का आपको मौका मिलता है, बट राइट नाउ आपको इस ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग का वाउचर आप जीत सकते हैं, जिसमें होम डेकोरेशन का सामान है एंड इसमें फर्नीचर भी है. सो हैरिंगटन लिविंग, वैसे मैनकाओ में स्प्रिंग सेल भी चल रही है, यू कैन चेक आउट देयर ब्यूटीफुल फर्नीचर, जहाँ पे 60 months इंटरेस्ट फ्री है, टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर है वहाँ पे. सो या आप अगर आप हैरिंगटन लिविंग का वाउचर जीतना चाहते हैं, वो भी $1,000 का, यू कैन पार्टिसिपेट नाउ. आपको करना क्या है, HL, दैट इज़ हैरिंगटन लिविंग, HL स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर, एंड यू आर इन द ड्रॉ टू विन दिस वाउचर. टर्म्स एंड कंडीशन हमारी वेबसाइट पे है, hum.rova.nz पे, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा. 5599 पर आप कितनी भी एंट्रीज भेज सकते हैं, 10, 20, जो भी आपके दिल में एंट्रीज है वो आप भेजिए यहाँ पे. बट रिमेंबर, जब भी आप मैसेज करते हैं, बिकॉज एक शॉर्ट कोड है, स्टैंडर्ड करियर रेट्स डू अप्लाई.
1: Daily dose of wisdom, wit and wild conversations.
2: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Aapka profile dekha, aap mujhe bilkul pasand nahi aaye.
4: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबी सी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, PFSL, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
5: Gold Coast is on sale now at Flight Centre. Book a five-night fly-and-stay family holiday from $1,249 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
6: Ugh, classic. We're out of bread.
7: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
8: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
9: Your favorite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Tūturu, all together Auckland.
10: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe. To learn. To believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
11: Be in to win one of five $10,000 My to 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at My to 10.
12: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
13: Yes, Bebo.
12: Catch kya hai?
13: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
12: I still can't believe it. No catch.
13: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland,
14: TNC Supply.
15: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से, जिसका हर spoon है एकदम delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free, perfect है smoothies बनाने के लिए, tangy dips बनाने के लिए, पनीर या chicken marinate करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है naturally delicious, always desi, available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
1: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: 423 एट द मोमेंट हो चुके हैं, सुपर से ऊपर आप यहाँ पे सुन रहे हैं. नाउ देर इज हमारे साथ जैसे आज स्टूडियो में बाय द वे नुशीन है, रुजबे तो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है, बट या नुशीन इज देख रही हो नुशीन अभी तक वो नहीं आया है यहाँ पे,
16: बहुत बिजी है मेरा पति, उसको परेशान मत करो.
0: परेशान रियली या ये तो काम ही नहीं है ना, फिर वो कहता है पैशनेट है कैसे.
16: वो है अभी बहुत बिजी चल रहा है, बहुत सडनली बहुत बिजी हुआ है उसका, बट रेडियो इज हिज पैशन गाइस.
0: या वी नो. एनीवे सो न्यूज आई है अबाउट वेकअप कॉल फॉर न्यूजीलैंड सुपर मार्केट. सो क्या हो रहा है कि हैकर्स रिपोर्टेडली इन्होंने टेम्पर किया विद सुपर मार्केट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन फ्रांस.
16: हाँ मैंने ये पढ़ा है.
0: हाँ तो फ्रांस में उन्होंने लाइक क्या हैक किया, मिलियंस ऑफ यूरोज ऑफ फूड,
16: बहुत सारी वेस्टेज हो गए,
0: सब वेस्ट गया. सो अभी न्यूजीलैंड को ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, वार्निंग है न्यूजीलैंड के लिए. वाई? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फ्रिज. साइबर अटैक जो है ऑन अ कनेक्टेड इक्विपमेंट कुड अफेक्ट फूड सेफ्टी एंड द अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेड, सुपर मार्केट ऑपरेटिंग कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स इन असेंशियल सर्विसेज. एंड न्यूजीलैंड रिसेंटली बहुत सारे साइबर अटैक देख चुका है. अभी पास्ट में ही दो तो हेल्थ रिलेटेड ऐप्स के ऊपर, एक फिटनेस ऐप के ऊपर हुआ था हैक, और उससे पहले एक हेल्थ रिलेटेड ऐप के ऊपर भी साइबर अटैक हो चुका है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो पब्लिक चले गई.
16: बाप रे.
0: या लाइक इन्फॉर्मेशन जो वो अपने सिर्फ जीपी डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वॉज पब्लिक. एंड उसके बाद अभी एक फिटनेस ऐप का हैक हुआ था, जिससे काफ़ी डाटा जो था ये रिवील हो गया था. सो एंड फिटनेस ऐप तो आई थिंक नाउ डेज एवरी वन यूजेज इट, लाइक एवरी वन इज कनेक्टेड टू द फिटनेस ऐप इन वन और अदर वे.
16: बिल्कुल यार,
0: टू मोनिटर दियर सेल्फ. सो इसलिए बोला जा रहा है न्यूजीलैंड को थोड़ा केयरफुल रहने के लिए, कि जब ऐसी न्यूज़ आती है तो जस्ट लूप होल्स अपने चेक करने के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड विद यू. बिकॉज व्हाट हैपेंड वहाँ पे, जो हैकर से इन्होंने मैनिपुलेट किया सुपरमार्केट की फ्रिज कंट्रोल सिस्टम को. सो टेम्परेचर राइज हो गया उसके कारण, ड्रामेटिकली राइज हो गया. सो द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल सिस्टम सेड कि मैनी अफेक्टेड फ्रिजेस वर रनिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर. सो वाई इट मैटर्स, बिकॉज रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये इंक्रीज करता है टू कनेक्ट टू डिजिटल नेटवर्क. एंड न्यूजीलैंड ने इसमें रिस्पॉन्स भी दिया है. फूड स्टफ ने बोला है कि टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली एंड रेगुलरली रिव्यू इट्स सिक्योरिटी मेजर्स. सो बोला गया है हर एक कंपनी को यहाँ पे कि अपने मेजर्स जो है ये सारे के सारे चेक करने के लिए, बिकॉज अगर उनका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड था वो ईजिली हैक हो गया. एंड दिस थ्योरी इज अबाउट अवर फोन ऑल्सो ना, हमारे कई बार जो अपडेट का वो आता है ना, कि हम कई बार वो कह देते हैं कि हमें अपडेट नहीं करना, मेमोरी लेगा, स्पेस लेगा, वो सब चीज़ें. बट एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट द फोन, बिकॉज नए अपडेट के साथ आपके फ़ोन के अंदर वो
16: सिक्योरिटी पैच आती है ना,
0: सिक्योरिटी पैच आती है कि कैसे हैकर्स एंड सारी चीज़ें जो है उसे प्रिवेंट हो सकते हैं, बग्स कैसे उसे निकाले जा सकते हैं. इसीलिए वो नई अपडेट आती है. तो एक मिथ बनी हुई थी पहले कि अपडेट इसलिए आती है ताकि एक तो फ़ोन का स्पेस चला जाएगा, फ़ोन का स्पेस चला जाएगा तो आप नया फ़ोन खरीदोगे. So that was a myth once upon a time.
16: I don't think वो myth है, थोड़ा तो जगह लेता ही है, वो ज़्यादा memory तो ले ही लेता है.
0: But it's also for the security.
16: But आजकल हम लोग सब कुछ cloud पे डालते हैं ना.
0: Yeah.
16: So ज़्यादा से ज़्यादा phone memory इतना use होता कि नहीं होता है, that's a different thing. But अब हमारा cloud storage use हो जाता है.
0: So this is one की जो आपको हमेशा ही वो करना चाहिए, update करना चाहिए.
16: Yeah, yeah. Especially when you get security patch updates, you should get it done.
0: How many apps you use, like other than banking apps and all that? ऐसे जैसे fitness apps हो गई, ऐसे कोई apps है?
16: हाँ बिल्कुल है, और AI apps भी है आजकल तो. Everyone's got ChatGPT or Claude on their phone and everyone, or Gemini for that matter.
0: Yeah.
16: And I think we are reliant on it now, yaar.

0: हम साइलेंट होके नहीं देखते हैं कुछ भी हाँ. या तो बात करते हैं या फोन स्क्रॉल करते हैं.
1: हमको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चाहिए. लाइक बहुत सारे लोग टीवी चालू रखते हैं, रेडियो चालू रखते हैं, बिकॉज दे वांट सम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अराउंड देम, वेदर दे आर गिविंग इट 100% और नो, बट दे स्टिल गॉट लाइक मे बी 50% ऑफ देयर हियरिंग केप्ट टू इट. कि अगर ये मेरा टॉपिक का इंटरेस्ट है तो मैं सुन लेती हूँ.
0: या ट्रू ट्रू या सो या आप भी बताइए, आप भी शेयर कीजिए, आप में से कितने हैं जो रेडियो को हमेशा, आई टॉक अबाउट रेडियो को, रेडियो को ऐसा हमेशा बैकग्राउंड में रखते हैं. बुरा नहीं लगेगा, इट्स ओके, वे ओके टू बी इन द बैकग्राउंड
1: एज
0: लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग एंड ट्यूनिंग इन, इट्स ओके. सो आप में से कितने हैं जो घर पे रेडियो लगा के भी उसको बैकग्राउंड में रखते हैं. सो या शेयर प्लीज 5599 पर.
2: Hollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Drive Show आपके लिए जारी है. आज एक गेस्ट के साथ हैं यहाँ पे.
1: गेस्ट का नाम बता दिया रुज़बे.
0: गेस्ट का नाम बता दिया.
1: या.
0: आज नुशीन भी है ना ड्राइव शो में. क्या बात है यार. यहाँ पे भी रिप्लेस कर रही हूँ मुझे.
1: रीजन शी वाज सपोर्टिंग. काम है ये वो है. मैं थोड़ा उल्टा कर रही थी बट शी वाज सपोर्टिंग.
0: ओह दैट्स सो स्वीट यार. थैंक यू. I'm not used to that much support, na.
1: Okay.
0: Aajkal,
1: really?
0: I'm getting a lot of salty behavior. Not from you, baby. Not from you. Just in general.
1: Okay, in general. वो तो तुम्हें हमेशा मिलता है ना?
0: मुझे हमेशा मिलता है.
1: या तो something नया बताओ.
0: वो भी है. नहीं, एक ना कुछ हमेशा नहीं.
2: Don't let social media influence your life.
1: और सोशल मीडिया को तो पता भी नहीं. किसी काफियों को पता नहीं होगा ना सोशल मीडिया पे कुछ हुआ या नहीं हुआ. ऐसा नहीं.
2: गाइस गो एंड फॉलो रुज़बे बट डोंट लेट इट इन्फ्लुएंस योर लाइफ.
0: ओके टीचर.
1: और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ नुशीन कि उसकी बातों से आप इन्फ्लुएंस मत होना. नॉट जस्ट सोशल मीडिया.
0: या
2: तो बात ही करता है ना सैंडी उधर भी.
1: या
0: एनीवे आज बहुत सारी चीजें करनी है हमें. तो पहले एक इम्पोर्टेंट बात हम निपटा देते हैं. वो है कि दिए लगा दिए. नहीं क्या कुछ कंपटीशन कर रहे हैं ना.
1: तो ऐसे करो पानी पी के आओ.
0: तुम्हारे जिंदगी में किसने दिए लगाए.
1: Yeah, it didn't sounded right though. तो या
0: यार मैं जो भी कर रहा हूँ it doesn't sound right यार. What's happening यार.
2: You've been replaced.
1: Yeah. What if अगर तुम्हारे बॉस इस समय पर सुन रहे हैं. क्या प्रमोशन कर रहे हो तुम रुज़बे.
0: मेरे बॉस सुन रहे भी है ना अभी. मतलब मुझे हाँ, तो सुनते रहते हैं ना.
1: हाँ, वही.
0: हाँ. तो क्या
1: बट तो एक दिया एक कहानी.
0: हाँ एक दिया एक कहानी ना. तो किसने आपके जिंदगी में दिए लगाए. मतलब रोशनी फैलाई ना आपके.
1: रोशनी फैलाई आपकी लाइफ में.
0: आप क्या समझ रहे हो.
1: मैं यही समझी थी.
0: गुड.
1: सो समवन हु हैज सपोर्टेड यू इंस्पायर्ड यू मेड यू स्माइल. तो अभी वक्त है दिवाली शाउट आउट देने का. यू कैन कॉल नाउ. हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा. 0800 00 हम 0800 00 4866 और एक ही पर्सन को चांस मिलने वाला है यहाँ पे कॉल करने के
0: लिए. बेसिकली करना क्या. अनुशीन को समझ में आया क्या. डिड यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है.
2: यस आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सैंडी.
0: अच्छा.
2: Because she's always been supportive since the day that I've been here or landed rather. Even when I knew nobody, it was always Sandy who was a familiar face everywhere for me.
1: Oh.
0: तो आपने दिए लगाए.
2: मैं उसके लिए लगाऊंगी. ते को समझा क्या क्या प्रमोट कर रहा है.
1: देखो उसी को नहीं समझा है. This Diwali light up a diya
2: for someone.
1: For someone.
0: अच्छा.
2: Who's lit up your life?
0: Who's lit up your life?
2: Just so yeah. Sandy has. Are you jealous that I didn't say you've lit up my life?
0: No, not at all. I haven't.
2: You light fire in me, baby.
0: Okay. Anyway. So.
1: Thanks, Nushin.
0: So Sandy has lit up your life, and that's why you're lighting a diya for her.
2: Yeah. I will light a diya. Yes.
0: You light a diya for her. Okay. तो ऐसे अगर आपको भी किसी के लिए दिए लगाने हैं तो यहाँ पे कॉल कीजिए 0800 00 4866.
1: So आपको दिया नहीं देंगे हम. $300 कैश देंगे. अगर आप जीते तो
2: एक दिया भी दे दो यार. मैं स्पॉन्सर करती हूँ दिया.
1: या सो यू कैन विन $300 कैश. यू विल गो इन द ड्रॉ टू विन $300 कैश.
0: सो 0800 00 4866 इज द नंबर. गिव अस कॉल राइट नाउ. आप बात कीजिए हमारे साथ और बताइए हमें कि किसने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया आपकी लाइफ में. जिसने लाइट भरी है आपके लाइफ में. यू नो काफी बार ऐसा होता है कि यू नो वी आर इन वेरी डार्क in a dark place.
1: और जब हम नए भी आते हैं इस कंट्री में ना there is someone who is very supportive. आपका कोई रूममेट भी हो सकता है एक्चुअली में when you're new over here.
0: फ्लैटमेट होता है रूममेट. या या
1: आपका रूममेट हो सकता है कोई. फ्लैटमेट हो सकता है आपका.
0: In fact जब आप नए आते हो यहाँ पे and if you don't have family here your closest people are the ones that you're living with.
1: Yes.
0: क्योंकि उनके साथ आप काफी टाइम स्पेंड करते हो most times.
1: Yeah.
0: And then they become part of your family. And काफी बार वो रिश्ते बहुत आगे तक भी चलते हैं ना.
1: 100%.
0: अगर झगड़े नहीं हो रहे तो.
1: या या. So झगड़े नहीं हो रहे तो.
0: नहीं मतलब ज़्यादा झगड़े नहीं हो रहे तो.
1: हाँ. और आप भूलते नहीं हो ना उनको उनका किया. So अभी तक कॉल नहीं आई है तो ये चांस आपका गया. तो लास्ट आवर में एक्चुअली मेरे पास कॉल आई थी तो मैं उसी की एंट्री यहाँ पे सबमिट करती हूँ.
0: अच्छा. क्या बात है.
3: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
4: Switch your pool to swim at.
5: Cloudy overnight with a low of 15 on the northern from town to Constellation Drive, 28 minutes to Silverdale 48. The northwest and slowing from Waterview through to Rosebank. On the southern, it's heavy northbound from Sylvia Park to Green Lane. Town to Manukau taking 34 minutes, Drury an hour. Southwestern's heavy from Puhinui Road through to the southern. Town to the airport taking 27 minutes.
4: Switch to specialist pool and spa advice and service today. Call your nearest swimmart now.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/food festival.
7: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
10: Weird. I thought we still had bananas.
11: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
12: I love my job. It's hard, but I love it.
13: The problem is prices go up, but the pay doesn't match.
14: So if our nurses and tradies aren't staying, why would I?
15: I'm 27 and still renting. I just want a place of my own.
16: Every day I see families give up before they've even started.
17: 60 years in Aotearoa and I never worried about it until now.
18: I just want my grandchildren to grow up here.
19: Party vote Labor.
20: Party vote Labor.
21: Party vote Labor.
22: Better starts now.
23: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
24: Barbecue just got baconated at Wendy's. Meet the new barbecue baconator range. Go all in with the barbecue baconator or get cheesy with the barbecue cheesinator. Then top it off with a new coffee frosty shake. Available in-store or on the app. Only at Wendy's.

0: Hum, accurate traffic.
1: Switch your pool to swim at.
2: Cloudy overnight with a low of 15 on the northern, heavy from Esmond Road to the Harbour Bridge on the northwest, and snow from St Luke's to Rosebank. The southern looking heavy in both directions between Sylvia Park and Green Lane from Town to Manukau, 37 minutes to Drury an hour. Southwestern is heavy northbound through Mangere Bridge and from Puhinui Road to the southern.
1: Switch to specialist pool and spa advice and service today. Call your nearest swim art now.
3: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get Anchor processed cheese slices 250 gram for just $3.50 each. And New Zealand-grown loose jazz apples, a fresh deal at just $5 a kg. Tea season exclusions apply, only at Woolworths.
4: Be in to win one of five $10,000 MyToTen gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyToTen.
5: A message to all road users. You must now give way to buses that are leaving bus stops, the roadside, or bus lanes in areas where speed limits are 60 kilometres an hour or less. This will help buses rejoin traffic safely. Learn more at nzta.govt.nz.
6: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
7: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
8: Free gold coins on diamond jewelry. Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
10: DNC Supply.
11: Hum, time check.
12: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
11: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. New Zealand has abstained on a United Nations vote on pandemics, one of two countries to do so. 153 others supported the political declaration on prevention, preparedness and response, and three, including the US, were against. Labour leader Chris Hipkins says it's embarrassing.
14: Frankly, I am astounded that New Zealand has shown such cowardice.
13: However, Foreign Minister Winston Peters says it's essential that New Zealand's sovereign decision-making on health is protected. Police have launched an investigation after a woman was fatally struck by a vehicle on Auckland's North Shore. They're appealing for witnesses to events leading up to last night's incident at the intersection of Tristram Ave and Wairau Road. Data from the Banking Association has reaffirmed cash is no longer king. The figures show an 11% drop in cash transactions at branches for the first half of the year. Chief Executive Roger Beaumont says there's an obvious correlation with the uptake of internet and mobile banking.
15: A lot of it is driven by ease of use and security and safety and being able to do it from the comfort of your own home or office.
13: Those in the South Island enjoying balmy mid-20 temperatures are warned they won't last. Snow and rain are set to return, potentially impacting travel from later this week. NZTA says road closures could be possible. To sport, the finger pointing continues over that slow getaway for rugby fans at Eden Park. Calls for rail platform upgrades and a pedestrian footbridge have been dismissed by Auckland's Mayor Wayne Brown as inappropriate and disappointing. And to motorsport, with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty, the debrief today for the team whose car ran out of fuel on the last lap at Bathurst while leading. The Team 18 owner says it was a fuel strategy software issue.
0: Sports News.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari good brands me hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17.6 डिग्री और आज का ओवरनाइट 14 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे मौसम आज का ऑलमोस्ट ओके था, कुछ क्लाउडी जरूर था, कल डिट्टो ऐसा वेदर रहने वाला है. सनसेट आज का 7:36 पर.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbane.
17: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
16: 5:03, 4 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. अभी रुजबे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन नुशीन इज हियर. हाउ इज इट गोइंग नुशीन?
18: इट्स गोइंग गुड सैंडी. मैं आपको सच्चे में पूछना चाहती हूँ, आप किसके लिए दिया जलाओगे? आपने बोला ही नहीं.
16: हाँ, दिया. सो एक्चुअली मैं ना, देयर इज दिस वन पर्सन चिन्मयी.
18: मैं तो बोलने वाली थी नाम मत बताओ.
16: दैट्स फाइन. चिन्मयी तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है वो.
18: ओके.
16: शी यूज टू लिव इन न्यूजीलैंड. तो जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी एंड तो उसके साथ मैं थोड़ा टाइम रही थी चिन्मयी के साथ व्हेन माय सिस्टर वाज अवे. एंड शी बीन वेरी हेल्पफुल. मतलब उसने बहुत गाइड किया था कि नॉट जस्ट एन गाइड कि वहाँ पे जाओ तुम्हें ऐसे मिल जाएगा. प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइड उसने दी थी. एंड उसने मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें मुझे साथ में ले जाके भी समझाई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था. लाइक छोटी छोटी बातें कई बार होती है ना, कि किसी के साथ कैसे वो बात कर रही है, वहाँ से पिक करना, वो सारी चीज़ें. तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था. शी इज़ नॉट लिविंग इन न्यूजीलैंड राइट नाउ, शी इज़ मूव्ड टू UAE. But she been very helpful actually, ma'am. And वो मतलब मेरी दोस्त भी नहीं थी. ऐसा भी नहीं कि मेरी वो दोस्त थी या कुछ ऐसे.
18: Sandy playing it safe.
16: Yeah. Yeah, so she was my sister's friend.
18: Yeah.
16: And she is my sister's friend. So yeah. तो वो मेरे को she was the one person जिसने बहुत अच्छे से, you know, without any, कई बार होता है कि आप अपने रिलेटिव की या फैमिली मेम्बर की हेल्प कर रहे हो, बट नो, शी वाज जस्ट ऐसा सेल्फलेस उसके अंदर था.
18: नाइस.
16: आई थिंक कीड़ा था हेल्प करने का.
18: या बट आई थिंक द फर्स्ट पर्सन दैट व्हेन एस्पेशली व्हेन यू आर मूविंग एंड यू कम समवेयर न्यू, दैट फर्स्ट पर्सन हु रियली लुक्स आउट फॉर यू, यू ऑलवेज रिमेंबर देम.
16: या
18: दैट लीव्स एन इंप्रेशन,
16: काफी इंप्रेशन. सो आज इस आवर में हम करेक्टर गेस भी खेलेंगे, लेकिन उससे पहले आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस न्यूज़. यू वॉज टेलिंग मी नुशीन कि ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट रीपेड मोर देन $400,000 टू पैसेंजर हु वॉज ओवरली चार्ज बाय फॉल्टी बस कार्ड रीडर. सो इंक्लूडिंग वन कम्यूटर स्टंग फॉर $433. वाओ.
18: वाओ.
16: सो उनको रीपे किया है $400,000. दिस इज अमेजिंग. कॉमर्स कमीशन ने ये असेसमेंट की इन्वेस्टिगेट किया एंड नियरली $48,000 इज स्टिल ओड टू 1,615 पीपल. ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट काफी को ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहा.
18: क्या आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हो सैंडी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट? नॉट एट ऑल. ओह माय गॉड.
16: बीन एजेस मेरे को लगता है कि या काफी साल हो गए मेरे को ट्रांसपोर्ट यूज किए.
18: हाँ,
16: आई थिंक बीच में जब मेरी गाड़ी थोड़ा ऐसा पंगा हुआ था गाड़ी का, जब मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, उस समय पर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी. बहुत इनकन्वीनियंस फील हुआ था मुझे. आई नो अभी बेटर हो गई है. बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है.
18: लेकिन
16: बहुत इनकन्वीनियंस था कि मुझे ऐसा लगा कि यार इससे अच्छा मैं टैक्सी लेके चले जाती हूँ ना घर पे. लेकिन फिर पैसा भी. सो या ऐसा था. टाइम आपका ट्रैवलिंग टाइम काफी चला जाता है मेरे को लगता है, बट आई थिंक विद सिटी रेल लिंक इट इज अ लॉट बेटर. काफी मैं रिव्यू सुन रही हूँ इसके.
18: आई थिंक जिनका कनेक्टिविटी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है, बट जिनका कनेक्टिविटी नहीं है लाइक हु हैव टू स्टिल ड्राइव एंड गो टू द स्टेशन, और अगर स्टेशन के पास पार्किंग नहीं है सो देन इट बिकम्स क्वाइट इनकन्वीनियंट कि हम स्टेशन तक जाए कैसे. लाइक फॉर आर एग्जाम्पल कि हमारा घर बहुत दूर है स्टेशन से, बस स्टॉप फिर भी पास में है बट इट्स स्टिल अ गुड 10-12 मिनट वॉक टू द बस, एंड फॉर द ट्रेन तो वॉक नहीं है और पार्किंग भी नहीं है वो ट्रेन स्टेशन के पास इतना.
16: ओके,
18: तो आई डोंट थिंक हमारे लिए ट्रेन इतना यूजफुल है एट दिस पॉइंट, बट फॉर सम पीपल बिकॉज आई हैव अ फैमिली फ्रेंड आंटी हु स्टेज इन मैनुरेवा, उनके लिए ट्रेन इज वन ऑफ हर बेस्ट ऑप्शंस फॉर ट्रैवलिंग. She's like, it takes me an hour, but I can do my reading, I can listen to music, I have my me time when I'm on the train. So I guess रुजबे भी कभी कभी बस लेके आया है सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में, एंड वो भी तभी बोलता था कि यू नो आई डोंट माइंड इट दैट मच कि बिकॉज आई गेट एक्चुअली गेट माई टाइम एंड ही गेट्स अ ब्रेक फ्रॉम मी ऑल्सो.
16: तुम्हारा मानना है बट या मेरे को लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अगर कोई यूज टू हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देन यू आर मोर देन हैप्पी टू डू इट.
18: Yeah, especially I think अगर कोई मुंबई से आया है and if they've traveled in Mumbai के local यार, ये तो आपके लिए तो कुछ नहीं है फिर. This is super comfortable then.
16: Yeah. So guys, आप भी बताइए अगर आपने local travel करते हैं आप यहाँ पे, you know, by transport,
18: public transport के साथ
16: या through अगर आप travel करते हैं तो प्लीज यहाँ पे बताइए इसके बारे में.
18: Yeah, share your experiences.
16: Yeah, call करो या मैसेज करो, एंड थोड़ी देर में आपको चांस मिलने वाला है एक और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर द Festival of Fortune.

0: 5:17 हो चुके हैं, पावर ड्राइवेट 5 आप फिलहाल यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रुजबे इज नॉट इन द स्टूडियो टुडे, आई विल काउंट इज लीव टुडे। या एक बार आके बोल के जाना इज नॉट इन टुडे। एनीवे, वैसे आज आर्टिकल आया है अबाउट वेन ब्राउन, ऑकलैंड के जो मेयर हैं, उन्होंने इशू उठाया है अबाउट द ट्रेन डिलेज जो कि एडन पार्क में होती है। सो क्या हुआ है कि ऑकलैंड के जो मेयर है एंड एडन पार्क के जो चीफ है, दे आर क्वाइट एट ऑड्स कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग क्यूज एंड जो ट्रेन डिलेज होती है, बिकॉज आफ्टर ऑल ब्लैक्स बीच ऑस्ट्रेलिया जो एडन पार्क में हुआ था 10 अक्टूबर को रिसेंटली। एंड हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी वहाँ पे कि द फैंस दे वर लेफ्ट वेटिंग, काफ़ी उनको इंतज़ार करना पड़ा था। थाउजेंड्स ऑफ रग्बी फैंस दे वर फेसिंग लॉन्ग क्यूज आफ्टर द मैच एंड सम वेटेड फॉर अप टू लाइक 40 मिनट्स फॉर सिटी बाउंड ट्रेन्स, वाइल फ्रस्ट्रेटेड सपोर्टर्स दे बूड एज वेल एज द ट्रेन्स पास्ड। सो ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दी है कि एटी सेड अ डिले इन क्लोजिंग द मॉर्निंग साइड ड्राइव लेवल जो था मेंट कि ट्रेन्स कुड नॉट गेट इनटू पोजीशन ऑफ किंग्स लैंग स्टेशन इन टाइम। नाउ एडन पार्क का इसमें ये आर्गूमेंट है, उनका जो सीईओ है उनका ये कहना है कि कुछ अर्जेंट इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होती है ताकि ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सके, जिसमें वेन ब्राउन का रिस्पॉन्स है कि जो मेयर जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि इमीडिएट प्रॉब्लम वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। तो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, वो कह रहा है तुम्हारा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान सही नहीं था, वो कह रहा है कि तुम्हारा ट्रेन का टाइम टेबल सही नहीं था। तो फिलहाल एक्चुअली में ये चल रहा है। नाउ बिगर इश्यू क्या है ना इसमें कि जैसे हम ऑकलैंड सिटी रेल लिंक के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सो इट जस्ट आफ्टर दैट चेंज हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स का ऑपरेट होना थ्रू द सिटी, काफ़ी चेंजेस आई है। सो मैच वॉज अमंग द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ द न्यू पोस्ट इवेंट, ये जो टाइम टेबल चेंज हुआ है उसके बाद अगर कोई पहला बड़ा मैच हुआ है वो ये था 10 अक्टूबर वाला। सो एटी ने बोला है कि अराउंड 15,000 पीपल दे यूज द ट्रेन्स टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द गेम, वाइल 19,000 पीपल यूज स्पेशल इवेंट ट्रांसपोर्ट एज वेल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड फिगर्स। सो इसके कारण उन्होंने बोला है कि अगर पता था कि इतना बड़ा मैच ऑल ब्लैक्स एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है तो इट्स अ बिग मैच, तो इसके लिए ऑलरेडी प्रेपरेशन होनी जरूरी थी, उनका ये कहना है कि
1: एब्सोल्युटली।
0: एंड सिटी रेल लिंक का टाइम टेबल अगर डिफरेंट है लेकिन इवेंट्स के लिए लोग ले रहे हैं, ट्रेन्स ले रहे हैं, देन वाई उसके ऊपर मैनेजमेंट क्यों नहीं सही था, बट एक दूसरे के ऊपर ही डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं था, तुम लोगों को हैंडल नहीं कर सके, इतने लोगों को तुम बुला के वहाँ पे तुम उसको हैंडल नहीं कर सके।
1: आई थिंक दे नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर द इंडिया न्यूजीलैंड गेम्स देन, बिकॉज तभी भी बहुत ज्यादा क्राउड रहने वाली है।
0: यू सो राइट, अभी अक्टूबर में होने वाली है वो गेम्स,
1: हाँ एंड ऑफ द मंथ स्टार्ट होगी ना।
0: या एंड उसमें तो इट्स गोना बी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा घसर मचने वाली है, बिकॉज और क्या होता है ना कि काफ़ी लोग इसलिए गाड़ी नहीं लेके जाते हैं बिकॉज काफ़ी सारी पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस होती है वहाँ पे।
1: हाँ बिल्कुल,
0: काफ़ी देर तक वहाँ पे पार्किंग अलाउड ही नहीं होती है काफ़ी रास्ते में।
1: हम तो कोल्डप्ले पे गए थे ना, तो व्हेन वी वर पार्किंग अ कार वी लिटरली सॉ दैट गाय गिविंग टिकट्स टू एवरीवन।
0: ओह
1: या सो इफ यू आर पार्किंग गाइस ड्यूरिंग इवेंट्स बी केयरफुल, आपको भी टिकट लग सकती है यार,
0: स्पेशली अगर वहाँ पे इवेंट रिस्ट्रिक्शन लिखा है। एंड ग्रास पे पार्किंग की भी टिकट मिलती है अगर उस एरिया के अराउंड आप ग्रास में पार्किंग कर रहे हो,
1: उसकी गाड़ियां टो भी हो सकती है,
0: टो भी हो सकती है और उसकी आपको टिकट भी मिल सकती है। तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो चुकी है अभी रिसेंट टाइम में। वैसे नुशीन मैसेज आया था कि नुशीन एंड रुजबे आर गिफ्टेड विद एक्सट्रीमली रेडियो फ्रेंडली वॉइस, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया बट गॉड ब्लेस लिखा है।
1: थैंक यू जी।
0: या सो या घर में ही टैलेंट है देखो। लेकिन रुजबे घर पे भी इतनी बात करता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे अगर रुजबे के बारे में फ्रॉम नुशीन, आज आपके पास मौका है एक्चुअली में।
1: यस,
0: आस्क मी एनीथिंग होता है ना, आज आपके पास मौका है कि आपको प्रूव हो जाएगा कि रुजबे ऐसे ही बोलते हैं काफी चीजें या फिर इट्स फैक्ट है, मिथ है। आप जो पूछना चाहते हैं ना आज यहाँ पे कॉल करके पूछो। Ask me anything में आज नुशीन है यहाँ पे।
1: ओके, थैंक्स सैंडी।
0: सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कोई सवाल आपको ऐसा पूछना है रुजबे के बारे में, यू गॉट अ चांस। और ये लाइक वंस इन अ ब्लू मून ऐसा चांस, कब से तुम नुशीन यहाँ पे हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लाइक हेयर लाइक He's not even listening. तो या कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं यहाँ पे बिंदास, डरो मत।
2: दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: Hum, accurate traffic.
6: Bus time is me time.
7: Cloudy overnight with a low of 15 on the northern heavy from Oniwa Road to Northcote Road and through Albany. The northwestern is slow from St Luke's Road to Rosebank. On the southern heavy from Green Lane to the Ellerslie Panmure off ramp and the other direction from Sylvia Park to just past Green Lane. Southwestern's heavy heading north through Mangere Bridge and town to the airport taking 35 minutes.
6: Knit, read, scroll, relax. Travel time is me time on AT buses, trains and ferries.
8: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
9: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion, अब precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz. Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/food festival. Festival.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
0: जहां सब चुप हैं, हम हैं जरा loud. हम.
2: Half past five हो चुके हैं and yes फिलहाल Power Drive at five यहां पे आप सुन रहे हैं. You know आज 6 बजे के बाद क्या होने वाला है नौशीन? 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में क्या होता है कि आई विल गिव यू एन आइडिया. सो ट्रेंड मेकर्स एक ऐसा आवर है जहाँ पे वी डू अ थीम. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आज मेरी ये थीम है, ठीक है, इस थीम के ऊपर मेरे गाने होंगे, मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रहती है. तो उसमें समटाइम्स वी शाउट आउट, कोई सेलिब्रिटीज का बर्थडे है या कुछ ऐसा तो उनको हम शाउट आउट भी देते हैं, तो ये सब भी होता है. तो आज एक्चुअली में बर्थडे नहीं है, आज हम एक्चुअली में एक थीम करने वाले हैं. द थीम इज अबाउट ओशन.
3: ओशन
2: बीच.
3: वाह सैंडी समर वाइब में जा रही है आप तो.
2: आज का वेदर देख के थोड़ा जैसा लगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी भी बीच में लगी, वो सब तो ऐसा मन किया होगा ना कईयों का, यार ये तो बीच वाला वेदर है, ऐसा समुद्र के किनारे बैठा होना चाहिए.
3: एक्चुअली लास्ट वीकेंड जो गया था ना वो मस्त था,
2: स्पेशली सैटरडे.
3: हाँ लवली डे. संडे भी अच्छा दिन था, हम लोग वॉक पे भी गए थे सैंडी, आप भूल गए क्या? मजा था यार.
2: 5 to 7 किलोमीटर आई थिंक.
3: और कितने आइसक्रीम खाए सैंडी?
2: मैंने तो एक ही खाया है. आइसक्रीम हाउ मेनी यू हैव ईटन?
3: मैंने दो खाए, वन इन द स्टार्टिंग वन इन द बिगिनिंग.
2: या
3: सॉरी एंडिंग. हमारे बट कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि वन इन द स्टार्टिंग वन इन द ब्रेक एंड वन इन द एंड.
2: चार चार आइसक्रीम, तीन तीन, चार चार आइसक्रीम खाई है. बट इट वाज फन. सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है एक्चुअली में, तो उसके मौके पर वैसे ये थी पिंक रिबन वॉक. सो इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट यू कैन गो टू breastcancerawareness.com. उनकी एक्चुअली वेबसाइट है.
3: And I think आज का पूरा वीक चालू है. There are a lot of ribbon walkers stationed at places also over Friday and Saturday. I've also volunteered for one of that.
2: Oh wow, nice.
3: I'm not giving the location, guys. Okay. Sorry.
2: But it's a great way to give back to community, I think.
3: Yeah, I think it's it feels like you're contributing in some way. Even that day when we did the walk, there were so many people. It was my first time walking for a cause. And it felt really nice, to be honest. And it was so good to see so many people who have shown up for it.
2: Yeah. And different motivation ke saath, different stories ke saath log wahan pe aate hain.
3: Yeah.
2: And humne guys wahan pe dekha ki kuch log to just pink ड्रेस पहन के ही नहीं आए थे, कुछ लोग जो थे लाइक पिंक फ्लावर्स कैरी करके आ रहे थे, एनीथिंग पिंक कैरी करके आ रहे थे. और मे भी कुछ लोगों ने जिनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट है, मे भी जिनके उनकी फैमिली में अगर किसी को हुआ है तो वो चीज़ भी वो कैरी करके आ रहे थे. सो मतलब ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे थी. सो इट वाज क्वाइट अ होलसम मोमेंट. मुझे लगा कि बच्चों के साथ भी वहाँ पे वॉक कर रहे थे, पेट्स के साथ भी वॉक कर रहे थे.
3: एब्सोल्युटली. एंड देयर वर सो मेनी मेन who were embracing their femininity and sorry feminine and, side and they were wearing dresses,
2: they were
3: pink dresses.
2: Pink, yeah,
3: exactly.
2: So wo mujhe bahut acha laga actually.
3: It was a really good sight to see that everyone was on one level.
2: Yeah. तो कभी आपको ऐसा मौका मिलता है तो डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट. और यस आज ट्रेंड मेकर्स में ओशन सी के किनारे, समुद्र के किनारे जो गाने हैं ये हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि सुनको आपको ऐसा पिक्चराइजेशन मन में आए कि हाँ ऐसा फीलिंग आपको आए. सो अभी वहाँ पे अगर नहीं जा सकते लेकिन ड्राइविंग करते करते वैसे गाने आप जरूर सुन पाएंगे यहाँ पे.
3: बट सीधा ओशन में मत चले जाना गाइस. Focus on the road, please.
2: Yeah. Life jacket is more important.

0: with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027, ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye,
2: to phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
6: You made it with Caboodle.
7: Cloudy overnight with a low of 15 on the northern heavy from Oniwa Road to Northcote Road and through Albany. The northwestern is slow from St Luke's Road to Rosebank. On the southern heavy from Green Lane to the Ellerslie Panmure off ramp, and in the other direction from Sylvia Park to just past Green Lane. Southwestern's heavy heading north through Mangere Bridge and town to the airport, taking 35 minutes.
6: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
1: रुस्बे, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक.
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज.
2: बुक नाउ विद सन टूर्स.
1: कॉल करें 0800 478686.
8: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
9: Ah, the in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
10: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
11: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have 2 beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
12: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
13: The rain falls softly across the estate. He waits for you beneath the old oak tree. He's hoping that this time you'll take his hand, despite the scandal and that unfortunate incident with the peacock. You approach. He smiles, takes a breath and says,
14: "The next station is Karangahape."
15: Read, scroll, draw, knit, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains and ferries.
16: 35 minutes and we've moved 3 kilometres. Welcome to peak hour commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
17: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
16: Yeah, that sounds like me.
17: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
16: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
18: Last chance to enrol is midnight 25 October. Enrol now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
19: Power Drive at 5.
20: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
21: You're listening to Humplink, Bollywood's biggest hits. Good evening, Drive Show.
1: किसने बोला बोलने के लिए?
7: ये कहाँ से आया संदीप?
21: Drive Show जा रही है आपके लिए.
1: 18 मिनट बाकी है 6 बजने में.
21: और Drive Show आप enjoy कर रहे हैं.
1: Yeah.
7: आज मैं please vote if Rusbe should take her off today or should he be at work today?
1: तो today's topic is right now आपके पास ये topic है.
3: क्या रुजबे को आज छुट्टी अप्लाई करनी चाहिए या फिर ये रुजबे का आना काउंट होगा? बताओ मुझे एंड बी ऑनेस्ट गाइस, बी वेरी ऑनेस्ट।
4: मैं भी हूँ यार सैंडी, मेरे को भी थोड़ा क्रेडिट दो।
22: 0800-004-866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर हियर एंड प्लीज कॉल इन सपोर्ट फॉर मी।
3: नहीं नहीं नहीं, बी ऑनेस्ट है ना नुशीन, वी नीड टू बी ऑनेस्ट,
4: कॉल इन सपोर्ट फॉर मी गाइस, आई डोंट नो अबाउट देम बट फॉर मी।
3: शी इज लाइक मैं क्यों फंस रही हूं। So 0800-00-HUM, 0800-00-HUM कॉल या फिर मैसेज। अगर मेरे पास 5 मैसेजेस आ जाते हैं ना जो कहते हैं कि
22: नहीं
3: दिस इज काउंटेड,
22: क्योंकि अब मुझे सैंडी ने ऐसा बोला है कि अभी मैं 6-7 वाला शो भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप बोलो अभी कि मैं करना चाहिए, मुझे अलाउड है करना कि नहीं?
3: नहीं, इसको छुट्टी अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये बताओ। तुम खेलो मत।
22: नहीं मतलब वैसे अगर
4: I have no comments, don't look at me.
22: Yeah.
3: उसने enough कर लिया support तुम्हें भाई।
22: तो आज वैसे आज किया क्या आपने पूरे शो में? Sandy update दो मेरे को 5:43
3: आज। Why you deserve to know the update? आज you tell this first Rusbe.
22: 13 October है, 13 October है ना आज?
3: आज 30 October।
22: आज 13 October के दिन पे मेरे को लगता है वो गाना तो बनता है।
3: कौन सा?
22: जो मेरे ऊपर बहुत सूट होगा।
3: कौन सा वाला है?
22: इसमें तेरा घाटा।
3: ओ हाँ।
22: 13 है ना आज तारीख?
3: 13
4: Is that funny?
22: No, it is not. But yeah, we got a message at least. क्या है?
3: तुम्हारे फेवर में नहीं आया। Send off unpaid leave for 3 weeks is always late. लेकिन non लिख दिया उन्होंने।
22: Always late नहीं हूँ मैं अभी। ये साल मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। अभी पिछले 1-2 दिन में थोड़ा हुआ है मेरे साथ।
3: पिछले हाँ थोड़े दिनों में।
22: पिछले थोड़े दिनों में थोड़ा सा रहा है। But otherwise I'm always on time. Mostly on time.
3: Mostly on time is actually a better word.
22: Yeah, mostly on time.
3: So yeah, अभी एक ही मैसेज आया लेकिन उसने भी ये बोल दिया रुजबे।
22: कोई बात नहीं।
3: आज बोलो ना लोगों को कॉल करने के लिए।
22: नहीं कोई कॉल कर रहा है, कोई सुन रहा ही नहीं है आज। पता नहीं आज आप लोगों ने आस्क मी एनीथिंग भी किया था ना कुछ तो भी। क्या हुआ, कॉल आया कोई उस पे?
3: क्योंकि तुम हो नहीं जानना तुम्हारे बारे में,
22: नहीं जानना किसी को। अच्छा 0800-00.
4: They're just happy with the lies you tell them. No, we are very honest people.
22: What lies am I telling? We want ये देखो लिखा आ गया, मैसेज आ गया।
3: देखो ये मैं काउंट नहीं करूँगी, ये बेनेफर है।
22: ऐसा ये गलत है। This is so unfair.
3: We want Ruzu Babu forever as he does story for it. Nakoich. Sorry, late message.
22: It's okay. No, thank you so much, Benefer, for a lovely message.
3: Benefer. तो या बेनेफर का एक मैसेज आया है
22: वैसे।
3: 4 more messages
22: और वैसे इस थर्सडे को आपके लिए हम लेकर आने वाले इलेक्शन स्पेशल।
3: ओ या अपॉर्चुनिटी पार्टी लीडर के साथ हम बात करने वाले हैं एंड इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एक्चुअली में।
22: अपॉर्चुनिटी पार्टी के बारे में, हाँ क्यू वॉन्ग के, क्यू ले वॉन्ग के साथ बात करने वाले हम। एंड अगर आपको भी नहीं पता अपॉर्चुनिटी पार्टी के बारे में ज़्यादा कुछ, तो फिर आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ऑल्सो नो मोर अबाउट दिस पार्टी।
3: या एंड बाय द वे रुजबे, अभी तुम हो ही यहाँ पे तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने का मौका भी देते हैं लिस्टनर्स को।
22: हाँ जी बताइए क्या जीतने का मौका मिल रहा है?
3: $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर।
4: वाओ,
3: माइटर 10 वाउचर इज समथिंग लाइक कोई भी जाके कुछ ना कुछ तो खरीद
22: तो
3: सकता है।
22: मुझे तो बहुत जरूरत है,
3: घर का बहुत सामान आ जाएगा वहाँ से। $1,000 इज लाइक गुड मनी फॉर दैट।
22: पूरा आउटडोर तुम्हारा रिस्ट्रक्चर हो सकता है सब, मतलब रिस्ट्रक्चर नहीं काफी कुछ हो सकता है।
4: पहले इंडोर रिस्ट्रक्चर करो, अभी आउटडोर बहुत हो गया।
3: ध्यान से बोलो प्लीज।
22: आई एम जस्ट सेइंग माइटर 10 में लोग ले सकते हैं ना, आउटडोर फर्नीचर भी मिलता है वहाँ पे, काफी कुछ मिलता है।
3: सो दिस
22: इंडोर वाली चीजें भी काफी कुछ मिलती है वहाँ पे। पेंट करना है घर आपको तो पेंट वेंट खरीद सकते हो आप,
3: काफी चीजें।
22: लाइटिंग अगर चेंज करनी है आपको वो भी होगा।
3: बाय द वे प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पे।
22: प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पे।
3: इसका मुंह देखो।
22: प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पे।
3: हाँ वो सब भी होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीजों के ऊपर लाइक अगर घर पे आपको स्विंग चाहिए ये सब चीजें भी होती है
22: घर के स्विंग बाहर ना, लेकिन
3: वो अंदर वो वाली स्विंग होती है ना जो सीटिंग वाली, मतलब इंडोर वाली स्विंग, रॉकिंग चेयर टाइप जो होती है एक्चुअली में। बाहर भी बाहर ही रखते वैसे उसको ज्यादातर। बट या दिस इज बाय NZPMI, सो यू कैन अनलॉक योर प्रॉपर्टीज टू सेल वैल्यू विद NZPMI जो कि आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स है।
22: ओह डेवलपमेंट कर रहे हैं।
3: सो 0800-4-NZPMI इज अ नंबर टू कॉल देम। सो टू पार्टिसिपेट आपको क्या करना है, NZPMI स्पेस योर नेम ऑन 5599 NZPMI स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599. एक का मैसेज आया बख्श तो रुजबे को प्लीज, ही कैनॉट बी अवे फ्रॉम ड्राइव शो, वी वोट फॉर रुजबे.
22: थैंक यू. Thank you. Yeah. Truly appreciate your message.
4: Three more messages to go.
3: And then aap
22: but ye kya,
4: three more messages in 13 minutes.
22: NZPMI likh kar bhej rahe hai. Ye to uske saath saath likh lo na ke Ruzbe, we support you.
3: Unko $1,000 se matlab hai.
22: NZPMI space Ruzbe, we love you. Aisa karke bhi aap bhej sakte ho.
4: But that is not counted.
22: Why that is not counted?
4: Because Sandy wants a clear answer.
3: अपना नाम लिख के वैसे भेजो अगर आप साथ में वोट करना चाहते हो रुजबे को कि वो आज एनुअल लीव नहीं अप्लाई करेगा तो लिख को भेजो 5599 इज द नंबर.
20: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: सिंपली गए मुलाकात हो गई आपसे.
1: हम थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: ट्रेंड मेकर्स जारी आपके लिए 104.2 FM और रोवा ऐप के थ्रू. वैसे काफी लोग सिटी के अंदर 87.7 पे भी सुन रहे हैं थोड़ा बहुत.
1: दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो वर्किंग एंड आल्सो साथ ही साथ कम्युनिटी में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि रामकृष्ण मंदिर जो है मैनकाउ में, वहाँ पे नवरात्रि की सेलिब्रेशन के लिए आप जा सकते हैं टिल 20th अक्टूबर. गरबा एंड डांडिया रास जो है वहाँ पे डेली हो रहा है आफ्टर कथा.
0: जी, इसके साथ साथ काफ़ी जगहों पे एक्चुअली सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर हेंडरसन 11 ब्रिक स्ट्रीट, वहाँ पे भी 8:30 बजे से सेलिब्रेशंस हो रहे हैं गरबा के एवरी डे.
1: या एंट्री हनुमान मंदिर जो कि बर्गडेल नॉर्थ शोर में है, वहाँ पे भी डीजे गरबा इज फ्रॉम 8:10 to 9:30 PM. एंड 18th को वहाँ पे भजन जैमिंग एंड डीजे गरबा रहने वाला है फ्रॉम 6:30 PM ऑनवर्ड्स.
0: क्या बात है. तो और भी अगर आपके एरिया में भी हो रहे हैं सेलिब्रेशन गरबा के, तो एंजॉय कीजिएगा ये फेस्टिव सीजन में. सेफ रहिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ इन ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम्स, क्योंकि काफ़ी बार हम बहुत लाइटली ले लेते हैं हमारे सेफ्टी को. बट या मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ दैट.
2: ट्रेंड मेकर्स
3: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Andrews Bay on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
6: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं. प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है. बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोय टोय, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 09278860.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Drive Show jari hai aapke liye only on Hum, playing Bollywood's biggest hits. Aur aaj Trendmakers mein aapke liye hum lekar aa rahe theme jo hai beach pe ke gaane.
15: Yeah, समुद्र के किनारे,
14: समुद्र के किनारे
15: किनारे ये सब गाने आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. एंड आपको बता दें बाली बैंकॉक के ट्रिप के बारे में, बाय द वे, टू कंट्रीज वन एपिक एडवेंचर एंड यू गोना हैव अ जीरो स्ट्रेस. सो पहले बाली एंड देन बैंकॉक, हम दो जगह पे जाने वाले हैं ईस्टर 2027 में. सो द डील इज की ड्राइव शो एंड सन टूर्स, तो हम साथ में मिलके जा रहे हैं बाली एंड बैंकॉक, जो कि 50% सोल्ड आउट हो चुका है गाइस. सो बहुत ही कम स्पॉट्स बाकी है एंड आई कैन सी कुछ लोगों ने और भी इंटरेस्ट दिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे. यू नो मुझे लगता है कि जब भी हॉलीडेज़ के बारे में बातें होती है तो वी ऑलवेज गो टू आवर कहाँ की छुट्टी पे कहाँ पे गए थे. हम अपने होम कंट्री के बारे में कई बार बात करते हैं, बट आई डोंट थिंक होम कंट्री इज़ अ हॉलीडे लाइक होम कंट्री तो होता था ना कि विजिट हो जाती है वो एक या विजिट हो जाती है विजिट टू अ फैमिली.
14: Yeah, you're right. It's not a holiday.
15: It's not a holiday.
14: Yeah, it's more of a visit and ticking of things. कि अरे यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, उसको मिलना है, वो करना है. So yeah, it's I don't know. मतलब मैं actually मैं अभी काफी time से नहीं गया हूँ ना वापस without like you know on a holiday.
15: On a holiday.
14: मैं last जब गया था तब शादी के लिए गया था I think.
16: Yeah, but then also
14: that was not a holiday.
15: Not a holiday.
16: It can be a holiday if you go for a holiday back in India also.
14: Haan,
15: yeah, to different places.
16: If you're just going to your hometown, then it's not a holiday.
15: Usually, क्या होता है ना कि हमारे कई बार annual leaves होती है तो हम कहते हैं कि चलो, you know, पीछे family को मिलके आ जाते हैं, which is okay. लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि हम कहीं घूमने ही नहीं जाते. घूमना as in घूमना I think is the right word.
16: Yeah, I think that's important that you plan trips even if it's with your family or just solo, like with your partner or just yourself. It is important that you do that.
15: Yeah,
16: take your family somewhere else if not go solo, but make sure that you all do go somewhere, visit a new place in India. India mein bahut sari, like whichever your home country is, not just India, but make sure you go and visit a new place in your home country. Yeah, also
14: explore so a new explore a different place.
15: Explore different place actually mein. So isliye Bali, Bangkok is hum ye nahi keh rahe ki yahi pe jao hi jao, but we are giving you option over here.
14: Yeah,
15: ki this is one place, these are two places we are going March 2027 mein, which will be a Easter weekend wahan pe. एंड 9 days का तकरीबन ये ट्रिप रहने वाला है. और कई बार क्या हो जाता है ना कि कईयों को जाते समय ये होता है कि भाई हम अकेले क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे इंतज़ाम करेंगे. तो दिस इज़ लाइक अ ग्रुप ट्रिप जहाँ पे एवरीथिंग इज टेकन केयर.
14: एंड वी मेट फ्यू ऑफ आर यू नो कंपनीज जो हमारे साथ आने वाले हैं. एंड बहुत ही फन लोग.
15: व्हाट
14: अ वाइब. आई थिंक इट्स गोना बी सो मच फन. या इट्स गोना बी रॉकिंग. सो There's going to be a lot of adventure stuff जो हम वहाँ पे करने वाले हैं. उसके साथ साथ massages वहाँ पे मैं बहुत excited हूँ क्योंकि वहाँ पे last time मैं जब गया था literally massages was like part of every day. And it's so cheap also.
15: It's very cheap.
14: That it's
16: What was your cheapest massage, Rusbe?
14: Cheapest massage was $10.
15: Wow.
14: $10 was the cheapest. $10.
16: And how shady was that place?
14: No, the place was really bad. Aisa lag raha tha ki
16: but the people there were really nice.
14: Yeah, people were so good. Yeah. Like mujhe lizards bilkul nahi pasand. Wahan pe upar lizards ghum rahe the.
15: Wow.
14: But
16: और मैं उसको डरा रही थी एक तेरे ऊपर गिरने वाला है मसाज के टाइम.
14: या एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू रिमूव योर क्लोथ्स ना, तो इमेजिन करो और भी डर लग रहा है तुम्हें.
15: ओह नो.
14: नहीं तुम्हारे बॉडी पे से गिर सकती है ना लिजर्ड.
15: या वही.
16: नहीं गाइस बट ये $10 वाला मसाज था. देयर आर बेटर प्लेसेस दैट चार्ज $20.
15: हां डराना नहीं है उसमें यहां पे.
14: या नो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को $10 में भी वो क्वालिटी ऑफ मसाज is something that I
15: and it was focused now tum distract nahi the kyunki tum lizard ko dekh rahe the.
14: Nahi main nahi dekh raha tha.
16: Nahi wo so gaya tha.
14: Are main so gaya tha kyunki main bola abhi kya hai, abhi girega to girega yaar, kya farak padta hai na.
16: Main dar rahi thi ki we will get robbed, but no, the people were really good over there. The service, even though it was a small hole in the wall, everyone was really nice. I think Bali mein bahut sare acche log hai,
14: bahut acche,
16: bahut friendly log hai. हमारे साथ वैसे बहुत सारे किस्सेज हुए थे व्हेन वी वेंट एंड इट वाज एन एडवेंचर.
14: या डेफिनेटली. एंड दैट्स वेयर वी आर ब्रिंगिंग दैट एडवेंचर फॉर यू एज वेल. सो वी आर गोना गो टुगेदर एंड शो यू हाउ वी ट्रैवल.
15: या सो गाइस बुक योर बाली बैंकॉक गेटवे हमारे साथ. एंड साथ में वैसे यू विल दिवाली ऑफर है राइट नाउ. सन टूर्स इज गिविंग फ्री 2-night 3-day कार्निवल क्रूज पैकेज.
14: ओह वाओ.
15: इफ यू बुक दिस हॉलीडे you will get totally free 2-night 3-day ka carnival cruise package. So this is still Diwali ki offer hai ye. So call Sun Tours now 0800 4786 8688 0800 4786 8688.

0: Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
2: Accurate traffic.
3: Freedom Spring Sale on now.
4: Cloudy overnight with a low of 15. Pretty good on the roads now on the northern town to Constellation Drive, just 18 minutes into Silverdale, half an hour to Massey, taking just quarter of an hour. Town to Monaco, 20 minutes to Drury, half an hour on the southwestern, just a bit slow from Lambie Drive to the southern. Night works on all train lines tonight, starting about 11 p.m. with buses replacing trains.
3: Save up to 50% off selected sofas and furniture. Hurry in store today, only at Freedom.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
8: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
9: Enrolled yet?
8: How about you? Are you enrolled?
10: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. Their selected big brand kids and adults tees, two for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
12: Be in to win one of five $10,000 MyToTen gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. कैंपिंग का पूरा गियर ले सकते हो, एक रूम का मेकओवर कर सकते हो, या अपने गार्डन गोल्स को रियलिटी बनाओ। The possibilities are endless. बस $20 या से ज्यादा स्पेंड करो, अपना रिसीट कोड ऑनलाइन एंटर करो, एंड यू आर इन द ड्रॉ। प्लस क्लब मेंबर्स गेट देयर एंट्रीज डबल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई, एंड्स 1st November. शॉप नाउ एट MyToTen.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
14: Your favourite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: Mixing in the house.
16: They-

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Trend Makers.
1: ट्रेंड मेकर्स जारी है आपके लिए ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज 13th of October, आज हम आपके लिए दरिया किनारे, दरिया ही होता है ना, समुंदर किनारे, दरिया, दरिया किनारे, दरिया रिवर है.
2: I thought I was bad, bro.
1: दरिया किनारे एक बंगला पोरी गई, कुछ तो भी ऐसा गाना है, गाना है कैसा
2: होगा, नहीं पता मुझे. Guys, I have to go home with this. Please save me.
1: Yeah.
2: Thank you, Nushin. Aaj join karne ke liye aap.
1: Thanks so much.
2: It was very nice. Like, we loved it. And listeners also loved it. I loved it.
3: Thank you, Sandy. Thank you for having me. Why are you saying thank you, Rusbe?
1: Like,
3: you
1: thank you so much saying, for covering up, you know.
2: No, she was not covering you.
3: Apologizing to Sandy.
1: I apologize to
3: and
1: her.
3: And you can thank me later at home.
1: Okay. Yeah. Okay. No, but I'm really very sorry to Sandy and to all the listeners due to some unforeseen circumstances.
3: Sandy, ये हंस-हंस के क्यों apologize करता है? मेरे को बहुत annoyance लगता है. जब हम झगड़ते भी है ना, ये ऐसे हंस-हंस के मेरे को sorry बोलता है. और मेरे को लगता ही नहीं कि it is, you know, heartfelt apology नहीं लगता है ये.
2: ऐसा लग रहा है मजाक कर रहा है ये.
3: Exactly, bro.
2: क्योंकि कल फिर करेगा वो.
3: Exactly.
1: मैं हंसमुख इंसान हूँ भाई. मैं हंसते-हंसते करता हूँ चीजें. क्या प्रॉब्लम है यार? तुम लोग हंसी फैलाओ हर जगह, बात करो हंसते-हंसते.
2: Okay.
1: है कि नहीं?
2: Yeah.
1: But मैं सच्ची में बोल रहा हूँ ऐसा, लाइक मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ. मेरी आवाज में तुम समझो दर्द है.
3: बहुत दर्द है भाई. मेरे को रोना आ रहा है सुन सुन के. सैंडी, आई एम सो सॉरी फॉर यू.
2: एनीवे, लगता है अलग रूल निकालना पड़ेगा. बट थैंक्स रुस्बे.
1: क्या रूल निकालना पड़ेगा? अभी बताओ रूल क्या है.
3: वो आपको कल सोच के बताएंगे गाइस.
2: आई विल थिंक अबाउट इट.
1: ठीक है,
2: विद लिसनर्स. तो चलो गाइस, अभी थैंक यू नुशीन.
3: Thank you so much. Thank you, Sandy. Thank you, everyone.
1: Have a wonderful rest of your evening. See you tomorrow.
2: Bye.
3: Bye.
4: Ooh. Yeah. Now.

0: Happy Hour on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. They're selected big brand kids and adults tees, 2 for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you later, T's and C's.
6: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
0: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800 4422.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Octopus Factory Farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
3: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
4: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
3: Yeah, that sounds like me.
4: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
3: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
5: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका लोटस मैनिकाओ माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट बस एंट्री फॉर्म भरो रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो फॉर्च्यून दिवाली बी इन टू विन एंड 15th November टीज एंड सीज अप्लाई।
10: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get 1% per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
11: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
12: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. The latest political poll has National and Labour neck and neck. The One News Varian result puts the main parties on 28% each. Both the left and right blocs would need the Opportunity Party on 8% to govern. Foreign Minister Winston Peters making no apology for New Zealand abstaining from a UN vote on pandemics. 153 nations supported the political declaration on prevention, preparedness and response. Police have launched an investigation after a woman was fatally struck by a vehicle on Auckland's North Shore last night. They're appealing for witnesses. In sport, rugby league with Machinery House in a league of their own and the Kiwis team for Thursday's World Cup opener against the Aussies. It's a steamroller pack. While Dane Gagai's in the centres on Thursday, he'll be 35 years and 286 days old, the second oldest Kiwi to debut. Kalyn Ponga will play at fullback after talk he might slot in at 5'8". And the New Zealand track cycling team set for the World Champs starting in Shanghai tomorrow. An important opportunity to test progress 2 years out from the Los Angeles Olympics.
14: Sports News.
12: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best. Hamari good brands nahi hai. Hum.
12: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
16: A very good evening, everyone. Welcome to the show. Main Krish aa gaya hoon aapke saath dene ke liye. It is Tuesday night, 13th October hai, aur night cafe lekar main hazir khidmat hoon. Istiqbal hai aapka program mein, kyunki aaj jabki Tuesday hota hai, to aise mein kuch special lekar aa jaate hain. Coke Studio Bharat aur Coke Studio Pakistan ke gaane abhi ek ghante ke liye hum shuru karne ja rahe hain aapke liye, because it is time for Coke Studio Reloaded. 8 to midnight, Midnight Cafe rahega aapke liye, hum par, aur main Krish aapke saath dunga. But first, let's welcome you all to Coke Studio Reloaded.
12: ये है Coke Studio Reloaded on Hum.
16: वेलकम एवरी वन, वेलकम टू द शो. कोक स्टूडियो रिलोडेड हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कोक स्टूडियो भारत और पाकिस्तान के गाने आपके लिए रहेगा. अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके गाने जब हम सुनते हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, क्योंकि शायद ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड गाने नहीं गाते हैं या पाकिस्तान फिल्मों के गाने नहीं गाते होंगे, इसलिए शायद उतना पता नहीं इनके बारे में. लेकिन रीजनल और फोक गानों में ये बहुत मशहूर है अपनी अपनी जगहों पर, तो इनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं. फिलहाल दो बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं आपको पहले सुनाता हूँ कुक स्टूडियो रिलोडेड के. स्वागत है आपका, कृष का साथ है.

You're listening to your number one, humping Bollywood's biggest hits. Coke Studio Reloaded आपके लिए जारी है. Artist information मैं आपको दे रहा हूँ. Bombay Jayashree के बारे में शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन ये एक renowned Carnatic classical vocalist है from India. इन्होंने music perform किया है rooted in South India's classical traditions. Her career includes concerts, recordings और film music. Coke Studio India के wider musical approach ने इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है टू प्रेजेंट क्लासिकल ट्रेडिशंस टू न्यू लिसनर्स. और इनके गानों में डेप्थ है. ये वर्सटाइल सिंगर है ऑफ इंडियाज क्लासिकल वोकल हेरिटेज. तो बॉम्बे जयश्री को हम सलाम करते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए.

0: Studio Reloaded on Hum.
1: दिल के किसी

0: से महके
1: मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजर सानी करो जरा सी

0: Radio Reloaded.
1: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ke saath hai. Artist information ki baat kare to abhi mo artist from Coke Studio Pakistan ke baare mein aapko batana chahunga. Abida Parveen, ye Pakistan's most celebrated Sufi singers hai. Inka powerful vocals aur devotional poetry ke baare mein log baate karte hain, sarhate hain. Kafi inko popularity mili hai for this unique style. Aur inka Coke Studio duet with Tu Jhoom with Naseebo Lal widely admired raha hai. Inke परफॉर्मेंस सेंचुरीज ओल्ड सूफी म्यूजिकल ट्रेडिशंस के जो फैंस है लवर्स है उनको बहुत नज़दीक लाए हैं और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सूफी म्यूज़िक टू लिसनर्स अराउंड द वर्ल्ड और वो भी थ्रू कोक स्टूडियो. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कुछ ही देर में नसीबो लाल पर बातें करेंगे, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे.
2: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है, जिसमें कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने आप तक हम लेकर आते हैं। नसीबोलाल को सलाम करते हैं। इनका जो पाकिस्तानी पंजाबी सिंगर है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हर एक्सप्रेसिव वॉइस। और इनका करियर शुरू हुआ by performing Punjabi songs or regional music, और इनका collaboration with अबीता परवीन, जिनके बारे में जानकारी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिया on तू झूम, इससे एक बहुत ही striking vocal contrast showcase हुआ है। ये लेकर आती है कोक स्टूडियो गानों में folk और popular Punjabi influences, जो modern arrangements के साथ बहुत मज़ेदार लगता है सुनने में। इनका success demonstrate करता है कि किस तरह से traditional regional artist अब न्यू ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी भी अभी बढ़ती जा रही है। क्रिश के साथ है कुछ और गाने आपके लिए।

0: Cafe on Hum.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
2: At Bunnings, spring starts in the garden, and we've got what you need to get stuck in.
3: Whether you're a long-time gardener or you're getting your hands dirty for the first time, we can help you bring some life to your backyard.
4: Start gardening for less this spring at Bunnings. Bunnings
5: Warehouse. When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
6: Lots.
5: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
6: Probably.
5: Am I paying for this free coffee?
6: Definitely.
5: Will they talk me into an upgrade?
6: Oh.
5: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
7: True Midas.
8: The enrolment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
9: Enrolled yet?
8: How about you?
9: Are you enrolled?
10: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
1: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-88. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
11: MediaWorks complaints. How can I help?
12: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
11: Nice.
12: And you talked me into creating this funny character.
11: Great.
12: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
11: Are you?
12: Yes.
11: Are you Bobby the Baker?
12: Yes.
11: What's that thing you do again?
12: Stop it.
11: You bring the mouth.
12: Stop it.
11: I'll bring the pie.
12: Stop it, please.
11: Okay.
12: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
11: So what's the problem?
12: My name's Bruce.
13: Advertise with MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
14: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
15: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424।
16: Of Bollywood.
17: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
16: ये है Coke Studio Reloaded on Hum.
18: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai ke karke aapke favorite songs bhi hum lekar aate rahenge. Artist information bhi aapke liye hum pesh kar rahe hain. To wahi par Coke Studio Pakistan aur Coke Studio Bharat ke gaane bhi aapke liye hum pesh kar rahe hain. Pepon ke baare mein aapne suna hoga. Inhone Bollywood gaane bhi gaaye. अंगरंग महंता, इनको प्रोफेशनली पेपॉन के नाम से जाना जाता है. ये असम से है और ही इज़ नोन फॉर ब्लेंडिंग असमीज फोक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और मॉडर्न साउंड्स. ये बोथ एज अ परफॉर्मर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर के तौर पर अपीयर हुए हैं इन दी कोक स्टूडियो इकोसिस्टम. और इनका म्यूज़िकल स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है दी कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. और इनके काम से इनफेक्ट रीजनल म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं टू नेशनल ऑडियंसेस, और वो भी कोक स्टूडियो के जरिए. क्रिश का साथ सुनते रहो हम.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Abhi Coke Studio ke antim padav tak hum pahunch chuke hain. Ek aur information main aapko batana chahunga about Amit Trivedi, jo bahut hi bade singer aur composer hain in Bollywood songs, lekin inka contribution Coke Studio mein bhi raha hai. Ek leading Indian composer hai, music producer hai. Inhone contribute kiya to Coke Studio's India's second season as a music producer. Aur inke compositions mein folk, rock, electronic music और इंडियन ट्रेडिशंस को कंबाइन किया है. इनका एक बहुत ही प्यारा फ्यूजन मिश्रण बोलो आप तो ये रखा गया था और लोगों ने बेहद पसंद किया. इन्होंने फिल्म साउंडट्रैक्स भी कंपोज किया जैसे देवडी, और इनके वर्क में एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक का भी झलक है जो कनेक्ट करता है विद मेनस्ट्रीम लिसनर्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कोक स्टूडियो रिलोडेड में. आज के लिए बस इतना ही, कुछ और गाने आपके लिए.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के दौरान कि आप फॉर्चून टेक्स्ट करें 5599 पर अपने नाम के साथ और आप ड्रो में शामिल होकर $1,000 कैश जीत पाएंगे। एक ही विनर को मिलेगा $1,000 कैश। तो अभी भी आपके पास समय है, यू नो काइंड रिमाइंडर कि अभी भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। कुछ ही देर तक और हम ये कॉम्पिटिशन ओपन रखेंगे आपके लिए। कीवर्ड फॉर्चून के साथ अपना नाम लिखे और 5599 पर भेज दे। याद रहे फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून विन यू of $5,000 worth of prizes this Diwali with hum aur terms and conditions rova.nz par aapko mil jayega। main Krish aapke saath de raha hu, sunte raho hum।

0: Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
8: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उससे.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
8: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
9: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 LOGIC G, विच इज 0800-564-24.
10: Fly direct from Auckland to Adelaide with Qantas from October 30. Soak up summer in the Barossa. Explore the boutique city of Adelaide. Shuck oysters on Kangaroo Island and discover why South Australia is the ultimate food and wine getaway. Just next door. Fly with Qantas and enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Schedule subject to change. T's and C's apply.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari good branch nahi
11: hai. Night Cafe.
13: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Diwali special on Hum. This Diwali experience the timeless story of the Ramayan with Hum. Hum brings to you Ramayan Ek Gatha. Ye specially produced series honge of 1 to 2 minute epic storytelling segments, jahan par memorable stories, characters or moments from the Ramayan aapke liye pesh kiya jayega. Presented across different times throughout the day, 8:20 AM pesh hoga, 1:30 PM aur 6:45 PM. These short lekin bahut hi taakatwar stories are designed to bring the spirit, values or timeless wisdom of the Ramayan into your everyday listening. Aur ye sunne ke liye bilkul taiyar hai, kyunki this Diwali celebrate the festival of lights with stories that have lived four generations. Ramayan Ek Gatha only on Hum aapke liye. Krish ka saath hai, sunte raho Hum, playing Bollywood's biggest hits.

आफ्टर रैप का नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है, और आपको बता दूं कि रोवा डाउनलोड करने में बहुत फायदे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत सारे शानदार प्राइजेस, कंपटीशन में भाग लेने का मौका, म्यूजिक प्लस स्टेशंस की अगर बात करें तो 80s जुकबॉक्स, हम रिवाइंड, फिजी भजन, चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, फिजी कीर्तन संग्रह जिसमें बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब यहाँ पर ला दिया गया है, राहत फतेह अली खान के सूफी और कवाली सॉन्ग्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, 80s के गाने अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, हम रिवाइंड में 60s और 70s के हिट सुनना चाहते हैं तो रोवा आज ही डाउनलोड करें, और इसमें काफी फायदे आपके लिए होता है और हमको अपने करीब रखने का मौका हमेशा रहता है। कृष्ण के साथ है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: A Kogan stick vac is just like a stick vac. Both stick vacs do very similar stick vac things, but with slightly different little logos, colors, and adapters. One's a Kogan MX-12 Pro cordless stick vac. The other stick vac has a price that sucks. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
5: Check.
6: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
5: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Ryan. Winston Peters is making no apology for New Zealand abstaining from a UN vote on pandemics. Labour says we've shown cowardice, but the Foreign Affairs Minister says it's essential our sovereign decision-making on health is protected. A stark warning for the Teaching Council as a review finds it could have done more to protect children. The independent findings show repeated failings allowed Timothy Fisher to stay in schools despite a known history of offending. And those in the South Island enjoying balmy mid-20 temperatures are warned they won't last. Snow and rain are set to return, potentially impacting travel from later this week. To sport, Dane Gagai will become the second oldest test debutant in New Zealand Rugby League history in the opening match of the World Cup against the Kangaroos in Sydney. Named in the centres, Gagai will be 35 years, 286 days on Thursday night. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And the New Zealand track cycling team is set for the World Championships starting in Shanghai tomorrow.
8: Sports News.

0: Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश बिल्कुल तैयार हूँ आपका साथ देने के लिए. अभी से लेकर 12 तक हमारा साथ रहेगा और जैसे मैंने कहा आपसे every hour top of the hour पर news and sports update होता है. तुरंत उसके बाद 30 minutes of non-stop music हम लेकर आते हैं जो कि बहुत ही highlight होता है हमारे इस program का, क्योंकि हर कोई 30 minutes के लिए आधे घंटे के लिए सुनते हैं अपने favorite नगमे और वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस, बगैर कोई इंटरफेरेंस के. तो सिर्फ गाने और हम और आप साथ निभाते हैं. तो ये दौर भी शुरू करते हैं आपके लिए 30 मिनट्स के लिए. आप एंजॉय करो योर फेवरेट सॉन्ग्स जो कि नॉन स्टॉप आपके लिए बजेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एंजॉय एवरीवन.

इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आज ही कॉल करें 0800 LOGIC G। और भी जानकारी के लिए हम rova.nz विजिट करें फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो याद रहे, टेक्स्ट करना है आपको लॉजिक अपने नाम के साथ 5599 पर। $1000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स जीतने का मौका है आपके पास।

0: चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
8: Nice.
9: And you talked me into creating this funny character.
8: Great.
9: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
8: Are you?
9: Yes.
8: Are you Bobby the Baker?
9: Yes.
8: What's that? What's that thing you do again?
9: Stop it.
8: You bring the mouth.
9: Stop it.
8: I'll bring the pie.
9: Stop it, please.
8: Okay.
9: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
8: So what's the problem?
9: My name's Bruce.
10: Advertise with
11: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
12: Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off 80 trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
13: Your favourite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki, All Together Auckland.

0: Coffee on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. नवरात्रि की सेलिब्रेशन सभी जगहों पर है, तो माँ की पूजा सभी जगहों पर हो रहा है. जय जयकार देवी माँ की हो रही है, तो ऐसे में काफी जगहों पर आप जाकर भाग भी ले सकते हैं. रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाव फ्रॉम संडे 11th अक्टूबर टू ट्यूजडे 20th अक्टूबर तक होगा फ्रॉम 6 PM. गरबा और डांडिया रास अर्ली आफ्टर कथा यहाँ पर होगा, डेली आफ्टर कथा होगा. श्री हनुमान मंदिर 14 बाय पार्क प्लेस बर्गडेल नॉट शो ओकलैंड फ्रॉम 6:15 PM. डीजे गरबा फ्रॉम 8:10 PM टू 9:30 PM. भजन जैमिंग और डीजे गरबा यहाँ पर होगा 18 अक्टूबर फ्रॉम 6:30 PM. इसके अलावा श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर फ्रॉम 11th अक्टूबर टू 20th अक्टूबर फ्रॉम 7 PM टू 9 PM एट 28A वॉम्सली रोड ओटाहू ओकलैंड में नवरात्रि मनाया जा रहा है, तो आप यहां पर भाग लेने के लिए जा सकते हैं. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम संडे 11th अक्टूबर टू ट्यूजडे 20th अक्टूबर फ्रॉम 6:30 PM एट द के 5/57 केवेंडिश ड्राइव मनुका ऑपोजिट वेयर हाउस. गरबा डांडिया और हुद्दतासा रास डेली यहाँ पर होगा कथा के बाद. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कुछ और सूचनाएं कुछ ही देर में.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: अब तो हमारा भी जाने का समय हो चुका है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। हमारी मुलाकात होती है कल रात को, आ जाएंगे 8 बजे, 8 to midnight, नाइट कैफे एक और हमारे साथ होने जा रहा है। अपना बहुत ही ख्याल रखिए, गुड नाइट एवरीवन।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
7: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
7: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
0: हाँ।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange. Getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट इन सेट
0: दिवाली बस आने

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: दिवाली आई खुशियाँ लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI। कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz। दैट्स commonwealthvault.go.nz।
4: आपका टैक्स रिटर्न अप टू डेट है? फाइल करने में एक्सपर्ट एडवाइस।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
4: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
7: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
0: The beat of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: Night Fly.

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
4: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
5: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 564424.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

श्री दुर्गा सप्तशती के इस तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं।

0: विक्षेप्य ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजो भी रवि बिंबम इमांबरात। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बेंध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बांह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में उठा लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठे।
1: दिष्ट्वा तदापच्छूलम् देवी झूलम् अमुञ्चत् तच्छूलम्।

युद्धयामानौ ततौस्तुतु तस्मान्नागान्महीगतौ युयुधाते अतिसंरब्धौ प्रहारैरति दारुणैः। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकृमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगा खमुत्पत्य निपत्य च मृगारेण कर प्रहारेण शिरस चाम्रस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्यः शिला

तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्गर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला, भिंदी पाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धर से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया।

बेग भ्रमण विक्षुण्णा मही तस्य वशीरियत लांगूले नाहतश्चाभधि प्लाव्यामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ के चोट से, किन्हीं को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धुत सिंह भिविन्नाश्च खंडम खंडम युयुर्धनः श्वासा निलास्तः शत्सो निपेतुर नभसो अचलः। इति क्रोध समाधमात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्। साक्षिभित्वा तस्य वै पाशं तंबवन्द महासुरं तत्याज माहिषं रूपं स्वपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर् दर्शयत्। तत् एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तम खड्ग चरमणा सार्धं तथा सो अनभून महागजः। करेण च महासिंहं तम च कर्षज गर्जच कर्षतस्तु करम देवी खड्गेन निरकृंतत। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गए। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तथा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानम उत्तमम पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुण लोचना ननर्द चासुरा सो अपि बल वीर मदोधता विषाणाभ्याम च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान साचतान प्रहितांस्तेन चूर्ण्यन्ति शरोत्करैः उवाच तम मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम्। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देव्योवाच गरज गरज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते यत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। देवी ने कहा अरे मूढ़ मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जले
मेरे हाथ से वहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि रोवाच हे मुक्ता समुत्पत्य सा अरूढ़ा तुम महासुरम पादेन आक्रम्य कंठे च शूले नयन मताड़यत तथा सोपि पदा आक्रान तस्तया निज मुखा तथा अर्ध निष्क्रांत एवासीद देवया वीरेण संवृता। ऋषि कहते हैं यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं, फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया।

आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।

सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथ में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषि रुवाच शक्राद्यः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्यः ताम तुष्टवुः प्रणति निमृशरोधरांसा वागभी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहः देव्या यया तत्मिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम्बिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतासं विदधातु शुभानि सानः यस्यः प्रभावम् अतुलम् भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नाहि वक्तुमलम् बलम् च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिम् करोतु या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मना कृद्ध्याम् हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम् कुल जनप्रभवस्य लज्जाम् ताम त्वाम् नतासं परिपालय देवी विश्वम्। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दृढ़ता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किम वर्णयाम तप रूप मचिंत में तत् किम चाति वीरम सुरक्षय कारि भूरि किम चाहवेशु चरितानि त्वाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देव गणादिकेषु हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरि हरादिभिर्व्यापार सर्वाश्राखिल मिदम् जगदंश भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्यः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिम् प्याति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्य से त्वमत्येव जनैः स्वधास या मुक्ति हेतुर विचिन्त महाव्रता त्वम् अभ्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तमस्त दोषैर् विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी।

वार्ता च सर्व जगतां परमार्थिहंत्री। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोष के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रय यानी तीनों वेद और भगवती यानी छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
3: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। Hi, मैं हूँ गुरु कंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
4: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
5: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking LTRL to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me. Slide.

0: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो।
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
2: PNC Supply.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल वेदर 14.4 डिग्रीज है, हाई ऑफ 22 एक्सपेक्टेड है। लेटर टुडे ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 15 डिग्रीज रहेगा। मोस्टली क्लाउडी वेदर विद आइसोलेटेड मॉर्निंग शावर्स एंड आफ्टरनून शावर्स प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। सनराइज इसी घंटे 6:38 AM पर होगा, सनसेट 7:37 PM पर।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
5: हेलो क्योरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल 14 मिनट हो रहे हैं 6:00 और वादे अनुसार द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं आज वेंसडे 14th ऑफ अक्टूबर की इस सुबह को। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको।
7: गुड मॉर्निंग एंड इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये मंगल प्रभात आप सभी को अनेकों बार शुभ और मुबारक हो।
5: तो आ गए हैं तो डेफिनेटली शुरुआत तो हो चुकी है सफर की ऑलरेडी। और आपको पता है कि ब्रेकफास्ट शो का जो पहला घंटा होता है जहां हम आपके लिए ब्रेकफास्ट कैचअप लेकर आते हैं। कैचअप मतलब चीज़ों के साथ, खबरों के साथ, क्या कुछ हुआ है जो शायद आप नहीं जानते हैं उससे आपका वाकिफ कराना। ये सारी चीज़ें तो रहती ही है, पर उसके अलावा वी ट्राई एंड कीप द एंटरटेनमेंट पार्ट ऑल्सो अलाइव। और आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव सवाल वगैरह जो है ये भी हम लेकर आते रहते हैं।
7: तो एक बेहतर शुरुआत अपने दिन को देने की हम कोशिश जो है ये करते हैं, और उस कोशिश में हर सुबह आपके साथ हम भी शामिल हो जाते हैं और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, इसी कामना के साथ कि आप साथ देंगे ताकि हम आपको इन्फॉर्म्ड एंटरटेन्ड रख सकें आपके सफर के दौरान आपके दिन की शुरुआत के साथ।
5: बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत तो हो चुकी है और अब उम्मीद करते हैं कि बाकी का सफर आप जो हमारे साथ बिताएंगे वो आप इंजॉय भी करेंगे और याद भी रखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ साथ अब शुरू कर रहे हैं आज के सफर को बॉलीवुड मोस्ट वांटेड के इस गाने के साथ। रिमेम्बर थोड़ी देर बाद आपके लिए ग्लोबल हेडलाइंस लेकर आएंगे, यानी खबरों में क्या कुछ है आपको हम जरूर अपडेटेड रखेंगे।
3: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड,
8: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
9: मैं लाऊं अपना ए गेम।
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Global Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, सऊदी अरेबिया ने यमन के हाउती कंट्रोल्ड राजधानी सना में एक ऑयल फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक किया है। सऊदी लेड कोलिशन द्वारा सिविलियंस को यमनी पेट्रोलियम कंपनी साइट और आसपास के इलाके से निकलने के लिए इशूड इवैक्यूएशन ऑर्डर के कुछ ही घंटे बाद यह हमला हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद ऑयल फैसिलिटी में लगे आग और काले धुएं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में लगभग 15 से 20 लोगों से भरी एक नाव पलटने से कम 10 लोगों के डूबने की आशंका है, जिनमें से 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। ये हादसा तब हुआ जब ये लोग, जिनमें ज्यादातर बच्चे और युवा थे, एक दावत में शामिल होने जा रहे थे। फिजी के जस्टिस मिनिस्टर और स्थानापन्न अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरांगा ने फेसबुक प्रोफाइल पर एक्सप्लिसिट वीडियो सर्फेस होने के बाद अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। इस इस्तीफे को प्राइम मिनिस्टर सिथिवेनी रंबुका ने स्वीकार भी कर लिया है। रंबुका ने बताया कि उनकी जगह फिलहाल किसी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा और सरकारी लीगल एडवाइस सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस से आएगा। रंबुका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीमेट वीडियो कंट्रोवर्सी का ये दूसरा मामला है, जबकि गवर्नमेंट दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रेफरेंडम और अपकमिंग जनरल इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। यूएफए चैंपियंस लीग के मैच डे टू के खेल आज सुबह शुरू हो चुके हैं। अभी 2 मैचेस हो रहे हैं। SCP की जीत लैंस के खिलाफ 1-0 से हो रही है, जबकि सभा और स्लावा प्राबिया प्रथम हिस्से में निलोल से बराबर है। सुबह 8 बजे से जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें गलातासराय बार्सिलोना से खेलेगा, आरपी लेप्सिक वर्सेस PSV, आर्सेनल वर्सेस LOSC, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, विलरियल वर्सेस नापोली, वाइकिंग वर्सेस बायर्न, इंटर मिलान वर्सेस क्लब ब्रुगे, LASK वर्सेस लिवरपूल का मैच जो है ये कल खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।

0: दर्शन रवल की आवाज में आज का चार बस्टर आपके लिए हम शामिल कर रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. उम्मीद है दैट यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आज सुबह सुबह जो आपके नाम हमने शामिल किया. वैसे चलिए देख लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड से भी क्या है जो हमारे हाथ लग रहा है. फिलहाल आज अगर देखा जाए तो कई तरह की खबरें जो है ये सामने आ रही है. और सबसे पहले तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सिद्धार्थ आनंद जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी अगली फिल्म की, जिसे ये लॉन्च करने वाले हैं SRK के बर्थडे पर. और इसका स्पेशल कनेक्शन इसलिए है, आई मीन नॉट द मूवी इज बीइंग लॉन्च बट मूवी का जो टीजर है ये रिलीज होने वाला है. और ये स्पेशल कनेक्शन है SRK से क्योंकि ये उनकी ही फिल्म है किंग, उसका टीजर शाहरुख खान के जन्मदिन पर अगले महीने रिलीज किया जाएगा.
1: 61st बर्थडे ही ये होगा शाहरुख खान का ना.
0: I don't know यार कितने साल के हो जाएंगे. I know 60 plus के तो है ही.
1: I think it's his 61st birthday.
0: Oh okay, this is the first birthday after 60 years. I mean 61st birthday, that's what I meant. मुझे लगा था वो 63 के है. Oh this will be his 61st birthday. Yeah, interesting.
1: लेकिन देख के उनको नहीं लगता.
0: नहीं लगता यार, true.
1: He looks very young for his age and very fit.
0: Well, he has worked hard. That's why वो उस तरह से दिखते हैं ना. और फिर जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो वहाँ पर whether we like it or we don't, but looks do matter. वो एक चीज़ हो जाती है ना. और दूसरी ओर कहा गया है कि गन मास्टर G9 इसके सेट पर एक स्टंट करते करते गाड़ी फ्लिप होने का एक स्टंट था, जिसके तहत इमरान हाशमी बाल बाल बचे. बिकॉज इफ द स्टंट वुड हैव गॉन रॉन्ग तो उनको काफ़ी सीरियस इंजरी जो है ये हो सकती थी, ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं.
1: तो बॉलीवुड में और भी क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारियां बारी बारी से हम पर आज हम आपको देते रहेंगे.
0: 25 मिनट हो रहे हैं 6:00, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस. 14th of October क्यों इतना स्पेशल है, और आज का हमारा पहला सवाल भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Travel time is me time.
6: Could get some fine spells, mostly cloudy with a high of 22. Southwest motorway northbound, we have a crash just after Puanui, blocking the left lane. Pretty heavy in that area. Coming in on the southern, pretty good. 24 minutes in from Monaco, 44 from Drury to town. Slow Takanini on and off to Papatoetoe. Northwestern 19 in from Massey, bit slow joining at Te Aratu. And northern 18 from Constellation, slow there to Sunny Nook and at Waito Valley.
5: Read, scroll, game, relax. Travel time is me time on 80 buses, trains and ferries.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
9: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
13: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a 2-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
14: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
15: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
2: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
16: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू
4: you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: तो हमने कहा था कि आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं ये हम जरूर चेकआउट करेंगे. सबसे पहले तो आज अगर देखा जाए गुड मॉर्निंग मैसेज मिस्टर मारा माठा की ओर से आया था. सभी को इन्होंने राम राम कहा है, जय माता दी कहा है. सो थैंक यू सो मच मिस्टर मारा माठा आपके मैसेज के लिए. विनीता जी आपका भी गुड मॉर्निंग मैसेज हमें मिला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बॉबी मान जी 4 बजे से पहले ही इनका गुड मॉर्निंग मैसेज जो है यह था, आपको भी ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. और उसके अलावा परमा महाराज जी हैं, आपको भी इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं.
0: सो थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमें याद करने के लिए, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई यू नो इनाम जीतने के चांस के लिए भी आपने हमारे पास अपने मैसेजेस भेजे सिर्फ हमें गुड मॉर्निंग विश करने के लिए. सो वी ट्रूली अप्रिशिएट दिस. एंड ऑन द अदर हैंड चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं 14th of October से रिलेटेड जानकारियां कि आज ये इतना स्पेशल दिन क्यों है, क्या कुछ आज मार्क किया जा रहा है, जिससे जुड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचानी भी जरूरी है और साथ ही साथ इसे आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं.
1: टुडे 14th of October कुछ कुछ कंट्रीज में मार्क किया जाता है बी बोल्ड एंड फ्री. बोल्ड
0: बी बोल्ड एंड
1: बोल्ड नहीं बी बोल्ड एंड फ्री.
0: ओके.
1: इसके अलावा आज इंटरनेशनल टॉप स्पिनिंग डे है. आपने कभी टॉप
0: स्पिन ट्राई किया है? पर मेरे से होता नहीं है वो.
1: ओके. और साथ ही में ई वेस्ट डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है. पेट ओबेसिटी अवेयरनेस डे ये आज कई लोग मार्क करते हैं. टुडे इज टेक योर पेरेंट्स टू लंच डे.
0: नाइस.
1: या फिर ब्रिंग योर टेडी बेयर टू वॉक इन स्कूल डे.
0: अच्छा.
1: कुछ कुछ कंट्रीज में इमरजेंसी नर्सेस डे मार्क किया जाता है और डिजर्ट डे भी आज के दिन मार्क किया जाता है. और इसके अलावा बर्थडे की ओर अगर देखें तो आज भारत के बहुत ही मशहूर फॉर्मर क्रिकेटर गौतम गंभीर, इनका जन्म आज के दिन हुआ था. और साथ में एक्ट्रेस जतिन नाविया नायर, उनका जन्म आज के दिन हुआ था. परमीत सेठी ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसके साथ न्यूजीलैंड में अगर देखें तो बहुत ही मशहूर रग्बी खिलाड़ी थे अपने समय के कार्लोस स्पेंसा, इनका इनका नाम सुना आपने? नहीं सुना? ओके इट्स ओके. ये आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इसके साथ आज आदि सवेरा ये भी आज
0: ओके. सो इंटरेस्टिंग है. और अगर इनके साथ आप भी अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप भी हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कीजिए ताकि हम समय रहते आपको भी विश कर सके. और आज का जो स्पेशल डे है आपका, इस दिन आपको और भी स्पेशल जो है ये फील करा सके. तो याद रहे 7 5 5 9 9 दैट्स द नंबर जिस पर आपको अपने मैसेजेस 7 AM से पहले हमारे पास भेज देने हैं. एंड इट विल बी ईजियर फॉर अस ताकि जब मैसेज रिसीव हो जाए समय रहते हम आपको ज़रूर आज याद करते हुए हैप्पी बर्थडे जो है ये विश कर सके. फिलहाल चलिए आज का पहला सवाल बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपको पहचाननी है. एक ही क्लू देंगे आपको और आपको इसका जवाब जो है कि हमारे पास भेजना है. बताना है आपको कि वो कौन सी बॉलीवुड फिल्म है जिसका टाइटल एक बहुत ही पॉपुलर शहर है. एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म, एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जिसका जो नाम है वो एक बहुत ही पॉपुलर शहर है, सिटी का नाम है. राइट. सो लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट. अगर आपके पास जवाब है तो जल्दी से हमारे पास टेक्स्ट कीजिए. जवाब देने के लिए BF लिखना है, फिर अपना आंसर भेजना है 5599 पर अपने नाम के साथ.
10: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल

0: आज का पहला स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपके लिए हम शामिल कर रहे थे एंड दैट टू अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग अंतरा मित्रा और साथ में अरिजीत सिंह की आवाज में. फिल्म का नाम रहा आज द स्काई इज पिंक. 2019 में ये फिल्म आई थी. आई लव्ड दिस मूवी. मैंने एक से ज़्यादा बार इस फिल्म को देखा हुआ है और अच्छी लगी मुझे और थोड़ी सैड भी लगी कंसिडरिंग कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है. तो आपने अगर नहीं देखी है, मौका मिले तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. रिमेंबर द स्काई इज पिंक इज द नेम ऑफ द मूवी जिसका आज गाना आपको हम सुना रहे थे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में.
1: अभी 23 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे. डोंट फॉरगेट आज कौन सा दिन हो चुका है. आज वेंसडे है. आज वेंसडे है और अगले मंडे को ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा बहुत ही शानदार ड्रो जो है ये होने जा रहा है जहां पर आप में से किसी एक को एक डबल पास मिलेगा टू वॉच द हिस्टोरिकल फुटबॉल मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया. ये दोनों टीमें पहली बार ऑकलैंड में एक दूसरे का सामना करने जा रही हैं और हम पर आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप जाएं बिल्कुल फ्री में और इस मैच को देखें क्योंकि डबल पास हम आपको देंगे. आप अकेले नहीं जाएं, किसी के साथ जो क्या बोलते हैं अपने व्यूज जो है मैच के दौरान ये भी शेयर करना हो जरूरी होता है ना.
0: हाँ, तो आप लेकर जा सकते हैं किसी को और चॉइस भी आपकी, जिसको चाहे उसको लेकर जाए, जो आपके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से पेश है उसको लेकर जाए.
1: तो आपको इसके लिए थोड़ा सा तो आपको कुछ करना पड़ेगा. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, फीचर्ड फोल्डर में सबसे ऊपर आपको एक पोस्ट मिलेगा इस मैच से रिलेटेड. उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको अपने किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर को टैग करना है और प्रिडिक्ट करना है कि इंडिया और न्यूजीलैंड

0: वर्ल्ड कप में खेल रहा है एंड इंडिया जो है एशिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स जो है ये भी मानी जाती है साउथ ईस्ट एशिया में पर्टिकुलरली। तो अब मौका है आपके पास, ऐसा करें अभी ही जाएं और स्कोर प्रिडिक्ट कर दें और किसी को टैग कर दें।
1: बिल्कुल, सुनीता पटेल जी ने इनफैक्ट एक अपनी एंट्री जो है ये कराई है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट वैलिड बिकॉज एक तो इन्होंने टैग नहीं किया किसी को, खुद का नाम
0: लिखा, नाम
1: का नाम लिखा है, थिंक ना सुनीता पटेल ही लिखा है और फिर स्कोर भी नहीं लिखा है। तो आप भी जाकर विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज। वट यू नीड टू डू इज आपको हम 104.2 FM इस फेसबुक पेज पर जाना है, ब्लू टिक के साथ आपको मिलेगी ये पेज। कॉमेंट सेक्शन में अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ सुनीता पटेल जी एंट्री अगर हम इनवैलिड कर निकाल दें इसमें से, तो सिर्फ 6 लोगों की एंट्री आई है एंड इफ 6 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग जीते के चांसेस इनके ज्यादा हो जाते हैं नो डाउट, बट आपके तो है ही नहीं ना।
0: या एग्जैक्टली, ऑल यू गॉट टू डू इज, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ढूंढना है, कुछ रिसर्च करना है, बस किसी को टैग कर दें और प्रिडिक्ट करें कि इसको क्या होगा। एंड क्या पता आप गो मीडिया स्टेडियम पर हो व्हेन दिस मैच इज प्लेड ऑन 12th ऑफ नवंबर टू विटनेस कि आपका प्रिडिक्शन सही होता है या नहीं, जैसे शेरन कुमार ने किया है। अनिश ने तो कहा है कि All Whites की जीत 12 nil से होगी।
1: Oh, okay. We'll see how it goes. But yes, आप भी अपने जो entries है register जरूर कराइए और आप अपने अपने entries register कराने के लिए हमारा Facebook page visit कीजिए, फिर उसके बाद comment section में किसी को tag कीजिए जिनको अपने साथ आप ले जाना पसंद करेंगे if you win the passes and don't forget to predict a score as well of the particular match.
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
4: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
5: Rusbe, tickets book ho gaye.
6: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum. Hum. Accurate traffic.
10: Freedom Spring Sale on now.
11: A high of 22, mostly cloudy today. A crash on the southwestern northbound, blocking the left lane after Puanui. It's quite heavy up to there from the southern. Southern motorway, 30 minutes, Manukau to town. Slow Papakura on and off to Papatoetoe and again at Penrose. Northwestern, 25 minutes in from Massey. Slow at Te Aritu. Patchy from St. Luke's, heavy at Grey Lynn. Northern, 20 in from Constellation. Slow patches from Greville.
10: Save up to 50% off selected sofas and furniture. Hurry in store today, only at Freedom.
4: अब हाइब्रिड में स्विच करने का सही

0: into a hybrid SUV starting from just 29,990 plus on-road costs. Hurry! Offer ends October 31st. Visit Winger Motors, West Auckland, Green Lane, ya Poke Kohi or winger.co.nz.
1: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
2: Oh man, potholes are the worst.
1: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
2: Huh, how does it work?
1: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
2: Really?
1: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
3: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका लोटस मैनिकाओ माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट बस एंट्री फॉर्म भरो रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो फॉर्च्यून दिवाली बी इन टू विन एंड 15th November टीज एंड सीज अप्लाई
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: इधर 15 मिनट बाकी है इस समय हमारी स्टूडियोज में वैसे 7 बजने में और साथ ही साथ हमने आज जो सवाल पूछा है उसके आंसर्स जो है ये हमारे पास आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वंस लेकिन अभी तक किसी ने वो जवाब नहीं दिया है दैट आई बिन लुकिंग फॉर मतलब जो हमारी आज की मूवी ऑफ द डे है.
2: अच्छा
1: तो कोशिश तो की गई है. रोनन ने कहा है बॉम्बे, सनी ने कहा है दिल्ली 6, नीलेश ने कहा है बॉम्बे और प्रशांत ने कहा है बॉम्बे टू गोवा. Now, I'm not saying these are incorrect in consideration जो सवाल हमने पूछा इसके हिसाब से कि हमने पूछा ना कि ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म है जो एक शहर का नाम है.
2: Okay.
1: तो ये सारे तो शहर ही है, दिल्ली है, बॉम्बे है, गोवा है, तो ये कहीं ना कहीं सही है बट इट्स नॉट दी बॉलीवुड मूवी ऑफ टुडे. आज का जो ये दिन है जो हमने आज जवाब आपके लिए रखा है इस सवाल के लिए वो जवाब नहीं है.
2: सो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, बताइए कौन सी फिल्म इन्होंने सोच रखी है. मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म सोची है, मैं भी सोच रहा हूँ. वेलिंगटन से प्रशांत का मैसेज आया था, थैंक यू सो मच प्रशांत आपके मैसेज के लिए. तो 7 बजे न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद आपको बताएंगे कि सही जवाब जो है ये क्या है.
1: बिल्कुल, लेकिन तब तक के लिए आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. हमारे पास आप टेक्स्ट कीजिए, सबसे पहले लिखिए BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप सेंड कर दीजिए. देखते हैं कि क्या आज कोई भी हमारी मूवी ऑफ द डे पहचान पाता है या नहीं, बिकॉज सो फार अभी तक किसी ने भी हमें सही जवाब जो है ये नहीं दिया है.
2: दूसरी तरफ अंकित ने जाकर प्रिडिक्ट किया है स्कोर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच. इनका कहना है टोटल ऑफ 10 गोल्स जो है ये स्कोर किए जाएंगे.
1: अनिश से 2 गोल्स कम बताए ना, अनिश ने 12 बोले.
2: हाँ प्रशांत नवनीत इन्होंने कहा है 3-1 से ऑल व्हाइट्स की जीत होगी.
1: ओके
2: दिवनेश इन्होंने कहा है 2-0 से ऑल व्हाइट्स की जीत होगी.
1: ओके लेट्स सी कि इस खेल का अंजाम क्या होता है. पर याद रहे अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू गो इन टू द ड्रॉ एंड विन ए डबल पास टू विटनेस दिस पर्टिकुलर मैच. अगर आप ये जीतना चाहते हैं बस हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM विजिट कीजिए और वहाँ पर फीचर्ड फोल्डर में जो पोस्ट आपको मिले उस पोस्ट को आप अच्छे से देखिए, समझिए और फिर कमेंट सेक्शन में किसी को टैग कीजिए जिनके साथ आप ये गेम ये मैच देखना पसंद करेंगे जाकर. और साथ में स्कोर प्रिडिक्ट करना है इस मैच का. आप ऐसा नहीं कि आपका सही या गलत होना सही होना ज़रूरी है और गलत हो गया तो आप नहीं जीत सकते, ऐसी कोई बात नहीं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू सेंड इन योर प्रिडिक्शन, दैट्स इट. राइट, और दूसरी ओर आप मूवी ऑफ द डे के लिए भी अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं मैं आज की मूवी ऑफ द डे कौन सी है. हमने कहा एक ऐसी हिंदी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम एक शहर का नाम, एक बहुत ही पॉपुलर शहर है ये. और अपने आंसर्स आप 5599 पर हमारे पास सेंड कर सकते हैं. अगले घंटे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का गाना, टॉप ऑफ द आवर ये गाना आपको हम सुनाएंगे. और आई फील कि ये गाना सुनकर मैंने मज़ा किया, मुझे पसंद आया, आई एन्जॉयड इट. आई मीन आई वॉज नॉट बींग वेरी क्रिटिकल ऑफ इट बट आई एन्जॉयड द सॉन्ग. देखना ये है कि क्या आप भी ये गाना एन्जॉय करते हैं या नहीं. अगर सुनना है आपको ये कौन सा गाना है तो आपको हमारे साथ ही बने रहना होगा क्योंकि अगले घंटे ये हम आपको ज़रूर सुनाएंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज के मौसम के लिए बताया जा रहा है बादल छाए रहेंगे सुबह के समय और फिर शाम के समय बारिश होने की संभावना है. सनसेट 7:37 PM पर होगा. टेम्परेचर अब 15.1 डिग्रीज तक पहुंच चुका है. हाई ऑफ 22 एक्सपेक्टेड है और ओवरनाइट 15 डिग्रीज रहेगा आज.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
1: पूरी की पूरी गैंग के लोगों कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
2: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 3 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 7:00। दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 FM या रोवर ऐप पर। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का खास स्वागत आज के सफर में। मॉर्निंग मैडनेस अब आपके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं।
3: इस घंटे तमाम चीजों के बारे में बातें होंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद योर स्टार्स फॉर द डे कि आज का आपका दिन जो है ये कैसा गुजरेगा, तो हमारे साथ आपको शामिल रहना है। 7:30 न्यूज हेडलाइंस भी आपके लिए हम लेकर आएंगे।
2: पर फिलहाल पिछले घंटे जो सवाल हमने पूछा था, गुंजन ने मिर्जापुर कहा, सईद ने कहा नमस्ते लंदन, गुंजन ने एक बार फिर कोशिश की, सनी ने बदलापुर कहा, उमेश ने कहा इवनिंग इन पेरिस और रॉन ने कहा है राजस्थान। राजस्थान कोई फिल्म है?
3: मैंने तो नहीं देखी, शायद हो।
2: मुझे भी नहीं पता यार कि अगर ऐसे यू नो ऐसे नाम के ऐसे नाम का कोई एक शहर हो, आई मीन मूवी हो, नॉट शहर, शहर तो है वो पता है, मूवी हो, आई हैव नो आइडिया। बट ऑन द अदर हैंड एज आई सेड कि आज कोशिश तो की गई, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी मूवी ऑफ द डे जो मेरे पास था वो गेस नहीं किया। नो वन कुड गेट इट राइट।
3: क्या सोच रखा आपने?
2: न्यूयॉर्क।
3: अच्छा,
2: एक शहर भी है न्यूयॉर्क USA में, और इस नाम से एक फिल्म भी है जिसमें काम किया था जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश एंड कैटरीना कैफ ने, तो इरफान खान भी थे बाय द वे इस मूवी में, और न्यूयॉर्क वाज द करेक्ट आंसर जो किसी ने भी नहीं भेजा, अनफॉर्चुनेटली नो वन गॉट इट राइट। बट नेवरदलेस चलिए, हमने ये भी कहा था कि आपको एक स्पेशल गाना सुनाएंगे हम आज। मैं काफ़ी खुश हूँ इस गाने को लेकर, आई मीन आई एम जस्ट हैविंग फन, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, इट्स जस्ट जोक्स एंड फन, दैट्स इट। और मैं ये भी बता दूँ कि जिस शख्स ने ये गाना गाया है उन्होंने एक वीडियो जो ये बनाया, तो ऐसे बैठकर गाना गा रहे हैं और पीछे उनकी पत्नी है जो वीडियो में दिख रही है जो गाना एंजॉय कर रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं दिस वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग व्हिच आई केम अक्रॉस ऑन इंस्टाग्राम।
4: मैं तो भोजन पकाने वाली मांगता था, आपने तो मस्तक पकाने वाली भेज दी, मीठी मीठी गजलें सुनाने वाली मांगता था, तीखे तीखे भाषण सुनाने वाली भेज दी, अखियों में जन्नत दिखाने वाली मांगता था, आपने तो अखियां दिखाने वाली भेज दी, अखियों में जन्नत दिखाने वाली मांगता था, आपने तो अखियां दिखाने वाली भेज दी, सुबह शाम फूल के फुलाने वाली मांगता था, सुबह शाम मुखड़ा फुलाने वाली भेज दी।
2: कैसा लगा ये गाना आपको?
3: नाइस नाइस, वेरी नाइस।
2: आई रियली एंजॉयड द ट्यून, जिस ट्यून में वो गा रहे थे, आई मीन द वर्ड्स इटसेल्फ आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट मुझे ना ये ट्यून भी बहुत अच्छा लगा, जिस अंदाज से वो गा रहे थे वो भी बड़ा पसंद आया। आई हैव नो आइडिया ये शख्स कौन है, बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑन समवन एल्सस पेज, ओरिजिनल शख्स का नाम वगैरह पता करने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली नहीं पता चला। बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ये है जहाँ पर मुझे ना ऐसे ही कमाल के गाने मिलते हैं, एंड आई कम अक्रॉस सम रियल इंटरेस्टिंग टैलेंट, रॉ टैलेंट जो होता है कि कोई है जिसने ये बोल भी लिखे और फिर इतना कमाल का कैची ट्यून जो है ये भी उस बोल पर इन्होंने बनाया गाने को।
3: इट साउंड्स लाइक इट कि ये किसी कवि सम्मेलन का पार्ट है।
2: नहीं, ये ऐसे बैठे हैं अपने घर पर, वीडियो में दिख रहा है वो घर पर बैठे हैं, पीछे उनकी पत्नी बैठी है और वो शायद ये गाना किसी दोस्त को सुना रहे, लेकिन जब वीडियो बनाया उन्होंने तो अपनी पत्नी को दिखाकर, तो वो गा रहे हैं और पत्नी एंजॉय कर रही है, लाइक शी स्माइलिंग एट द बैक।
3: ओके,
2: ऐसे और भी कमाल के गाने मेरे हाथ लगते रहते हैं, और अगर कुछ और ऐसा नया आया तो आपको हम जरूर सुनाएंगे। एक बार याद है मैंने आपको वो गाना सुनाया था?
3: ना मुझे नहीं याद।
2: अरे बताने तो दो तब, तो एक चाय वाला गाना सुनाया था आपको जो कव्वाली जैसा साउंड करता था, और उन्होंने गाया था कि चाय जो एक ऐसे बनती है वो पूरा प्रोसेस बताया, और फिर इसमें ये भी बोला था कि आओ मैं तुमको चाय पिलाता हूँ। That was the hook of the गाना। But anyways, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जैसे कि कुछ ऐसी हॉबीज जो आपको अपनी लाइफ में बरकरार रखनी चाहिए या बिल्ड करनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सके और उसे एक यू नो अच्छा चेंज जो है ये दे सके, इफ देयर इज नथिंग गुड और एक्साइटिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। तो व्हाट आर दीज हॉबीज, इस पर भी बातें करेंगे बस थोड़ी देर में।

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा गया है कि आज एक्टिव आप रहेंगे अपने काम में, इससे काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। एनर्जेटिक काफ़ी रहेंगे, लेकिन अपने फिटनेस पर भी ध्यान दें, ये बहुत ही ज़रूरी है।
3: उसके बाद वृष यानि टॉरस, आपके लिए कहा गया है कि जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां पर आज आपका पेशेंस काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा, इसीलिए संयम से काम लें। और दूसरी ओर आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि आँखों में किसी तरह की तकलीफ जो है ये आपको आज हो सकती है। आप किसी से अगर बातचीत कर रहे हैं तो अपने टोन का भी ख्याल रखें, बिकॉज द वे यू स्पीक, अगर उस पर कंट्रोल नहीं रहा तो इससे आपका काफी नुकसान आज हो सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज आपको संभालनी पड़ सकती है। बिजनेस प्लान्स जो है इन्हें आप और आगे बढ़ाएंगे। पति पत्नी के बीच, कपल्स के बीच आपसी समझ जो है ये आज और बढ़ेगी।
3: और इसके बाद कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, इसकी वजह से सफलताएं आप हासिल करेंगे, परिवार में शुभ काम होने के चांसेस हैं, तो यू विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मतलब ऑल इन ऑल आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा।
2: सिंह यानी लियो, अपने करियर में आज अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका आपको मिलेगा। बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट जो है, नए क्लाइंट्स या कस्टमर्स से कॉन्टैक्ट आप बनाएंगे, और आराम पर भी थोड़ा ध्यान दें। यू बीन वेरी मच फोकस्ड ऑन वर्क, काम काम काम काम काम, इसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ सकता है।
3: और उसके बाद आज वैसे कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है जरूरी फैसले, जरूरी काम कर रहे हैं आज तो एकदम केयरफुल हो जाएं आप, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, अदरवाइज इसका नुकसान आपको भविष्य में चलकर भरना पड़ेगा। और परिवार में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ जरूरी होने वाला है जिससे आपकी पूरी फैमिली के लिए मेजर चेंजेस जो है ये इन नियर फ्यूचर बताए जा रहे हैं।
2: तुला यानी लिब्रा, आज ऑफिस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, और आज पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि तालमेल आप दोनों का अच्छा हो या पार्टनर्स के साथ आपका अच्छा हो, तभी अच्छा फायदा हो सकता है, और आज फाइनेंशियली दिन अच्छा होगा।
3: वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आज कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, स्पेशली इन द वे यू डील विद थिंग्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं है या किसी को कन्फर्ट नहीं करना चाहते तो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं सिचुएशन को, और हो सकता है कि ये आपका एक नेचर बनता जा रहा है हर मामले में, बिकॉज इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस देयर बी सम रियल इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में जिसे आप बस ऐसे अवॉइड करते जाएंगे, एंड वो पाइल अप होते होते होते एक टाइम पर आपके लिए ही मुसीबत का कारण बनेगी, इसलिए पे अटेंशन एंड सही तरीके से हर सिचुएशन के साथ आप डील करें। और आपके लिए ये भी कहा गया है कि अचानक से आर्थिक लाभ यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट आपके हाथ लगेगा, एंड इट विल हेल्प यू ग्रो फाइनेंशियली क्वाइट अ लॉट।
2: धन यानी सजिटेरियस, रुके हुए काम आपके आगे बढ़ेंगे, बच्चों की ओर से कोई पॉजिटिव न्यूज आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आपको काफी एक्साइट करेगा, हेल्थ भी आज बढ़िया ही होगा।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, काम का दबाव अधिक रह सकता है जिसकी वजह से थकावट भी आप महसूस करेंगे, और साथ में आपके लिए बताया गया है कि परिवार के सहयोग से आपको मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का आज हल मिलेगा, यू विल बी रिलीव्ड विद दैट सॉल्यूशन टुडे।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज समझदारी से, इंटेलिजेंस से आप मुश्किल काम भी पूरे कर सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका आपको मिलेगा, और बिजनेस में कुछ नए इम्पोर्टेंट डिस्कशंस जो है ये भी आज शुरू हो सकते हैं।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपकी बातों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव जो है लोगों पर आज पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके हाथ अपॉर्चुनिटीज भी लगेंगे और भविष्य के लिए अच्छा फायदा भी हाथ लगेगा। परिवार में शुभ काम, मांगलिक काम होने के चांसेस बन रहे हैं और इसमें भाग लेते हुए आपको बहुत चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। सो ये थे आज की आपकी राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ।
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड. रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मा'स फूड, PFSL, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स.
0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
9: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
10: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little Kiwi Saver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
11: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर. अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स. स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू. और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz. सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ. कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
1: Celebrity Alarm. Hit it.
2: 21 मिनट हुए हैं 7:00 समय के साथ चलें तो फायदे में आप रहेंगे. वैसे थोड़ी देर बाद न्यूज़ हेडलाइंस भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. जो मैचेस खेले जा रहे हैं चैंपियंस लीग के, उन पर भी अपडेट्स जो हैं ये आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आने वाले हैं. और आज अगले घंटे व्हाट्स योर टेक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा.
3: लेकिन उससे पहले चलिए, अब बारी है आज की सेलिब्रिटी अलार्म की. उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं ये आवाज़ पहचानने के लिए. तो ध्यान से सुनिए और फिर अपने आंसर्स हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599.
14: माय नेम इज क्राइम मास्टर गोगो एंड आई प्लक द आईबॉल्स ऑफ पीपल्स आईज एंड आई प्ले मार्बल्स विद देम.
3: तो ये आवाज किसकी है आपको बताना है.
2: आई हैव नो आईडिया.
3: यू हैव नो आईडिया?
2: ना, ऑनेस्टली.
3: अच्छा, ओके. आई थॉट कि इजी होगा यार ये आवाज
2: पहचानना. शायद इजी होगा, मैंने इनको शायद देखा नहीं है क्या.
3: Okay.
2: I don't know.
3: Okay, let's see.
2: Because she doesn't know me.
3: एक बार फिर से आपको आवाज सुनाते हैं. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ क्लूज दूंगी, ठीक है? इसके बाद तो pay attention to this voice.
14: So my name is Crime Master Gogo and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them.
3: Right. तो आप मुझे ये बताइए इन्होंने अभी क्या बोला.
2: Marbles.
3: अरे सिर्फ एक ही वर्ड सुनाई दिया आपको, बाकी कुछ सुनाई नहीं दिया.
2: अरे सुनाई दिया पूरा लाइन में, मैं आवाज पे फोकस.
3: पहला लाइन बताओ क्या बोला.
2: जो भी बोला अच्छा बोला.
3: आपको कुछ मुझे, समझ में नहीं आया?
2: मुझे,
3: मतलब
2: मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती.
3: हाँ, तो ये जो शख्स है ये दरअसल इंडियन है.
2: Oh.
3: But accent इन्होंने ब्रिटिश एक्सेंट बोला था एक शो के दौरान, बिकॉज अपेरेंटली ये शख्स जो है बहुत टैलेंटेड है व्हेन इट कम्स टू सेइंग सर्टेन एक्सेंट्स. तो ब्रिटिश एक्सेंट इनका एक अपर हैंड है, उस एक्सेंट में ये बात कर सकती है. दैट्स वाई जब इनको बोला गया कि जहाँ ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर सुनाओ, तो ये डायलॉग दिया गया कि मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो, मैं लोगों की आंखें निकालकर उनसे गोटियां खेलता हूँ.
2: लेकिन ये देखा है,
3: लेकिन आपको ये इंग्लिश में बोलना है और ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना है. तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया और फिर उसे ब्रिटिश एक्सेंट में बोला.
2: मैंने ये देखा हुआ है.
3: हाँ, देखा हुआ है, फिर भी याद नहीं कि ये कौन है. लेकिन ये कौन है, अगर आपने इनकी आवाज पहचान ली है, हमारे पास अपना आंसर आप भेजिए 5599 पर. किसी ने एकता कपूर लिखकर भेजा नहीं, एकता कपूर नहीं है.
2: क्या ये क्राइम मास्टर गोगो की फैमिली है?
3: हाँ, बहुत क्लोजली रिलेटेड है क्राइम मास्टर गोगो से.
2: सी, सी, सी.
3: राइट, तो मैं एक आखिरी बार आपका आवाज सुना रही हूँ कि केस के बाद यू वोंट रिपीट दिस वॉइस बट यू हैव टू गेस कि किसकी आवाज है. इफ यू कैन 5599 पर आपको टेक्स्ट करना होगा.
14: So my name is Crime Master Gogo and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them.
3: Right, जल्दी जल्दी अपने answers text करें. थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या किसी ने सही सही पहचाना है या नहीं.
12: Bollywood's most wanted.
6: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना A game.
12: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहली खबर आज की जो आई है उसमें ये कहा गया है कि न्यूजीलैंड में लोग अनेक मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और इनमें शामिल है गार्डनिंग करते वक्त चोट लगना। आईसीसी के डाटा के मुताबिक न्यूजीलैंड में हर दिन एवरेज 200 से ज्यादा लोग गार्डनिंग के दौरान घायल होते हैं, जिससे हर साल लगभग 76,000 इंजरी क्लेम्स आते हैं। 2025 में आईसीसी को 79,169 गार्डनिंग क्लेम्स मिले, जिसमें ऑकलैंड 25,423 क्लेम्स के साथ सबसे आगे रहा और ज्यादातर इंजरीज सॉफ्ट टिश्यू स्प्रेन्स और बैक प्रॉब्लम से जुड़ी थी। टीवीएनजेड के मल्टी पार्टी डिबेट में एक्ट के डेविड सिमो, तेपाटी माउरी के रवि वैतिती और न्यूजीलैंड फेस्ट के विंस्टन पीटर्स, टॉप की क्वेल वोंग और ग्रीन्स की क्लोई श्रॉबिक आमने सामने आए। लीडर्स ने कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, प्रिजन पॉपुलेशन और फूड पर से जीएसटी हटाने जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय पेश की और पोस्ट इलेक्शन कॉलिशंस पर चर्चा की। इस बीच लेबर ने नेशनल पर आम फैमिलीज को हजारों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, जबकि नेशनल ने अपने पहले 100 दिनों का पॉलिसी रोड मैप रिलीज किया। ग्रीन्स ने $6 बिलियन इकोनॉमिक प्लान के जरिए 64,000 नई जॉब्स का वादा किया है, जबकि लेटेस्ट पोल में अपॉर्चुनिटी पार्टी अभी भी किंग मेकर की पोजीशन में दिख रही है। यूएफए चैंपियंस लीग के दो मैचेस फिलहाल खेले जा रहे हैं। एससीपी की जीत लेंस के खिलाफ 2-0 से हो रही है और अब सबा स्लाविया प्रहा से 2-0 से आगे है। बाकी के मैचेस आज सुबह 8 बजे से खेले जाएंगे, जिनमें एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड शामिल हैं। इंटर मिलान क्लब ब्रुगे का सामना करेगा और उसके अलावा गैलेटासराय बार्सिलोना से खेलेगा। आर्सेनल की भिड़ंत एलओएससी से होगी। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko. Hum. Accurate traffic.
5: Kitchen Mania free installation.
6: Cloudy today, a high of 22. Coming in on the Northern Motorway, 26 minutes from Constellation Drive to town. 58 from Silverdale. Heavy at Silverdale and Greville to Sunnynook, then slow to the bridge. Northwestern, half an hour in from Massey, heavy spots upper Harbour to Te Aratu South, slow from Pātiki, heavy through Point Chev. Southern 46 in from Manukau, slow all the way from Papakura, heavy at times, and southwestern heavy northbound through Whitty.
5: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
7: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks on now at Pack and Save.
8: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/food festival.
9: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
10: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
10: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
9: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
12: Settle, win, escape.
8: escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
0: Octopus Factory Farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
3: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera hi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
15: A very happy birthday, many many happy returns of the day. आपको विश करते हैं आज जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. सबसे पहले तो आज जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. विशिंग टू सूरज कुमारी जी, अपना बर्थडे आप मना रही हैं. हैप्पी बर्थडे आपको. जन्मदिन के खास मौके पर आपके हस्बैंड हैं भीमानंद और साथ में आपके जितने भी परिवार वाले हैं, जितने बच्चे हैं, आपके ग्रैंड किड्स हैं, सभी की ओर से आपको स्पेशल लव एंड बेस्ट विशेज और हमारी ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो है हम आपको विश कर रहे हैं.
2: इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे. आज रोशनी लता आप भी अपनी सालगिरह मना रही हैं. पति हैं आपके, साथ में बच्चे हैं और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं, सभी खुशी के इस मौके पर आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
3: 22 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आपने आज हमारे साथ सेलिब्रिटी अलार्म में हिस्सा लिया तो कई इंटरेस्टिंग आंसर्स हमारे पास लोगों ने भेजे हैं. एक जवाब ना मुझे सच में बहुत पसंद आया. इन्होंने जवाब में लिखा इट्स क्राइम मास्टर गोगोस डॉटर. ये इनका आंसर था. मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन इन्होंने सीधा ये बता दिया कि इनका रिश्ता जो है क्राइम मास्टर गोगो के साथ क्या है. बट इंटरेस्टिंग. और दूसरी ओर हमारे पास प्रीति, इन्होंने भी अपना मैसेज जो ये सेंड किया है, इन्होंने जवाब भी दिया है, साथ में कहा है मॉर्निंग होप आप दोनों का दिन अच्छा जाए. थैंक यू फॉर मेकिंग द मॉर्निंग ब्यूटिफुल विद योर शो. रिगार्ड्स फ्रॉम प्रीति. थैंक यू सो मच प्रीति. थैंक यू फॉर मेकिंग आवर मॉर्निंग विद योर ब्यूटिफुल मैसेज एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट आपकी कंपनी एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया. तो जितने लोगों ने हमारे पास अपने मैसेजेस आज भेजे हैं किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया. सभी के राइट आंसर आए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज
4: श्रद्धा कपूर.
3: एब्सोल्युटली. तो आज की हमारी सेलिब्रिटी थी श्रद्धा कपूर, जिनके बारे में कहा जाता है कि शी हैज दिस अपर हैंड जहां पर शी कैन स्पीक इन डिफरेंट एक्सेंट्स एंड ब्रिटिश एक्सेंट जो है वन ऑफ दोज एक्सेंट्स जिसमें ये बहुत क्लीनली बातें करती हैं. नाउ गेटिंग बैक टू सम अपडेट्स जो आपके लिए हम लेकर आए हैं. आज है वेंसडे 14th ऑफ अक्टूबर. 10 सेंस ऑफ पर लीटर ऑन फ्यूल आपको मिलेगा ऑन ऑल मेजर पेट्रोल स्टेशंस. और अभी भाई पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा है, इसलिए जहां भी पैसे बचे बचाने की कोशिश कीजिए. और दूसरी ओर आपको यह भी याद दिला दे कि $5 वीक भी चल रहा है पैकिंग सेफ सुपरमार्केट.

0: आपको चोट चपेट लग रही है गार्डनिंग करते समय, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दैट। लेकिन गार्डनिंग तो करनी है, या फिर घर का कोई काम जो है ये भी आपको निपटाना है, खुद नहीं करना है किसी से करवाना है, लेकिन सामान खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए।
1: बिल्कुल, तो ऐसे में माइटर 10 के वाउचर्स वर्थ $1,000 अगर आप अपने नाम करना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। करना क्या है इसके लिए, जानने के लिए आप सुनते रहिएगा। नाउ बिफोर वी प्ले आज का हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइफ में कुछ ऐसी हॉबीज आपको बिल्ड करनी चाहिए जो आपकी लाइफ बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकता है। एक सक्सेसफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ लाइफ जो आप एक्चुअली इंजॉय करते हो। क्योंकि ये भी आप सोचो ना, अगर आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं या सिर्फ पैसे कमाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, यू नॉट इंजॉइंग इट, तो आप एक टाइम के बाद थक जाओगे मेंटली, नॉट फिजिकली बट मेंटली थक जाओगे, एंड देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट। एंड अभी तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक भी चल रहा है, एंड ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस जो शायद हम बार बार भूल जाते हैं कि जितना ज़रूरी हमारा फिजिकल हेल्थ है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारा मेंटल हेल्थ है। तो मेंटली अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसी कुछ हॉबीज, कहते हैं कि एक हॉबी होनी चाहिए जो आपके बॉडी के लिए हो, जैसे कि जिम जाना, रनिंग, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं,
0: फिजिकल
1: हॉबी जो आपके बॉडी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे।
0: कैन यू ऐड फिशिंग टू दैट,
1: व्हाटएवर इट इज, बट फिशिंग में उतना फिजिकलिटी जो सिर्फ पुलिंग वाइज होता है ना।
0: किसने कहा ये?
1: मैं बोल रही हूँ, आई डोंट रियली लाइक फिशिंग, दैट्स व्हाई आई गेस। बट ऑन द अदर हैंड, एक और एक चीज, आई मीन यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक, जो फिजिकली आपको मूव करने में हेल्प करता हो और उससे आपका फिजिकल हेल्थ भी बना रहे, एंड यू डूइंग इट टू,
0: सब समझ गए।
1: हाँ, तो जो भी आपका दिल करे, फिशिंग अगर आप चाहते हैं तो आप कीजिए। दूसरा इज वन ऑफ दोज हॉबीज जो आपका माइंड स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करे, ब्रेन एक्टिविटीज जो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके अटेंशन स्पैन को एक्टिव रखने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। और इसके साथ साथ आजकल के ज़माने में जहाँ पर इतना पैसिव कंजम्पशन होता है कंटेंट का, तो इसके लिए अपनी एक ऐसी हॉबी डेवलप कीजिए जिससे आपके ब्रेन को कंसंट्रेट करने का और चीज़ों को रिमेम्बर करने के लिए हेल्प चाहिए हो, जिसमें आप रीडिंग, चेस खेलना, पजल सॉल्व करना, लैंग्वेजेस सीखना या स्ट्रेटजी गेम्स खेलते हुए भी इसे वो एक्टिव बनाए रख सकते हैं। तीसरा वुड बी वन फॉर योर क्रिएटिविटी, हॉबीज जो हैं आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके खुद के आइडियाज़ को आप इंप्लीमेंट करते हुए कुछ कमाल का कर सके, दैट यू फील प्राउड ऑफ, जैसे फोटोग्राफी हो गई, पेंटिंग हो गया, लिखना, लोगों को लिखना बहुत अच्छा लगता है ना, चाहे आप दो लाइन के शेर ही क्यों ना लिखे, लेकिन यू क्रिएटिंग इट ऑन योर ओन, म्यूजिक बनाना या फिर म्यूजिक लिखना, कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्रिएटिविटी एनहांस करती है। चौथा इज समथिंग टाइप ऑफ हॉबी जो आपको करनी चाहिए अपने सोल के लिए, अपने आत्मा के लिए, यू नीड टू माइंड थिंग्स जो आपके लिए एक ऐसी चीज़ परफॉर्म करे, कम्पीट करे, प्रोड्यूस करे जिससे आपके मन को शांति मिले, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके सोल को शांति मिले और रिचार्ज होने का टाइम मिले, जैसे मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, गार्डनिंग करना, वॉक्स के लिए जाना जहाँ पर यू डोंट गो फॉर वॉक्स जस्ट टू बर्न दोज कैलोरीज, बट यू जस्ट गोइंग आउट फॉर वॉक्स ताकि आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकें, इन्जॉय कर सकें, या फिर ड्राइंग करना। सो दीज आर सर्टन हॉबीज जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप डेवलप करते हैं अपने लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए, तो ये आपकी हेल्प मतलब कर सकता है आपकी लाइफ को और भी हेल्थी बनाए रखने के लिए।
0: आप इनमें से कितनी हॉबीज हैं?
1: आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं साइकिलिंग में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, आई बीन ट्राइंग टू गेट अ नाइस साइकिल दैट आई रियली वुड लव, बट अभी मेरे पसंद का मुझे मिल नहीं रहा है मेरे बजट के हिसाब से।
0: बनाया नहीं है अभी बनाने वालों ने?
1: नहीं नहीं, बना हुआ है बट बहुत महंगा है वो। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जितनी भी चीज़ें हैं इसमें मेरा किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर जैसे कि मैंने कहा कि सोल के लिए कोई एक ऐसी हॉबी जिसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, गार्डनिंग हो, नेचर वॉक्स हो, ड्राइंग हो, आई डोंट डू एनीथिंग। एंड ये पढ़कर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दिस आर्टिकल इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, अगर आप इसे फॉलो करते हैं इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है इफ़ यू अंडरस्टैंड इट थरली, बट इफ़ यू जस्ट इग्नोर इट लाइक जस्ट एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो वही बात है, विल जस्ट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक मी राइट नाउ जहाँ पर मैं हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक चेंजेस स्लोली स्लोली, व्हाट अबाउट यू, आपने क्या
0: कुछ किया? I'm good, yeah, it's a good day.
1: नहीं, आपने ऐसी कौन सी हॉबी जो ये अपनी लाइफ में की हुई है?
0: मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा था जब आप बता रही थी, तो आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो नहीं करता।

0: और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूँ जो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से.
1: ओके, इंटरेस्टिंग. तो आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं एंड इफ नीड बी मेक दोज इंपॉर्टेंट चेंजेस इन योर लाइफ.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी. ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2. Accurate traffic.
6: Core 5 Festival this Saturday.
7: Staying mostly cloudy today. A few fine spells, high of 22. Coming in, motorways are fairly heavy now. Northern, half an hour Constellation Drive to town. 56 in from Silverdale. Heavy at Silverdale and heavy patches Greville to the bridge. Northwestern, 35 minutes in from Massey. Slow most of the way from Upper Harbour. Heavy patches frequent. Southern, 52 in from Manukau. We're heavy on and off from Papakura. Southwestern, heavy northbound at Whitty.
6: Core 5 Festival this Saturday in Warkworth. Live music, food trucks, free entertainment. Core5Festival.nz.
8: Coffee, the usual.
9: How about the unusual?
10: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP. TradeDepot.co.nz.
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
12: A message for all parents. Kids aged 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
13: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
14: Yes, Bebo.
13: Catch kya hai?
14: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
13: I still can't believe it. No catch.
14: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
15: DNC supply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: बस समय की ओर देखें तो 7 मिनट ही बाकी है समय हमारी स्टूडियोज़ में, वैसे 8 बजने में. अगले घंटे याद रहे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं दिवाली के खास मौके पर दिवाली रामायण गाथा, और ये आप जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं हमारे साथ. ये हम आपके लिए लाइव होने लेकर आएंगे. रोहिणी जी ने अपाहट वेलिंगटन से मैसेज किया है. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा. द चेंजेस विच आई हैव मेड इज गोइंग फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग फॉर 5 किलोमीटर्स. इट्स सो परफेक्ट एंड आई फील सो फ्रेश एंड रिलैक्स्ड फॉर द होल डे, इन्होंने कहा है. So thank you so much for sharing that, Rani ji, with us. बहुत-बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए.
4: Yeah.
3: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको आज हमारे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पहला कंपटीशन जिसमें पार्ट लेकर आप जीत सकते हैं $1,000 worth of Mitre 10 के वाउचर्स.
17: All thanks to NZPMI, जिनके साथ अपने प्रॉपर्टी का ट्रू सेल वैल्यू आप अनलॉक कर सकते हैं. आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स एक फ्री साइट असेसमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0800-4NZPMI. 0800-4NZPMI या www.nzpmi.co.nz आप विजिट कर सकते हैं.
3: राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हम .over.nz विजिट करें. और दूसरी ओर ये भी याद दिला दे, स्टैंडर्ड कैरियर रेट सप्लाई व्हेनेवर यू टेक्स्ट ऑन 5599. तो माइटर 10 के $1,000 worth of vouchers अगर आपको अपने नाम करने हैं तो इसके लिए अब आपको लिखना है NZPMI. रिमेंबर NZPMI ये सारे लेटर्स एक साथ और फिर उसके बाद स्पेस देकर आप हमें ये बताइए कि अगर ये वाउचर्स आपने जीते तो आप किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे. फॉर गार्डनिंग, फॉर DIY projects, फॉर कम्प्लीटिंग दैट बेडरूम जो आपने बनाना है, या फिर पेंटिंग द एंटायर हाउस, व्हाटएवर इट इज.
17: ओके, अगर आप NZPMI की ओर से $1,000 के MITRE 10 vouchers जीतते हैं तो आप क्या लेंगे.
3: राइट, तो ये लिखे, फिर अपना नाम लिखे, 5599% कर दे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज के वेदर के लिए कहा गया है मोस्टली क्लाउडी रहेगा, आइसोलेटेड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शावर्स होंगे, सनसेट 7:37 PM पर, टेम्परेचर 16 डिग्रीज तक पहुंच चुका है, ओवरनाइट 14 डिग्रीज एंड हाई ऑफ 22 आज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको, बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम, हैरिंगटन लिविंग मोनाको।
2: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: आज का ट्रेंड पेट्रोल जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अबाउट सिटी इन न्यूजीलैंड जो फिलहाल ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, तो लेट मी टेल यू, हैमिल्टन हैज़ कम सेकंड इन प्लेस ग्लोबल ट्रेवल रैंकिंग में, विच लुक्स एट द वर्ल्ड्स बेस्ट वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशंस।
4: Wow.
1: और इस लिस्ट में हैमिल्टन का नंबर 2 पर आना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ कोर्स। हैमिल्टन प्लेस सेकंड इन रैंकिंग, जो कि टाइम आउट ने रिपोर्ट किया है बेस्ड ऑन स्काई स्कैनर डाटा, जिसमें कंपेयर किए गए हैं कंबाइंड कॉस्ट्स ऑफ फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन अक्रॉस डिफरेंट डेस्टिनेशंस। ये जो सिटी है हैमिल्टन, इसके बारे में कहा गया है कि इट रिकॉर्डेड अ 23% ड्रॉप कंबाइंड फ्लाइट और होटल प्राइसेस में, जो अगर कंपेयर किए जाए प्रीवियस ईयर्स के साथ, मेकिंग इट अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर ट्रेवलर्स प्लानिंग देयर नेक्स्ट हॉलीडे। और नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो मेक्सिको सिटी टुक द केक, टॉप स्पॉट जो है इनको मिला, और इन्होंने 27% डिक्रीज जो है ये नोट किया विद कंबाइंड ट्रेवल कॉस्ट, जबकि मॉन्ट्रियल जो है मॉन्ट्रियल एंड कैनेडा, इन दोनों ने थर्ड ये स्पॉट हासिल किया विद अ 19% ड्रॉप। हैमिल्टन इज होम टू मल्टीपल पॉपुलर अट्रैक्शंस, जिनमें हैमिल्टन गार्डन शामिल हैं। और अभी तो आपको ये भी बता दें कि हैमिल्टन गार्डन में बहुत से नए चीज़ें जो है ये भी आई है ना। द लास्ट टाइम प्रोबली यू मस्ट हैव विजिटेड इट मैनी ईयर्स अगो, अगर 10 साल पहले लास्ट आप गए थे तो 10 साल पहले के मिलान में अगर कंपेयर किया जाए, अभी काफ़ी चेंजेस जो ये वहाँ पर हुए हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस दैट। जो भी चेंजेस है आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू गो एंड विजिट इट अगेन। और अगर आप वहाँ पर जाकर ये चेंजेस जो है ये देखते हैं तो कि हैमिल्टन गार्डन्स में क्या कुछ बदलाव हुआ है। नाउ द अदर थिंग व्हिच हैज बीन मेंशनड इज रिवर साइड वॉकिंग ट्रैक्स यहाँ पर, और उसके अलावा इट्स क्वाइट क्लोज, वाइकाटो का हिस्सा है ये, तो वहाँ पर जो फेमस हॉबिटन मूवी सेट है और वही तोमो केव्स है, इट्स क्वाइट क्लोज टू हैमिल्टन। तो अगर आप हैमिल्टन में रहते हैं या हैमिल्टन जाकर रुकते हैं फॉर यू नो ट्रेवलिंग पर्पसेस, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कम्यूट टू दीज प्लेसेस। सो दैट मेक्स सेंस।
4: Yeah, it does. How can it not make sense when
1: you're saying? मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने बोला पूछ लूँ, does it make sense or not? तो हैमिल्टन ट्रेंड कर रहा है राइट नाउ, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट यू नो बेस्ट वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशंस के मामले में।
4: तो थैंक यू सो मच, पिछले घंटे हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप जीत सके $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर्स NZPMI की ओर से, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे पास भेजी हैं। तो सही तरीके से अगर आपने अपनी एंट्रीज भेजी हैं, आप के नामों को ड्रॉ में शामिल किया जा चुका है।
1: बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। लॉट ऑफ यू इनफैक्ट हैव सेड कि आप अपना यू नो मेंटेनेंस करेंगे, किसी ने लिखा है DIY के लिए, आइरीन लैंडस्केप के लिए उन्होंने कहा, आरती ने कहा गार्डनिंग प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगी, रीना जी ने कहा कि एक मंदिर है इनका जिस जो काफ़ी स्मॉल है उसका मेंटेनेंस ये करने वाली हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ रीना जी, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज, अनफॉर्चुनेटली आप इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई हैं बिकॉज आपने कीवर्ड नहीं लिखा। रीना जी हैं और साथ में एल्विन हैं, इन दोनों ने हमारे पास जो मैसेजेस अपने सेंड किए हैं, आपने कीवर्ड नहीं लिखे हैं और इसी वजह से आपका एंट्री जो है सही तरीके से नहीं पहुंचा। कीवर्ड बहुत ज़रूरी है इस कॉम्पिटिशन के लिए। सो विच इज़ अगर आपको माइटर 10 के वाउचर्स जीतने थे NZPMI की ओर से, हमने कहा था आपको NZPMI लिखना है, फिर अपना जवाब लिखकर हमारे पास अपने नाम के साथ 5599% करना है आपको, विच यू अनफॉर्चुनेटली didn't do, and unfortunately you cannot be part of the draw. और परमा महाराज जी ने भी सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है, इन्होंने भी कीबोर्ड नहीं लिखा है। तो याद रहे, अभी और भी मौके आपको देंगे हम इनाम जीतने के। इनफैक्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप जीत सकते हैं लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स,
4: ग्रोसरीज।
1: तो अगर ये आपको जीतना है, इसके लिए क्या करना होगा आपको जानने के लिए सुनते ही रहना है हमें।

0: और सुगंधित पवन बहने लगी।
1: Mornings made better.
2: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Hey Chat GPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
1: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
6: Dreaming of your next overseas adventure? Compare flights from 60 plus airlines with Webjet. Browse airlines, routes and schedules all in one place, helping you find a flight that fits your plans and your budget. You can even mix and match airlines for more choice. With flexible ways to pay and real people to call if plans change, booking your next trip is easy. Search and book today. Visit webjet.co.nz and go somewhere.
7: Neela Outlet Store is having a huge three-day sale. On now until Friday, there's huge savings with up to 60% off a range of selected Neela appliances. Your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Miele appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Miele Outlet Store's huge three-day sale on now and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
8: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
10: PNC Supply.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take? What's your take? का वक्त हो चुका है और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बातें करेंगे. इनफैक्ट आज सुबह ही मैं इसके बारे में सोच रहा था और अभी थोड़ी देर पहले भी आई एम नॉट रियली श्योर आप क्या देख रही थी, बट इट हैड समथिंग टू डू विच कुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक टूडे.
13: ओके,
12: एंड आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, डू यू नीड टू से आई लव यू एंड आई अप्रिशिएट यू रेगुलरली, या फिर यू नो आपके एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अपने चाहने वालों के साथ. यू नो अलग अलग तरह होते हैं. यू नो अगर हमारे बड़े बुजुर्ग ले लें, कभी कभार वो स्ट्रगल करते हैं टू से आई लव यू, न कि मैं तुमसे इतना प्यार है, वो आपसे खाना खा लिया.
10: लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंपेयर आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का हमको आई लव यू बोलते हैं, बट इट डजंट मीन दैट दे डोंट लव अस, पर उनका जताने का तरीका थोड़ा अलग होगा.
12: तो वही मैं आज आपसे जानना, हर एक रिश्ते में ये सिचुएशन अलग होगा कि वो कैसे शायद अपना प्यार जताते हैं, पेरेंट्स एंड किड्स का, भाई बहन का, पति पत्नी का. तो जो भी रिश्ता, अभी पति पत्नी का अगर आप ले लो, रेगुलरली आई लव यू कहना या बताना कि व्हाट समवन मींस और द अदर पर्सन मींस इन योर लाइफ, क्या ये जरूरी होता है
10: फॉर अ हस्बैंड एंड अ वाइफ?
12: हां
10: आई थिंक हां फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप शायद जरूरी होता है.
12: अच्छा,
10: या आई पर्सनली थिंक दैट, पर आई डोंट नो कि क्या आप मुझसे अग्री करोगे या नहीं. एंड यू डोंट इवन हैव टू अग्री इफ यू डोंट फील द सेम, बट अगर आपके पास कोई एक राय है इस मामले में शेयर करने के लिए, तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 0800 004866 पर, और अपनी राय शेयर कर सकते हैं. व्हाट्स योर टेक कि एक रिलेशनशिप में रेगुलरली आई लव यू बोलना जरूरी है या नहीं? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक रिलेशनशिप, वी आर नॉट लिमिटिंग इट टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वी आर ओपनिंग इट टू ईच एंड एवरी रिलेशनशिप.
12: किसी भी एक रिश्ते में
10: अपने भाई और बहन को कितने आई लव यू बोलते हैं हम? डू इवन से देम आई लव यू? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैं नहीं बोलती हूँ. आई डोंट से आई लव यू टू माई सिबलिंग्स, नहीं बोलती मैं, जरा भी नहीं बोलती. तो देट इज समथिंग एक्चुअली सोचने वाली बात है ना.
12: ओके, अब देखे किसी को कोई इसके बारे में सोच भी रहा है या नहीं. एंड
10: गुड मॉर्निंग अहफाज.
13: गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों?
10: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
13: मैं भी ठीक हूँ, आज फाइनली मौका मिल गया.
10: हाँ जी, तो बताइए आप क्या वाकिफ रखते हैं इस बात से?
13: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे देखो बहन भाई के जैसे आप बात कर रहे हो, तो उसमें तो लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, बट वो लड़ाई में प्यार ऑटोमेटिक एक दूसरे को दिखता है. और मुझे नहीं लगता कि भाई बहन कभी बोलते होंगे अनलेस कि बहन की शादी हो रही हो. और दूसरा, हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में actions always speak more than words, but मुझे लगता है वो पर्टिकुलर रिलेशन में बोलना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो आपको, मुझे नहीं पता लड़कों के साइड से, मुझे नहीं लगता कि वाइफ को बोलना उतना जरूरी है. जैसे मेरे वाइफ का मुझे ये बोलना, मुझे उतना वो जरूरी नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ वो मुझसे कितना प्यार करती है. बट मुझे लगता है कि अगर मैं अपोजिट साइड से सोचूं, तो आई थिंक कि मेरा बोलना जरूरी
10: है. ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर एक पत्नी को उनके पति उनको आई लव यू बोलते हैं तो वो जरूरी है, पर अगर पत्नियां पतियों को आई लव यू नहीं बोलती तो चल जाता है?
13: हाँ, वो उनको ज्यादा
10: बोलने की जरूरत नहीं होती.
13: हाँ, यानी ठीक है, वो दे विल बी मोर हैप्पी. और वो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप उनको बोलो, अप्रिशिएट करो, एंड दैट्स लाइक थैंक यू है, आई लव यू है, जो भी आप बोलते हो, तो वो एक आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ाता है.
10: ओके, थैंक यू सो मच अहफाज आपके कॉल के लिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.
13: थैंक यू, बाय.
10: राइट, और आपका क्या कहना है सपना इस मामले में? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मेघा?
14: मैं रोशनी.
10: ओ रोशनी, सॉरी. मेघा छोटी वाली है ना?
14: हाँ.
10: तो बताइए रोशनी, क्या कहना है आपका इस मामले में?
14: मुझे मेरी मम्मी के बारे में बात करनी है.
10: मम्मी के बारे में?
14: मुझे बोलना पड़ता है मम्मी को आई लव यू, क्योंकि वो मुझे भूल जाती है.
10: कहीं इसका कारण वो नाम तो नहीं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिया?
14: नहीं, वही है.
10: देखा. तो आप बोलती हैं ताकि आपकी मम्मी को याद रहे, कि क्या आपको लगता है आपकी मम्मी आपको भूल जाती है? ओके. और मम्मी आपको बोलती है लव यू?
14: कभी कभी झूठी. सारा दिन बोलती रहती हूँ, और इन लोगों को जितना वो होता ही है, दो बच्चे होते ना, तो एक को लगता है कि मुझे दूसरे ज्यादा प्यार करते
10: हैं. हाँ, क्या बोला?
15: जब कोई काम
10: होता है, सपना
14: आपका दिन बना दिया सुबह सुबह,
10: आपके दोनों बच्चे आपके पोल खोल रहे हैं रेडियो पर आकर।
14: नहीं मेरे लिए नहीं, मेगा तो रोशनी के लिए बोली।
10: हाँ
14: जब आई लव यू बोलती है तब उसको मुझसे काम होता है।
10: मेघा ने रोशनी के बारे में, मुझे लगा कि मेघा ने आपके लिए बोला कि
14: नहीं नहीं नहीं
10: मुझे निस्वार्थ भाव। इंटरेस्टिंग, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।
14: आज आज वो रामायण की स्टोरी नहीं सुनाई आप लोगों ने?
10: वो सुना दी हमने 8:20।
14: तो 8:20 तो ट्यून इन कर लिया?
10: नहीं वो बज गया,
14: नहीं आया पहले हुआ था।
10: हाँ।
14: अच्छा ओके ओके
10: चलो थैंक यू सपना, थैंक यू। तो इंटरेस्टिंग रहा, दो कॉल्स आए, एक जहाँ पर एक पति पत्नी के रिश्ते को लेकर ये शब्द है आई लव यू, इसके बारे में बात हुई, तो दूसरा कॉल जहाँ पर माँ बेटी के बीच में, और फिर उसी कॉल में बहनों के बीच का भी आई लव यू जो ये रिवील हो गया।
12: ये रिवील हो गया, नीड टू से आई लव यू बिकॉज प्यार एक ऐसी चीज है जब तक जताया ना जाए या दिखाया ना जाए तब तक दिखता नहीं है। इन एनी रिलेशनशिप सो हैव टू से टू मेक anyone happy, Ash Wellington से इन्होंने कहा है कि बोलना जताना जरूरी
10: होता है। यार
12: ओके
10: इंटरेस्टिंग यार, किसी और का कॉल अगर आना है तो अभी आ जाए तो अच्छा है। ताकि हम समय के साथ चलते रहे ना, ऐसा नहीं कि हम पीछे रह जाए और फिर हमें छोटे छोटे गाने ढूंढने पड़े पूरे घंटे को कैटर करने के लिए। बट राइट नाउ 0800 004866 पर आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। वी टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव विच इज दोज थ्री वर्ड्स आई लव यू, ये बोलना कितना जरूरी है किसी भी रिश्ते में,
12: जरूरी है भी या नहीं, या फिर आपका प्यार दिखाने या जताने का तरीका क्या होता है,
10: तो ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं
12: जिसमें आप यकीन रखते हैं। अगर टेक्स्ट या कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अब टेक्स्ट कर सकते हैं
10: बिल्कुल
12: 5599 पर।
10: थोड़ी देर बाद आज हमारे एक और एक दिवाली कॉम्पिटिशन एक दिया एक कहानी में हिस्सा लेने का मौका देंगे, जिसमें पार्ट लेकर ड्रॉ में शामिल होकर $300 कैश जीतने का मौका है आपके पास।
1: Bollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
17: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic.
2: Switch your pool to swim at.
3: A bit of sun, lots of cloud today, a high of 22 degrees. Starting to ease on motorways, northern, 28 minutes in from Constellation Drive, 50 from Silverdale, heavy at Silverdale and Greville to Sunnynook, then slow patches to the bridge. Northwestern, 32 in from Massey, slow from Te Gata to, heavy spots on and off. Southern, 45 Manukau to town, slow most of the way from Papakura, heavy Otahu to Green Lane. Southwestern, heavy at Wiri.
2: Switch to specialist pool and spa advice and service today. Call your nearest swim art now.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months, 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
10: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: समय की ओर देखें तो 15 मिनट बाकी है इस समय 9 बजने में हमारे स्टूडियोज में. और
15: नहीं भी देखेंगी तो उतना ही टाइम रहेगा.
14: हाँ, बट देखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा ना. नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा. तो फिलहाल आपको ये याद दिला दें, अगले घंटे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं व्हाट्स गोइंग ऑन और आपके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारियां आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. बट दिस आवर हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एक दिया एक कहानी, इसमें पार्ट लेकर आपके पास मौका है $300 कैश जीतने का. दिस इज आवर दिवाली प्रमोशन, जहाँ पर दिवाली के दौरान वी आर ट्राइंग टू ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड एंड अप्रिशिएट एंड से थैंक यू to that one person जो हमारी लाइफ में you know as a light, as an inspiration,
15: जो अपना ना होकर भी शायद आपका अपना हो.
14: बिल्कुल. तो उनको याद करना, उनको shout out देने का मौका आपको हम दे रहे हैं और live होने या calls invite कर रहे हैं इसके लिए. तो अगर आप call करेंगे तभी आपका नाम हम इस draw में शामिल कर सकेंगे. ये text competition नहीं है. और आज आपके लिए एक दिया एक कहानी के लिए जो हम लेकर आए हैं सवाल, वो है ये कि आप हमें ये बताइए

0: क्या आपकी जिंदगी में कभी आपको ऐसे कोई एक पड़ोसी मिले जिन्होंने आपके लिए आपके अपनों से बढ़कर यू नो मेमोरीज बनवाई, आपका साथ दिया, आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहे, आपको सपोर्ट किया, आपको इनकरेज किया, या फिर पड़ोसी थे वो लेकिन बाद में आपके अपने बन गए इन अ वे?
1: या
0: तो आज पड़ोसियों को थैंक यू कहते हैं, कल हमने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी एक कलीग को या बॉस को थैंक यू करने के लिए इनवाइट किया था. तो लेट्स टॉक अबाउट आवर पड़ोसीज टुडे.
1: तो मौका है आपके पास, और इस बात का ख्याल रखें प्लीज कि टाइम रेडियो पर बहुत लिमिटेड होता है
0: जी.
1: और ये हमारी ओर से ये एक कोशिश है कि मौका दे आपको टू रिमेम्बर टू अप्रिशिएट सम स्पेशल पीपल इन आवर लाइव्स. और आपको एनकरेज करने के लिए $300 जो है ये भी हम दे रहे हैं. तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कॉल करना है, बताना है कि आपके वो कौन से पड़ोसी थे जिन्होंने आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, पॉजिटिवली आपकी जिंदगी को चेंज किया या चेंज करने में हेल्प किया, या किसी भी तरह से एक सकारात्मक असर उनका आपकी जिंदगी पर पड़ा,
0: उन्होंने आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा चेंज जो है वो लेकर आए हैं या इनकरेज किया है जिसकी वजह से इवन टुडे यू रिमेम्बर दैट पड़ोसी.
1: ओके,
0: कि यार वो बहुत अच्छे शख्स थे, यू नो मेरी लाइफ के एक बहुत अच्छा हिस्सा बन चुके थे. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा जी, मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए.
0: बढ़िया जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप.
2: मैं केवल सिंह बोल रहा हूँ.
0: हाँ जी केवल जी, तो आप आज किस पड़ोसी को याद करना चाहते हैं और क्यों?
2: हाँ, मेरे टीचर थे, एक पड़ोसी थे.
0: हाँ.
2: तो वो पीटी टीचर थे जो गेम वगैरह खिलवाते हैं.
0: तो ये आपके पड़ोसी थे या फिर आपके टीचर थे जो पड़ोसी थे?
2: नहीं, पड़ोसी टीचर थे.
0: अच्छा.
2: हाँ जी, अंकल ही थे मेरे, वो पड़ोसी कह सकते हैं ना.
0: जी जी जी.
2: तो पहले मेरा, जब मैं जवान था तो मैं खाता पीता बहुत था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था
0: जी.
2: तो उन्होंने मेरे को बड़ा ही एनकरेज किया, वो सुबह उठ के मेरे को साथ ले जाते थे, उन्होंने दिखाया कि कैसे वेट लूज होता है, कैसे फिटनेस पे ध्यान देना. तो उनको देख के, उनके साथ रह के मैंने अपना वेट बहुत कम किया था.
0: ओके.
2: हाँ जी, तो वो थे मेरे इंस्पायर, कह सकते हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था.
1: वो इंडिया में थे?
2: हाँ जी, हाँ जी, जब मैं इंडिया में था.
1: Okay.
0: जब छोटे थे वो, अभी तो इतने बड़े हो गए केवल जी. और देखो आज
2: नहीं, मैं तब 21-22 साल का था तब मैं.
1: अच्छा,
0: आप तो छोटे ही थे यार.
1: कहाँ छोटे थे?
2: हाँ, तब यंग थे, तब
0: अभी से तो छोटे ही थे ना.
1: बट
2: अभी से तो 20 साल छोटा था.
1: आखिरी बार उनसे आपकी कब बात हुई होगी, याद है आपको?
2: है, हाँ जी, मैं जब अभी गया था इंडिया जनवरी फरवरी में,
0: तब मिले थे.
2: तो हाँ, तब उनके घर पे मिले थे, खाना वाना खाया था. नेबर ही है हमारे, अब वो रिटायर हो गए ना.
1: अभी भी पड़ोसी हैं?
2: हाँ जी, अभी भी पड़ोसी.
0: अरे वाह, क्या बात है. चलो, थैंक यू सो मच केवल जी, हैव अ वंडरफुल डे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए. गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग
0: जी, किन से बात हो रही है?
3: जी रेनू से.
0: रेनू, और आज आप अपने किन पड़ोसी को याद करना चाहती है रेनू, और क्यों?
3: I would like to remember, actually they are my current neighbors and my landlord. Then they are Darshana and Anson. And they have three beautiful children. And I'm very humbled to live next to them, kyunki last year se main unke I've took their rental property. And I was going through very hard times, especially when you're a sole mom and going through a child custody matter after 10 years.
0: Jee.
3: And basically when we had left the country and just came here to visit and were caught up in a dungeon. And they, I'd like to honestly, from it's a heartfelt thanks to them if they are listening, but they have been a very much of a strong pillar for me. Like, I didn't know them, but they are like more than a family now to me.
0: Right.
3: Supported me in my journey, and still they support me. And I can't be any more grateful to people like them. It's just a blessing. Like, I was torn apart when I found out that I can't leave this country anymore. And I only came here to visit my father who was sick, and returned back with my son because we were living overseas. And all of a sudden, I had this top departure on my son, and we had no place to live. had to restart our life in New Zealand again. And when you have that kind of situation, and these people are like a blessing in my life, they are like angels, to be honest. I wish them well, and it comes from my heart that every blessing to them, and may they always be blessed and have happiness and prosperity.
1: Thank you.
0: That is amazing, Renu. First of all, though, thank you so much for taking us into such a personal, situation of your life, or that to live on radio. But you did it for a purpose. You did it to appreciate those people who are in your life. And as a landlord, as a padosi, you have entered into your life. But in your life, you have such a support system ban chuke that you had the courage ki aap radio par aakar apni zindagi ka ek aisa pehlu share kare, which is very personal to you. But you wanted to thank them because they stood by your side in that most difficult moment of your life.
3: And I think personally, I feel like people should not fear to speak up about these things, because it's a journey, and
0: yeah.
3: Sharing helps. And when you said that today you want to talk about the neighbors and things, and I could not think of anybody else. And every day I thank them, because it was a very hard journey for me. And when you don't have anyone, hardly any support, these people stood up like my own family, and that's the biggest blessing I can count on. And today, where I am, the strength and courage that I have is because of these two people and their children's support as well.
0: That's amazing. Thank you so much, and wish you all the very best, Renu. Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you.
1: चलो आई मीन रेन्यू का कॉल जो है ये रिसीव करने के बाद अभी तक इस कॉम्पिटिशन आई फील दैट कि
0: वी मेट द पर्पस
1: या
0: यस आई एग्री कि जो होल पॉइंट था इस पूरे प्रमोशन का अप्रिशिएटिंग दैट समवन इन योर लाइफ जो आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी लाइफ का इतना बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं उनको थैंक यू करना आई थिंक वी मेट द पर्पस
1: एटलीस्ट वी एनकरेज्ड वन पर्सन
0: टू डू दैट यस थैंक यू सो मच आपकी एंट्रीज के लिए

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Better traffic starts now.
3: A little sun, a lot of cloud today, a high of 22 degrees. Coming into the city at the moment, Southern Motorway, 43 minutes, Manukau to the CBD, 53 from Drury. Slow most of the way from Papakura, heavy from Otahu. Southwestern, bit heavy northbound through Whitty. Northwestern, 28 minutes, Massey to town, slow from Te Aratu, heavy there and at Point Chev. Northern, 24 in from Constellation Drive, heavy Greville to there and slow to the bridge.
2: Want cheaper public transport? Vote Labour. Authorised by Rob Salmond to Gilmer Terrace, Wellington.
4: Coffee? The usual?
5: How about the unusual?
6: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
7: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se kahin zyada zaruri hai ki aapke assets theft aur natural disaster se protected rahe. Jab aap apne valuables Commonwealth Vault ko entrust karte hain, to aapko milta hai peace of mind. Ye jante hue ki wo safe, secure aur protected rahenge. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
11: Oops, the recipe says we need full fat cream.
12: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
0: Time check.
9: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
0: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. National has made sweeping promises to get Auckland back on track, including new car parking requirements. If re-elected, it would empower the council to dictate the minimum number of off-street parks for new developments outside planned intensification. The party's also vowed to drive down crime and deliver on infrastructure. Meanwhile, Winston Peters claims he rejected the offer of being called Sir. It sparked an impromptu rapid-fire round at last night's One News multi-party debate.
13: Knighthoods and embassies and high commissions and...
14: Would everyone here turn down a knighthood out of curiosity?
15: Absolutely.
14: Turn it down?
15: Yeah. Yes.
16: Absolutely.
15: Yeah.
16: Well, I've never thought about it, to be honest.
2: A plea from Auckland Council to stop dumping electronic waste in curbside rubbish bins. They've been linked to fires at the recycling facility and in rubbish trucks. Spokesperson Justine Haves says they're using World E-Waste Day to get the message out.
17: We just say please, please help keep people safe. A few extra minutes to drop off a battery safely really can help prevent a fire.
2: The former gang boss convicted of orchestrating the murder of Tupac Shakur has been sentenced to 40 years in prison. Dwayne Keffi D. Davis was found guilty last month for the rapper's death in 1996. To sport, the Wallabies are determined to bounce back in Saturday's second test against the All Blacks in Sydney. Backline star Joseph Soali'i says they've learned some hard lessons from the heavy Eden Park defeat.
18: Yeah, we know what we need to do. Very confident on, you know, our coaches and us as boys. I feel like we'll be great this weekend.
2: And an alarming report for English football. The majority of clubs are on the edge of financial disaster, according to the Independent Football Regulator.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: सुपर सिटी ऑकलैंड में राइट नाउ टेम्परेचर 17.4 डिग्रीज तक पहुंच चुका है और आज हाई ऑफ 22 एक्सपेक्टेड है. ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर जो है ये आज रहेगा. अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे विद मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शावर्स. सनसेट 7:37 PM पर आज रहेगा.
15: Monaco, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
1: What's going on? Kya bakte ho?
20: Are kehna kya chahte ho?
7: I really want you to say kya bakte ho after listening to this story. Nahi pehle sun to lo tab bolna. Kyunki I said it. I was shocked when I heard it. You know, aajkal social media ka zamana hai, internet par apne apne followers badhane ka zamana hai jahan par log itni mehnat karte hain aur kuch na kuch karte hue apne followers badhane ke liye tarah tarah ke content create karte rehte hain. और ऐसे में इफ़ आई टेल यू कि एक ऐसा पेज है जहाँ पर 9 months ago इन्होंने एक जर्नी शुरू की थी और 9 months में इन्होंने देखा जाए तो अपने अलग अलग वीडियोस पर 7.2 million तक व्यूज़ जो है ये पा लिए. एंड नॉट जस्ट दैट, इतने व्यूज तो पाए ही पाए लेकिन साथ ही साथ इनके पास करीबन 200,000 फॉलोअर्स भी हैं और इट्स ग्रोइंग एवरी डे.
21: अच्छा,
7: तो आप बोलोगे कि हाँ अच्छी बात है यार, समवन इज यू नो गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड बिल्डिंग कहीं ना कहीं अपना सोशल मीडिया अकाउंट और फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद यू नो व्यूज भी बढ़ा रहे हैं. लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये किसी इंसान का फेसबुक बोल रही हूँ, किसी इंसान का सोशल मीडिया पेज नहीं है बल्कि एक इंसान इसे हैंडल जरूर कर रहा है लेकिन द मेन आइटम और द कॉन्टेंट और द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस पेज इज अ स्टोन, एक पत्थर. तो
21: क्या बात, मैंने डॉगी का देखा था,
7: पत्थर का कभी नहीं देखा.
21: पत्थर का सोशल मीडिया अकाउंट कहीं नहीं.
7: तो मैं आपको बताऊं, एक ऐसा,
21: काश मैं भी ऐसा पत्थर होता.
7: एक ऐसा अकाउंट एक्चुअली है इंस्टा पर जहां पर मूलचंद जी इस पत्थर का नाम है.
21: अच्छा, पत्थर का नाम भी है
7: जी. जिसने क्रिएट किया ये अकाउंट उन्होंने दिया है और उन्होंने ऐसे वीडियो बनाया कि 9 साल पहले आज से मैंने आपके साथ एक जर्नी शुरू की थी जहां पर मूलचंद जी की जर्नी मैं आपको दिखाने के लिए ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया था. तो क्या था, एक डिफरेंट शेप्ड ऑफ पत्थर था, उसे लेकर हर रोज ये बंदा किक करता है. हाँ, जमीन पर या फिर रास्ते पर, सड़क पर, स्ट्रीट पर, कहीं पे भी उसे किक करता है, किक करते हुए लेकर जाता है. बिकॉज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज कि वो उस पत्थर का शेप जो है ये बदल सके, उसका आकार बदल सके
21: किक करके.
7: हाँ, क्योंकि अगर वो ऐसे किक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा, टूटेगा, थोड़ा ग्राइंड होगा और शेप चेंज होगा ना.
21: इन दैट वे यस.
7: तो उस हिसाब से अब हर रोज कंसिस्टेंटली ये शख्स जो है पिछले 9 महीने से एक वीडियो मस्त डालते हैं जहाँ पर थोड़ी देर
21: हर रोज पत्थर को लतिया रहे हैं.
7: हाँ, हर रोज थोड़ी देर के लिए पत्थर को किक करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो उसका जो वजन है और शेप है उसका अपडेट भी देते हैं. वो ऐसे करते करते करते करते ये जो मतलब अकाउंट है इसमें
21: पत्थर ने इतना वर्कआउट किया उसका वजन कम हो गया होगा.
7: हाँ, ऑब्वियसली इसीलिए तो बोला ना, शेप और वजन का जो पूरा अपडेट ये देते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो. एंड हर रोज ऐसा करते करते उन्होंने एक ऐसा अकाउंट जो है ये बनाया जहाँ पर लोग इनके साथ जुड़े भी हैं और मूलचंद जी की जर्नी फॉलो भी कर रहे हैं. और ऐसा करते करते इतने सारे फॉलोअर्स भी बना लिए, इतने सारे व्यूज भी जुटा लिए. Isn't that amazing?
21: It is amazing.
7: बोलो ना, क्या बकते हो?
21: क्या बकते हो?
7: बट इट इज अ फैक्ट. आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं. आई थिंक डेविल्स रॉक इज द बायो ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट ऑल्सो. तो अगर आपको इंस्टा पर मिले तो आप जाकर चेकआउट कीजिए और फिर बताइए कैसा रहा ये. फिलहाल आप शुरू कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ऑकलैंड में विल चेकआउट कहाँ कहाँ पर नवरात्र के पर्व मनाए जा रहे हैं, साथ में इसके और भी कई इवेंट्स हो रहे हैं हमारी खुद की कम्युनिटी में जिसका हिस्सा बन सकते हैं, कब और कैसे ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे.

0: going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: व्हाट्सअप ऑकलैंड में चलिए चेकआउट करते हैं कि कहां कहां पर क्या कुछ इवेंट्स हो रहे हैं. जैसे कि हमने कहा, नवरात्रि के पर्व मनाए जा रहे हैं बहुत सी जगहों पर. रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मैनिकाओ जहां पहुंच सकते हैं ट्यूसडे 20th October तक. हर रोज 6 PM से यहां पर नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाएगा. गरबा एंड डांडिया रास हर रोज आफ्टर कथा, आप इसमें पार्ट ले सकते हैं.
4: श्री हनुमान मंदिर 14 बाई पार्क प्लेस बर्गडेल नोचो हर शाम 6:15 से जो है ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है. आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
3: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर 11th October से लेकर 20th October तक ये चलता रहेगा. यहाँ पर भी नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा. 7 PM to 9 PM 38 वॉम्सली रोड ऑटोहू जहाँ आप पहुँच सकते हैं.
4: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनकाउ में.
3: और साथ में माँ दुर्गा टेम्पल 4/3 ऑन स्लो एफ पापाटोयटोय हर रोज यहाँ पर रात 7 बजे से नवरात्रि का पर्व शुरू होता है. अंटिल 19th October आप इसमें जरूर शामिल हो सकते हैं. और कन्या पूजन जो है 18th and 19th October को यहाँ किया जाएगा जिसमें आप भाग ले सकते हैं.
4: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में हर शाम 6 बजे से पूजा शुरू होती है.
3: और इसके साथ साथ बहुत से जगहों पर और भी इवेंट्स जो है ये हो रहे हैं. वैसे आपको हम ये भी याद दिला दें कि खास आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम जिसका हिस्सा बन सकते हैं. गरबा इवेंट है ये और इसमें अगर आपको शामिल होना है तो आपको डिटेल्स जो है ये हम ज़रूर प्रोवाइड कर दें. सबसे पहले तो आपको याद दिला दें कि ये जो गरबा इवेंट है आपके लिए 9 फाइनेंस सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं और ये नोट शो कम्युनिटी इवेंट्स द्वारा आपके लिए हो रहा है. बाफुट एंड थॉमसन नेटबॉल सेंटर 44 नॉर्थ कोर्ट रोड नोट शो में ये 7 PM ऑनवर्ड्स रहेगा और इसकी शुरुआत हो रही है इसी फ्राइडे से यानी 16th October एंड सैटरडे 17th October को ये होने जा रहा है. 16th and 17th दिस फ्राइडे एंड दिस सैटरडे 7 PM ऑनवर्ड्स बाफुट एंड थॉमसन नेटबॉल सेंटर 44 नॉर्थ कोर्ट रोड नोट शो पहुंचकर आप भी इस गरबा इवेंट का मजा जो है ले सकते हैं बिकॉज एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री.
4: इसके अलावा ये भी याद रखें कि मेनोबोस ग्लोबल प्रेजेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्लोबल पावर या फिर globalpowersearch.com और इसके दौरान वर्ल्ड मेनोपोस डे संडे 18th October को एक फ्री ऑनलाइन इवेंट है जिसमें आप हिस्सा ज़रूर ले सकते हैं.
3: और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस साल संप्रीति आपके लिए लेकर आ रहे हैं इनका सेकंड एनुअल दुर्गा पूजा जो कि होने जा रहा है 17th and 18th October को. और इस साल का थीम है शिखर यानी कि आवर रूट्स. आप ब्रेड कर सकते हैं द कनेक्शन विद द बंगाली कल्चर एंड ट्रेडिशंस और साथ में हेरिटेज ऑफ द कल्चर जो कि यहाँ न्यूजीलैंड में आपके लिए लेकर आ रहे हैं इन अ फ्री इवेंट जो हर किसी के लिए ओपन है. एंड बोथ डेज यहाँ पर आप ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा अंजलि जो भोग है इसका भी मज़ा उठा सकते हैं. कल्चरल परफॉर्मेंसेज जो है दोनों ही रोज़ रात 7 बजे से शुरू होंगे. यहाँ पर सिंदूर खेला और अदर ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस भी रहेंगे जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं. एंट्री बिल्कुल मुफ्त है. फ्री मंस बे कम्युनिटी हॉल आप पहुँच सकते हैं इसमें शामिल होने के लिए. तो आपके आसपास भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं इससे जुड़ी जानकारियां हम आप तक जरूर लेकर आएंगे.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो मैं आ गए.
6: 80s के रेट्रो गाने.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: तो आज है वेंसडे द 14th of October और जैसे कि आपको याद होगा आज सुबह भी हमने इसके बारे में बातें की जहां पर वी हैड स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि ये है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक और ऐसी कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस कुछ ऐसे ला सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ को और भी बढ़िया बनाने के लिए. बट राइट नाउ हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुकी हैं फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज और इनका नाम है मिथिला गडकरी जिनसे हमने एक बार पहले भी बातें की हैं. वेरी गुड मॉर्निंग मिथिला, कैसी हैं आप?
3: गुड मॉर्निंग पूजा जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: एकदम बढ़िया. आज आपसे वैसे कुछ ज़रूरी चीज़ों पर अगर हम बातें करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक इसके बारे में जहाँ पर एशियन फैमिली सर्विसेज ये इनकरेज कर रहे हैं लोगों को टू रीच इन एंड रीच आउट और आज जबकि आप हमारे साथ जुड़ी हैं फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज तो क्या आप हमें समझा सकती हैं अच्छे से मिथिला की रीच इन का क्या मतलब होता है?
3: पहले तो पूजा जी थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा आप जानते हैं कि दिस वीक लाइक 12th October to 18th October जो है वो न्यूजीलैंड में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है. तो हम एशियन फैमिली सर्विसेज की तरफ से कैंपेन, नेशनल कैंपेन कर रहे हैं रीच इन रीच आउट. तो उसमें रीच इन मीन्स टेकिंग अ मोमेंट टू नोटिस हाउ यू आर फीलिंग. तो अगर आपके स्लीप में कुछ चेंजेस है या मूड में चेंजेस है या आपको भूख कम ज़्यादा हो रही है या फिर रूटीन चेंज ऐसे लग रहा है कि यू नो मन अच्छा नहीं लग रहा है तो इमोशनल सपोर्ट इस दौरान हेल्प कर सकता है. तो रीच इन मीन्स आप अपने आप से पूछिए कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ.
2: ओके, और दूसरी ओर रीच आउट ये कैसे आप डिस्क्राइब करोगे?
3: रीच आउट मीन्स चेकिंग इन विद समवन यू केयर अबाउट. अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आप आपके किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से बात कर सकते हैं या फिर अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या कोई जान पहचान वाला है जो लो फील कर रहा है तो उनके साथ चेक इन कीजिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उस समय लिसन विद केयर और encourage them to seek support if they need it.
2: Okay. और what support जो है is available for people who may need actually emotional support when it comes to it? Asian Family Services क्या support provide कर सकते हैं?
3: Asian Family Services में हम free और confidential emotional support provide करते हैं. हमारी Asian helpline है 0800-862-342. तो हमारे पास न्यूजीलैंड रजिस्टर्ड काउंसलर्स हैं जो अब हमारे कल्चर को समझते हैं और इसलिए मदद मांगना जो है वो कमजोरी नहीं है ये समझना भी जरूरी है
2: जी.
3: लेकिन अगर इमरजेंसी है या इमीडिएट डेंजर में है कोई तो उस समय 111 पर कॉल करना चाहिए और अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.asianfamilieservices.nz.
2: ओके, थैंक यू सो मच मिथिला आपके यू नो सपोर्ट के लिए और इन सारी जानकारियों के लिए. डेफिनेटली बहुत से लोग जिनको शायद ज़्यादा समझने की और इवेलुएट करने की ज़रूरत पड़े और हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो इन सेवाओं से फ़ायदा उठाए. थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.
3: थैंक यू सो मच, यू टू, थैंक यू.
2: तो चलिए अभी फिलहाल 25 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर हमारे स्टूडियोज़ में. मिथिला से हम बातें कर रहे थे फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज. थोड़ी देर बाद आपको हम देंगे मौका हमारे साथ पार्ट लेने का कंपटीशन में.
4: याद रहे जो हमारा हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून है इस दिवाली के मौके पर एक और बहुत ही शानदार इनाम जीतने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी.
5: अपना ए गेम
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: ऊर्जा।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: It's a very good time to go electric with Winger Motors. For a limited time, drive away in a new Jaqu J5 EV Summit with 0% interest and no deposit over 12 months. Experience all the comfort, technology and practicality you'd expect from a premium SUV. It's the affordable way to switch to EV this summer. Winger Motors, East Auckland, North Shore and Pukekohe or winger.co.nz. On now till October 31st. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
3: Curtain Studio's massive three-day sale is on now. Our top-selling studio curtain and blind range is now half price. That's right, 50% off all studio ready-mades and custom fabrics and blinds. But be quick, sale ends Saturday. Only at Curtain Studio.
4: Home and contents belong together, and insuring them together makes life easier. Switch to Tower and save $200 on new home insurance and $100 on new contents insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: The trade-tested cabin sale is on now with up to 20% off our entire range. Nordic timber, easy to build and over 30 bottles to choose from. Make a backyard yoga studio or just build a bar. Genius! Head to Trade Tested today.
6: Ends November 2nd.
7: दिवाली आ रही है और फॉर्चून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्चून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th नवंबर। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-88. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
9: Minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, bae. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
10: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
9: Yeah, that sounds like me.
10: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
9: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
11: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
12: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया। घर बेचने को कह रहे थे।
13: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
12: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
14: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI.
15: The rain falls softly across the estate. He waits for you beneath the old oak tree. He's hoping that this time you'll take his hand, despite the scandal and that unfortunate incident with the peacock. You approach. He smiles, takes a breath and says,
16: "The next station is Karangahape."
17: Read, scroll, draw, knit, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains and ferries.
18: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
19: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
20: What's going on?
15: डेली राउंडअप का वक्त अब हो चुका है और
0: 23 मिनट अभी रह गए हैं 10 बजने में. और वैसे आपको बता दें जो मैचेस आज खेले जा रहे थे यूएफए चैंपियंस लीग के, उन पर अपडेट्स जल्दी से आपको दे दें. अभी वाइन 3 वाइकिंग 2, विलरियल 2 नेपोली 1, इंटर मिलान की हार क्लब ब्रुगे के खिलाफ 3-1 से हो रही है. एथलेटिको मैड्रिड इज लीडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय अ गोल टू नील. आर्सेनल 3 एलओएससी 0, बार्सिलोना 4 गैलेटासराय 1, आरपी लेप्ज़िग 1 पीएसवी 0, सभा 2 स्लाविया प्राहा 0, और एससीपी की जीत लेंस के खिलाफ 2-0 से हुई.
1: तो चलिए आज का जो डेली राउंडअप है इसमें क्या कुछ अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं ये आपको बता दें. सबसे पहले आज जो अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं इसमें कहा गया है कि जो यंगर न्यूजीलैंडर्स हैं दे आर एंडिंग अप पेइंग मोर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जबकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू अफोर्ड फॉर अ होम ऑफ देयर ओन एज वेल. ये क्वेश्चन जो इकोनॉमिस्ट द्वारा रेज किया गया है और जैसे जैसे डिबेट बढ़ रहा है ओवर द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ न्यूजीलैंड सुपर, तो सवाल के साथ साथ ये डिटेल्स भी सामने आए हैं कि जो पेंशन है करंटली costs around $26 billion a year. और economists ने warn किया है कि as the population ages, fewer working age people will be supporting more retirees. Economist Cameron Bargey जो है इन्होंने कहा है कि government will eventually face difficult choices, either increase taxes or reduce spending in other areas. और ये भी कहा है कि यंगर जनरेशन में फील द सिस्टम इज अनफेयर, स्पेशली वेन मैनी आर स्ट्रगलिंग टू बाय अ हाउस एंड हैव मिस्ड आउट ऑन बेनिफिट्स ओल्डर जनरेशन एंजॉयड सच एज फ्री एजुकेशन.
0: वुमाड आउटियरोआ 2027 के लाइनअप में कई नए इंटरनेशनल और लोकल आर्टिस्ट जो हैं इनको ऐड किया गया है. नए लाइनअप में 18 देशों के आर्टिस्ट शामिल हैं, जिनमें 14 पीस जो पर्कशन कलेक्टिव पोर्टोरिकन कलेक्टिव है ये आ रहे हैं. इंडियन हिप हॉप ग्रुप भूटान बेलेडियस और यूक्रेनियन बैंड धाका ब्रहा जैसे बैंड्स जो है ये शामिल हैं. और ये जो फेस्टिवल है ये अब अगले साल 12 से 14 मार्च तक होने जा रहा है और ये तरनाकी में होगा.
1: और इसके अलावा एक बहुत ही चिंताजनक सर्वे रिजल्ट जो है ये सामने आया है जिसमें ये पाया गया है कि नियरली 1 in 3 न्यूजीलैंड हाउसहोल्ड्स दे स्ट्रगल टू अफोर्ड इनफ न्यूट्रिशियस फूड ओवर द पास्ट ईयर. न्यूजीलैंड फूड नेटवर्क्स के 2026 हंगर मॉनिटर सर्वे में 3000 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें पता चला 31% ने एक्सपीरियंस किया है फूड इनसिक्योरिटी. दैट इंक्लूड्स 14% जिन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ऑन फूड क्वालिटी या न्यूट्रिशन, वाइल 17% फेस्ड सीवियर हार्डशिप इंक्लूडिंग डिसरप्टेड ईटिंग पैटर्न्स और फ्रीक्वेंटली स्किपिंग मील्स. और इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं, स्पेसिफिक कम्युनिटीज के डिसेबल्ड लोग हैं, रेंटर्स हैं, दे आर द वंस जिनको सबसे ज़्यादा असर का सामना करना पड़ रहा है. इवन पीपल वर्किंग फुल टाइम आर स्ट्रगलिंग विद 28% सेइंग दे हैड डिफिकल्टी पुटिंग फूड ऑन द टेबल वाइल कीपिंग अ रूफ ओवर देयर हेड्स.
0: 2025 यानी पिछले साल ICC को 79,169 गार्डनिंग क्लेम्स मिले, जिसमें से ऑकलैंड 25,423 क्लेम्स जिसका वैल्यू या कॉस्ट $37.4 मिलियन था.

0: कि हमारे पास अभी भी आपको इनाम देने का एक और एक बहुत ही बढ़िया मौका है, जो कि है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1,000 बोथ ऑफ न्यू वर्ल्ड शॉपिंग वाउचर्स जीतने का।
1: लॉजिक फाइनेंस और गुरु कंट्रोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिन्हें आप कॉल कर सकते हैं 0800 लॉजिक जी पर, उनकी ओर से ये इनाम है। और याद रखें कि टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए hum.rover.nz आप विजिट कर सकते हैं, और जब भी आप 5599 पर टेक्स्ट करते हैं, इस बात का ख्याल रखें स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई। लेकिन अ टोटल ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस हैं, और किस्मत तो आपको अपनी आजमानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल, तो इसके लिए आपको हम दे रहे हैं अगला गाना बजने तक का टाइम, जहां पर अपनी एंट्रीज आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स, तो इसके लिए आपको हमारे पास अपनी एंट्री अब सेंड करनी होगी। और हमें ये बताना है आपको कि लॉजिक लिखना है सबसे पहले, LOGIC लॉजिक लिखें, फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखें और हमारे पास सेंड कर दें 5599 पर। वी ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि आपको अपनी एंट्री सेंड करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। रिमेंबर, जब तक कि अगला गाना बज रहा है सिर्फ तब तक का टाइम है, सो गेट स्टार्टेड। अगर $1,000 का न्यू वर्ल्ड का शॉपिंग वाउचर जीतना है, लॉजिक लिखें, अपना नाम लिखें और 5599 पर हमारे पास इसे आप भेज दीजिए।

0: A very beautiful rendition by Neha Bhasin, जिन्होंने इसे गाया. वैसे ये जो गाना है ओरिजिनल, ये राहत फतेह अली खान की आवाज़ में था. सुल्तान फिल्म से 2016 में ये फिल्म आई थी, लेकिन इसका ये बड़ा ही खूबसूरत फीमेल वर्जन नेहा भसीन ने गाया. फिलहाल अब टाइम इज़ अप. जितने लोगों ने हमारे पास अपनी एंट्री सेंड की फॉर आवर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ न्यूवल शॉपिंग वाउचर्स जीतने के लिए, अगर आपने सही तरीके से और कीवर्ड के साथ अपनी एंट्री सेंड की है तो आपका एंट्री हमारे पास पहुँच चुकी है और इसके साथ साथ ड्रॉ में आपका नाम भी शामिल हो चुका है. अगली अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी जानने के लिए आपको हम सुनते ही रहना है. बाय द वे, बिफोर यू मूव ऑन, याद दिला दे आज वेंसडे 14th अक्टूबर है, टुमारो इज थर्सडे 15th ऑफ अक्टूबर. थर्सडे को ड्राइव शो पर इलेक्शन स्पेशल ये लेकर आते हैं और रिसेंटली दे गॉट अ चांस टू टॉक टू या फिर दे विल बी पुटिंग ऑन स्पॉटलाइट अपॉर्चुनिटी पार्टी के जो पार्टी लीडर है इनको, और इनसे बातचीत जो है ये होगी जहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन ये करने वाले हैं अबाउट अपॉर्चुनिटी पार्टी के पॉलिसीज के बारे में, अलाइनमेंट्स के बारे में और उनका जो विजन है न्यूजीलैंड को लेकर, और पार्टी जो है किन स्टैंड्स पर इश्यूज पर अपना सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है जिससे कि वो कीवीज को प्रायोरिटी बनाए, और साथ ही साथ उनका कौन सा ऐसा पॉलिसी है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें बाकी पार्टी से अलग रखती है. दीज आर सम ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसके बारे में सवाल उठाए जाएंगे और जवाब जो है ये अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर से ली जाएगी फ्रॉम सैनियन रोजबे ऑन ड्राइव शो का इलेक्शन स्पेशल जो कल आपके लिए रहेगा, तो इसका हिस्सा बन सकते हैं. इट्स हैपनिंग टुमारो, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू ड्राइव शो 5 PM जहां पर ये आपके लिए ये इलेक्शन स्पेशल लेकर आएंगे. और अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि ये दोनों पूछे तो उसके लिए भी आप सवाल अपने ड्राइव लिखकर 5599 पर मैसेज कर सकते हैं.
1: Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें.
2: पहली, समय को समझना समझदारी है. समय को समझना समझदारी है, पर समय पर समझना जिम्मेदारी है.
0: ओह, वेरी ट्रू.
2: ये तो थी आज की पहली बात
0: जी.
2: और आज की दूसरी बात जो है उस पर भी थोड़ा गौर कर लें. और ये जो है
0: गुम
2: हो
0: गया.
2: हो सकता है कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया हो. कहते हैं कि सैलरी बढ़ाने को बोलो तो बोलते हैं तुम काम क्या करते हो.
0: अच्छा.
2: छुट्टी लेने की बात कहो तो कहते हैं तुम्हारा काम कौन करेगा.
0: सोच सकते हैं इस मामले में आप. सवाल जवाब दोनों एक ही में मिल गया ना. चलिए एक बार फिर से सुना दीजिए.
2: सैलरी बढ़ाने को बोलो तो पूछते हैं कि तुम काम ही क्या करते हो.
0: राइट.
2: और छुट्टी की बात करो तो कहते हैं तुम्हारा काम कौन करेगा.
0: चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने की, जाने का समय जो हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ के लिए, आप सभी के कीमती समय के लिए जो आपने आज सुबह से हमारे नाम किया. और अब एक वादा और, जहां पर कल फिर से मुलाकात होगी आपके साथ ब्रेकफास्ट शो के सफर में जो ठीक सुबह 6 पर आपके लिए लेकर आएंगे.

0: The highs of 19, overnight temperature of 10. आज का फोकस बताया जा रहा है. कुछ सुबह के समय बारिश जो थी वो कम होती चली जाएगी, बट ये जो है नॉर्दर्लीज आपका साथ देते भी चले जा रहे हैं.
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हाँ.

0: Factor.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और ऐसे में जब मैं बात कर रही हूँ आपके साथ कि क्या चल रहा है भाई, आज हम्पवार हो गया। और अब जब हम्पवार आ गया, देखो त्योहारों के दिनों में जितने लोग फास्टिंग भी कर रहे हैं, आज संडे को शुरू हुआ था राइट, एंड संडे मंडे ट्यूसडे तीन दिन, चौथा दिन हो गया आज, बताइए फास्टिंग का। और ऐसे में आपका जो एक खूबसूरत साथ होता है बहुत बढ़िया लगता है। अब ये साथ आपका मेरा मुमकिन हो जाता है कशिश फूड्स के सौजन्य से, जो मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान आपका साथ निभाने के लिए मुझे बिल्कुल आतुर कर देता है। मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक का शिकार आ चुकी हूँ स्टूडियोज में, 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। स्टे ट्यून, कीप हमें
0: बचाओ क्या

0: Experts Adda.
1: एक बात तो है कि जब हमारा जीवन का संघर्ष होता है ना, वो किस तरह से पूरा करते हैं हम कितने छोटी छोटी चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के बाद अपना एक घर बनाते हैं। कोई भी न्यूजीलैंडर अगर होते हैं, दे हैव नॉट गिवन अप देयर होप, जहाँ पे उनको पता है कि उनका एक नया घर हो सकता है। कई लोग एक छोटा घर होता है उससे स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ओनरशिप्स रखते हैं अपने। अब ट्रेड मी पर एक रिसर्च के जरिए पता चला 82% फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 30 अभी भी उनका मन है कि दे शुड बाय अ हाउस, जबकि 77% ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी घर लेने की ज़रूरत नहीं या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। बट ट्रेडिशनल पाथ ऑफ ओनरशिप राइट नाउ इज चेंजिंग इन न्यूजीलैंड। 35% जो हैं ये चाहते हैं इनका घर होना चाहिए, अपना घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में 33% कहते हैं एक छोटा घर, और 30% कहते हैं एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट हम उठा लेते हैं, और 28% जो होते हैं वो डिले कर देते हैं, क्योंकि उन्हें या तो स्टडी करना होता है या अपने बच्चों को देखना होता है या फिर ट्रैवल करना होता है। सो कुछ आउटर स्पेस या कुछ वो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से प्रभावित ज़्यादा नहीं होते, एंड दे प्रोबेबली थिंक दे शुड नॉट थिंक। 4% लोग ऐसे होते हैं जो डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट घर ओनली, कहते भाई हमें पता नहीं हम क्या करने वाले, बट हम तो आपको बता देते हैं कि ऐसा चलता ही रहता है। ट्रेड मी के जरिए पता चला यंग बायर्स जो हैं डिस्पाइट द मार्केट अपने पेरेंट्स के साथ भी कुछ लोग घर के साथ कंजंक्शन जोड़ देते हैं। 501 न्यूजीलैंडर्स फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 30 एक रिसर्च के जरिए पता चला है कि उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर अंदर वो घर खरीद लेंगे, एंड दे थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ देयर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे वॉन्ट टू टेक। सो ये जो गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि 77% नॉन होम ओनर्स जो बिलीव करते हैं अगर हम इवेंचुअली घर बाय करेंगे ही करेंगे। अगले लोग, कुछ लोग सोचते हैं हमें बाय करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 61% लोग होम ओनर्स जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर बायर्स बने, अभी मार्केट चल रहा है, हो रहा है। तो कोई, कुछ लोगों के पाथ फिक्स नहीं है, कुछ लोगों के पाथ फिक्स है। आप किस कैटेगरी में आते हैं जरूर मुझे बताइए।
0: My time with Kashika.
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं।
3: Hey, ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा, एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है,
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
11: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
12: Enrolled yet?
11: How about you?
12: Are you enrolled? Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
13: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
14: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800 564424.
15: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.

0: बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
1: Your data just found a plus one. Join or renew on an eligible Spark prepaid value pack and get double the data. Offer ends 30 November 2026. Double data doesn't roll over. Join Spark prepaid today. T's and C's apply.
2: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Office shout out.
4: ऑफिस शाउट आउट में आज मेरे पास विम से, मांगरी से आप रश्मि सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे आपको बता देती हूँ कि मेंटल अवेयरनेस का हफ्ता है। एक मोमेंट आप ज़रूर निकालिए। अगर आप नोटिस कर रहे हैं आप खुद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी चेंज है आपके मूड में, आपकी नींद में, आपके खाने पीने में, आपके रूटीन में, कुछ इमोशनल सपोर्ट की अगर आपको ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू सम पीपल। एक सिंपल चेक इन कीजिए खुद के लिए। और एशियन फैमिली सर्विसेज एक फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देते हैं। एशियन फैमिली की हेल्पलाइन जो है वो है 0800-862-342। और अगर आपको लगता है कि कोई इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कुछ मुस्कुराने का मौका भी आपके लिए लेकर आऊँगी जस्ट इन अ बिट। स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग।
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: बात कर रहे हैं जब फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के बारे में, तो बता देते हैं $5,000 में से आपका शेयर क्या होने वाला है. अब इसमें $5,000 में बहुत सारे इनाम हैं और फॉर्चून राइज और फॉर्चून वाले जो हैं आपको $1,000 कैश देना चाहते हैं, जाके कुछ भी खरीदिए. वैसे फॉर्चून के बारे में इतना बता देती हूँ, होल ग्रेन एसेंशियल विटामिन फॉर्चून आपको बहुत बड़े बड़े तरीके देता है. घर में आप अपना फॉर्चून बना सकते हैं. यहाँ फिलहाल अपना फॉर्चून बनाने के लिए आपको फॉर्चून लिखना है, स्पेस देना है और मुझे बताना है कि व्हाट इज़ वन फॉर्चून जो आपको लगता है आपका एक जैकपॉट होना चाहिए, वो क्या हो सकता है लॉटो में. चलिए 5599 पे फॉर्चून लिखिए. 5599 पे फॉर्चून लिखने के साथ आप अपना जैकपॉट का अमाउंट लिखिए और साथ साथ आप अपना नाम लिखकर हम तक पहुंचा दीजिए. बस आपका टाइम अभी चल रहा है, शुरू हो रहा है. इसके थोड़ी देर बाद ये गाना जो आप आलिया भट्ट का सुनेंगे, उसके बाद आपके लिए आ जाएगा, बंद हो जाएगा रास्ता. ओके, अब उसके बाद टेक्स्ट नहीं लूँगी मैं.

0: I don't know how many of you have watched Drishyam 3, but Drishyam 3 is one movie which I was like little bit confused ki ab kya hone wala hai, kya nahi hone wala. But, you know, I think after seeing Drishyam part 1 and part 2, aapko pata chali gaya tha ki end mein kya hone wala hai. So, bas this kind of a twist, maine to interpret kar liya tha, but I do not know if you have actually interpreted it. Lekin abhi interpretation ki jab baat chali rahi hai, to main baat karna chahti hoon dreams ke bare mein, aapki dream ke bare mein. Kuch to bataiyega mujhe zarur. Aap log 0800 hum par mujhe call bhi kar sakte hain. मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे।
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
2: Yeah, I love New Zealand. I do.
3: I really do. But it feels like I'm working harder than I ever have just to get by.
4: Just to get a decent shot at life.
5: Living in my 7th rental and still saving for a house deposit. And every day I meet people avoiding the doctor because of the cost.
6: The cost of living's a joke. Try running a business.
7: I just want someone who thinks about people like me.
8: Party vote Labour.
9: Party vote Labour.
10: Party vote Labour.
11: Party vote Labour.
12: Better starts now.
13: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
14: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
15: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Rosskill ya Botany in Namaste Indian Supermarket se koi bhi 2 fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
16: Glad I got my enrollment sorted the other day.
17: See, mate, I told you it was easy.
18: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
17: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
18: Really? What if I miss it?
17: Well, your vote won't count for this year's election.
18: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
19: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: दिवाली आई खुशियां लाई BFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं BFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं BFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च BFSL और कॉल ऑनलाइन 846-9934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई
8: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtaon ke vastra, sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Veena and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
9: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colours and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.
6: Now's the time to switch to hybrid at Winger Motors, your home of Chery. Make the most of up to $3,000 off across the Tiggo 4 Hybrid, Tiggo 7 Super Hybrid and Tiggo 8 Super Hybrid range. T's and C's apply. Get into a hybrid SUV for summer, starting from just $29,990 plus on-road costs. Hurry, offer ends October 31st. Visit Winger Motors, West Auckland, Green Lane at Pukekohe or winger.co.nz.
4: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: बातें जब चल रही है गरबा और इस तरह से आप तो एक चीज़ें हैं, आपको सपना आ रहा था कि आप गोल गोल गोल गोल गोल गोल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं. अब एक तरीका होता है कि आप या तो सूफी स्टाइल जब वर्लिंग कर रहे होते हैं, वेस्ट अफ्रीका में ये रिचुअल डांस होता है, हिंदूज़ में नटराज शिवजी के सामने डांस होता है. ये कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो रिदम डिवाइन एनर्जी आपकी क्रिएट करते हैं, और हो सकता है ये डिवाइन एनर्जी आपकी भी क्रिएट हो रही है. व्हाई नॉट. बस एक बात बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कहीं पर कोई ऐसा है जो आप बहुत इंस्पायर्ड हैं अदर देन योर फैमिली मेम्बर्स और समथिंग यू नो योर फ्रेंड्स, तो आप फैमिली मेम्बर्स ब्लड रिलेटिव, तो आप उनको अपना दिया बना सकते हैं. और जब भी हम टेलीफोन लाइंस खोलेंगे तो डेफिनेटली आप कॉल करके बताइए आपकी जिंदगी का दिया कौन है. $300 कैश जीतने का सुनहरा मौका, आप खोइएगा बिल्कुल नहीं. ये लाइंस कभी भी आपके लिए खुल जाएंगी.
4: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो जब मैं बातें कर रही हूँ कि क्या खास चल रहा है क्या खास नहीं चल रहा, तो अब देखिए थ्रोबैक की तरफ भी पहुँच चुकी हूँ। इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता है ना, ऐसा घंटा तो जाने के पता नहीं कैसे। बट आप देखो, कभी आपको ये गाने पसंद आते, कई बार आपको ये गाने पसंद नहीं आते हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है रोवा के ज़रिए। चाहे वो आप 60s के ट्रैक सुनना चाहते हैं, 70s के ट्रैक सुनना चाहते हैं तो रिवाइंड, जुक बॉक्स यानी 80s के ट्रैक सुनना चाहते हैं तो फिर ठीक है यार। लेकिन आप फीजी से हैं और आपको फीजी के भजन, फीजी के कीर्तन पसंद है, तो उसके 24/7 हमारे स्टेशन आप सुन सकते हैं। आप पंजाब से हो और पंजाबी गाने सुनने हैं तो चढ़दी कला और राहत फतेह अली खान का अब अमेजिंग म्यूज़िक अगर आप सुनना चाहते हैं तो बस वो भी आपके लिए मुमकिन हो जाते हैं। रोवा हमारा म्यूज़िक स्टेशन जो है, इसके ज़रिए आप पहुँच कर डेफिनेटली इन्हें इंजॉय कर सकते हैं।

0: दुआ लेंगे। मुझे लगता है कि एवं बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे। मुझे छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
1: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
0: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
1: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
0: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
1: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
2: इंडिया आ रहा है ऑकलैंड एंड द ब्लू टाइगर्स नीड योर वॉइस बिहाइंड देम। देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को। एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।
3: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
4: Enrolled yet?
3: How about you?
4: Are you enrolled?
5: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
6: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
10: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz। दैट्स commonwealthvault.go.nz।
11: Time check.
12: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
11: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The ACT Party is vowing to undo a change made to renters' tax under Labor. If elected, it would abolish loss ring fencing, meaning owners would be taxed on their total income, including any rental losses. Leader David Seymour says it would stop costs from trickling down.
14: Will reduce government revenue by $264 million, but it will also reduce the average rent by $210 a year.
13: And National's plan to give Auckland a kickstart includes better parking. The party would let councils dictate the minimum number of parking spaces allowed in new suburban developments. Transport spokesperson Chris Bishop says there are too many cars on berms and sidewalks.
15: We expect that councils will take that up. Many of them wanted to do it. They're a bit annoyed that the law changed in 2020 and that they couldn't do it anymore.
13: A three-month drug operation in Taranaki has seen $15,000 seized and six people arrested. Meth, a homemade taser and multiple other items were also discovered across two properties in New Plymouth last week. And Luna has been crowned Christchurch's favourite dog name by a small margin. The city council says it beat the name Charlie by just one. There are also 24 Tacos in the city and 30 Kevins. In sport, a big result for All Whites midfielder Joe Bell in football's Champions League this morning. His Norwegian side Viking scored in the 90th minute to earn a 3-3 draw with German giants Bayern Munich. Elsewhere, English side Manchester United lost 2-0 to Atletico. Arsenal won 3-0 against Lille. And the Speed Golf World Championship is coming to Auckland next month. Whitford Park Golf Club will host the event, which has been staged in the Southern Hemisphere for the very first time.
2: Sports News.
11: Brought to you by

देखो ना, गर्मी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में जब मैं बात करती हूँ, दी हाइस ऑफ 22 वन आई टेम्परेचर 14 आज का फोकस बताया जा रहा है। पार्टली क्लाउडी डे रहेगा, कुछ आवर्स जो है दोपहर तक चलने वाली हैं एंड नॉर्दर्लीज भी आपका साथ देंगे। 7:37 पर सनसेट बताया जा रहा है।

0: माय टाइम में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ मैं कशिका। ऑल द वे 12 बजे तक आपका मेरे साथ बना रहेगा। हम वार के दिन आपका बर्थडे है तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू जोगेश। हाउ यू बीन एंड योर फ्रेंड्स आर एक्चुअली मिसिंग यू बिकॉज यू आर नॉट हेयर टुडे एंड यू आर अवे टू इंडिया सेलिब्रेटिंग योर 50th। सो वाई नॉट वी गिव यू अ शाउट आउट सॉन्ग लगाना जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। हैप्पी बर्थडे का शाउट आउट है आपके लिए, लेकिन कशिश फूस का थैंक यू भी कहना चाहते हैं जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे आपका साथ निभाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक कशिका आ जाती हूँ स्टूडियोज में। सो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
1: बचाओ क्या

0: Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी और जब आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी आपने कहा कि भाई कितने सारे ऑप्शंस हैं. मैं आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट इट बट मे बी शायद आपने शायद सुना हो या ना सुना हो. लेकिन यस बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप फास्टिंग के टाइम पे साबूदाना टिक्की बना सकते हैं. लेकिन साबूदाना बनाने के पहले आपको उसको एक दिन पहले भिगोना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. कुटू का चीला जो बना सकते हैं, कुटू का आटा है उसको आपने लेना है और उसको आपको लोग पूरीज बनाते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों को अब थिन हॉट तवा के ऊपर ये चीला जो बना के मज़ा आता है. आप उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. इसको आप पनीर डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी डाल के भी आप ऐड कर सकते हैं. मखाने का चिवड़ा आप बना सकते हैं जिसमें सिंघाड़े के आटे से आप बैटर से स्लाइस किए हुए या तो पोटैटोस को पनीर को आप ऐड कर सकते हो. तो तेल गरम कर लीजिए, आपने मखाने उनमें ऐड कर दिए, आपने उसके बाद उसमें तरह तरह के आपने फ्रूट्स और आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए और साथ में आपने मीठा नीमक इसमें ऐड कर दिया. आलू की टिक्की व्रत वाली. पानी आने लग गया मुँह में, उबले हुए आलू को आपको सेंधा नमक पे टॉस करना है, नींबू डालना है, थोड़ा भुना हुआ जीरा डालना है, लाल मिर्च डालनी है, दैट्स अबाउट इट. कुछ इमली की चटनी डालनी है तो आप डाल सकते हैं, दही डालना है तो डाल सकते हैं. सिंघाड़े के पकौड़े बहुत कॉमन हैं और कुछ लोग तेल में इनको लेके बनाते हैं. कोई जो आप आलू वगैरह ऐड करके उसमें आप बिल्कुल सिंघाड़े के पकौड़े भी बना सकते हैं. और फ्रूट और नट की लस्सी, भाई आपको केला डाल के, एप्पल डाल के, हैंडफुल ऑफ बादाम डालने के बाद आप कोशिश कीजिए, दोपहर के समय आप ये ले सकते हैं. और एज आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर एज वेल. एंड शकरकंदी की आप चाट ले सकते हैं और साथ में आप कुछ चिक्की वगैरह तो मिल ही जाती है ना. इन्हें सबको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं.
0: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay family holiday from $1,249 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
6: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
7: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
8: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला From Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
9: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424.
10: The sky cracks open. Your nemesis descends. He's brought an army. It's a bit dramatic. And there you are, cape billowing, jaws set, underwear over your pants.
11: The fate of Tamaki Makoto rests on your buff shoulders, so you leap into the sky, adjust your underwear, and shoot!
12: The next station is Te Waihorotiu.
7: Watch, scroll, draw, game, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains, and ferries.
13: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
14: Indelible Homes, your building expert.
15: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.

0: Six Word Story. तो मेरी आज की जो सिक्स वर्ड स्टोरी है वो भी काफ़ी डिफरेंट है और दिस इज़ रिलेटेड टू यू नो नवरात्रि एंड योर फास्टिंग टाइम. सो द फास्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा वो आया है द फास्टिंग एंड डिवोशन एस्पेक्ट वन यू नो उसमें उन्होंने लिख के भेजा है लव द फास्टिंग एंड डिवोशन एस्पेक्ट. इट इज़ वेरी नाइस वेरी ब्यूटिफुली सेड. और इसी के साथ साथ अब मैं बात करती हूँ अबाउट कि क्या खास है. तो भाई आपको बता देती हूँ हमारे पास जो खास इस समय देने के लिए है आपके लिए एक तो बात इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे एक दिया एक कहानी जो है आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस दौरान आप जब भी हम आपके लिए लाइंस खोलें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ जो आपकी लाइट ऑफ लाइफ है उनके बारे में कहीं ना कहीं आप कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए. इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो आपकी ज़िंदगी की लाइट ऑफ लाइफ कौन है. ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकते. $300 जीतने का बहुत ही सुनहरा सा मौका है. और अब जब आप ये सिक्स वर्ड स्टोरी के साथ साथ अब हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं तो याद दिला देती हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें याद दिलाना तो कहते हुए काशिका तुम तो बहुत चीज़ें याद दिलाती हो. क्या करूँ मेरा नाम ही आप लोगों ने रिमाइंडर क्लॉक रखा हुआ है. जब आपने रिमाइंडर क्लॉक बोल ही दिया है तो आई हैव टू बी वेरी वेरी पक्का ना ऑफ व्हाट आई डू. चलो गाना सुनते हैं.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

तो टाइम आ चला जाए, फ़ोन उठाइए और आप बड़े लॉजिक के साथ अपना काम इस्तेमाल कीजिए। 100 नहीं 1000 डॉलर्स के बर्थ के न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स आपको गुरु कंडोला और लॉजिक फाइनेंस मिलके दे रहे हैं। एक हाउस होल्ड का नाम बन चुके हैं गुरु कंडोला इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और फाइनेंस इंडस्ट्री में। आप इनसे बातें कर सकते हैं 0800 LOGIC G5599 पे। लॉजिक लिखिए और लिखिए कि लॉजिक फाइनेंस के किन से आपको बात करनी चाहिए, लॉजिक फाइनेंस में किन से बात करनी चाहिए। बड़ा फेमस नाम है, इनका नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, हम तक पहुंचा दीजिए। बस आप समझ लीजिए, ये अगला गाना जो बज रहा है हीरिए, उसके ठीक बाद मेरी कोशिश है कि बस एंट्री आपकी तभी तक लूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जो आप हमारी rova.nz की आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, और साथ साथ स्टैंडर्ड करियर चार्जेस भी अप्लाई किए जाते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।

0: Klassiker.
1: Boah.
2: Hau.
1: Angut.
3: तो जब मैं बात कर रही हूँ कि क्या खास चल रहा है, आपको बता देती हूँ, हम चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा मैच आके देखें 12 नवंबर के दिन, जहाँ ऑल वाइट्स आ रहे हैं और इंडिया की फुटबॉल की टीम भी आने वाली है। दिस इज गोइंग टू हैपन एट द गो मीडिया। अगर आप ये डबल पास जीतना चाहते हैं और इस एक्शन का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पर आप आ सकते हैं और हमारे फेसबुक के पेज पर आप आकर देखिए ये मैच इन्जॉय कर सकते हैं। तो आपको एक फेसबुक के पेज पर थैंक करना है न्यूजीलैंड फुटबॉल को और किस तरह आप गेम पे जाना चाहते हैं, टैग कीजिए किसको आप लेके जाना चाहते हैं, आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड करेंगे। याद रहेगा ये ने गेम्स वगैरह का अनाउंसमेंट किया था ऑलरेडी मार्क मिशेल ने, जब इन्होंने बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे उस दौरान स्पोर्टिंग इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स दोनों नेशंस के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। आ जाइए हमारे फेसबुक के पेज पे, हो सकता है हम और आप कम्युनिटी में एक साथ आए ऑन एंड ऑफ ऑन द पिच। इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। शेयर कीजिएगा आप अपनी फेवरेट टीम को और मज़ा कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। देखते हैं कि इंडिया या न्यूजीलैंड की ऑल वाइट्स टीम फाइनल्स में जाती है।
4: Gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
4: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
6: All right, Pippa, now we're going to do a radio ad.
7: Can't you just use my line from the TV ad?
6: Well, let's just do it again, please, Pippa.
7: Phone dollars are for phones.
8: Obviously?
6: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
7: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching.
8: Obviously.
6: QTs and Cs.
9: Eligibility and Ts and Cs apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
6: Call any NBIT.
9: One New Zealand. Let's get connected.
10: There's more to your everyday rewards. From points on weekly shops to cents off at fuel stops. Get more value on everyday spending. It really is never ending. Enjoy more rewards and more value today. TCs and exclusions apply.
11: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
13: बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
14: दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
15: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
14: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ, 190 स्टोरेट रोड, माउंट रॉस्किल। कॉल 09629333।
16: Octopus Factory Farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
17: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Ab se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser. लेजर ट्रीटमेंट, स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू. और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz. सिलेक्टेड ट्रीटमेंट पर 50% ऑफ ऑन नाउ. कॉस्मेटिक क्लिनिक सिर्फ पार्क की तरफ से. हैप्पी दिवाली.
0: Media voice complaints. How can I help?
1: Yeah. Hello.
0: Hi.
1: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
0: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
1: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
0: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
1: Great. Sing it to me.
16: Advertise with
2: Media Works.
16: New Zealand listens to us.
4: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
18: Rescue me, recycle me.
3: कल तो वैसे मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया था कि ये एक ऑकलैंडर से कहा जा रहा है कि आप को बहुत ज़्यादा चेतावनी दी जाती है आपको जो बैटरीज आपकी ख़त्म हो जाती हैं कि किस तरह से आप उन बैटरीज को आप डिस्पोज करने के लिए कर्ब साइड पर रख दें. इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई जगह आग लग सकती है और ऐसे में जब हम चाहते हैं कि ये बैटरीज वगैरह जो होती हैं आप इनका इस्तेमाल ना करें. अब एक और चीज़ जो हुआ है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर आप कोशिश करके पता भी लगा सकते हैं, बगैर ये ई वेस्ट का आज वो दिन बहुत खूबसूरती के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर 11 फायर्स हुई हैं और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में भी 17 रबिश बिन्स में 11 फायर्स हुई हैं. और साथ साथ ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं आप रीयूज़ करना चाहते नहीं करना चाहते आप, आपको बाहर रख दीजिए आप कर्ब साइड पर. इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. और ये एक गुड न्यूज़ है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिसाइकल डिवाइस एबिलिटीज एंड इकोटेक ये सेफ्टी असेस इलेक्ट्रॉनिक्स जो रीयूज़ करने के लिए आपके मटेरियल्स को तैयार हैं. आपको रिपेयर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बट यू कैन डेफिनेटली पुट इट आउटसाइड. ये आपकी बैटरी जो है कभी ड्रेन नहीं होती, कभी हो जाती है. मेक श्योर यू आर यू नो सस्पेक्ट करें अगर आपकी कोई बैटरी है लीक हो रही है तो. रिसाइकलिंग ट्रक अभी कुछ दिन पहले ही 2026 अगस्त में स्नेल्स बीच में ये इशू हुआ था. लैपटॉप्स को रिसाइकल बिन में आप मत डालिएगा वरना वहाँ पे भी फायर होने का चांस है. रबिश फायर जो है आपको पता है वो भी आप घर पर बिल्कुल नहीं कर सकते. इंश्योर दैट यू आर रियली लुकिंग आफ्टर द कंट्री, यू आर रियली लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग.
4: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: आज मैंने कितनी बात की, वैसे चलो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशी का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार। मेरी मुलाकात नहीं, ओ माय गॉड, कल दिन वो कहलाएगा बृहस्पतिवार, आज कहलाएगा हंपवार, तो मेरी मुलाकात आपसे होगी, वो दिन कहलाएगा, कितनी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ मैं, बट डजंट मैटर। आज का दिन कहलाता है हंपवार और मेरी मुलाकात आपसे जब होगी वो दिन कहलाएगा वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड यस, आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस भीगा भीगा सा मौसम, टेकिंग यू बैक इन टू द स्टूडियो, थोड़ी देर में आ जाएंगे आपका साथ निभाने के लिए केतन, तो उनका साथ जरूर दीजिएगा लंच बॉक्स में। टेक केयर, बाय बाय।

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes, but instead,
6: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
7: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
8: At Bunnings, spring really does start in the garden. Come into Bunnings, bring the tamariki down, find something that we can all get involved in. Nothing better than getting outside to do your gardening.
9: Get watering with a Pope 30-metre True Blue garden hose, only $48.17. Tidy up the backyard with a Nazito PXC 18-volt cordless line trimmer kit, $209. And grab some Yates 4-litre hose on weed and feed, just $30.46.
8: We've got what you need for less.
10: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
11: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.

0: Box with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sastrikaal, assalamu alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein, jiska naam hai Lunchbox Show. वेलनेस बने रहिए. आज अभी से लेकर 3 बजे तक मैं हूँ यहाँ पे. बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गपशप, एक से बढ़कर एक गाने और यस आपके इस फेस्टिवल यानी कि अभी जो ये पूरे बचे हुए महीने में जो फेस्टिवल्स होने वाले हैं उसके लिए आपके पास हम लेके आएंगे, आपके लिए हम लेके आएंगे बहुत सारे अनगिनत मौके जहाँ पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम. उसके लिए क्या करना है, बस बने रहिए, सुनते रहिए. मेरा नाम केतन है और मैं हूँ 3 बजे तक. लेट्स प्ले दिस अमेजिंग सॉन्ग, बहुत ही तड़कता भड़कता सा. सो यस, होम सिक रेमेडीज के लिए आप मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए 5599 पे एंड लेट्स सी कि कौन किस चीज से कितना वाकिफ है और कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं आप. सो यस, 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे भेजिए टेक्स्ट. लेट्स प्ले दिस सॉन्ग, मजा नी लाइफ.
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक। वेल आज का जो मैसेज है वो मैंने पिक किया है मनीष भाई का। वो कहते हैं, लास्ट वीकेंड माय कीवी कलीग्स इनवाइटेड मी टू अ कैजुअल बैकयार्ड गैदरिंग एंड द ईमेल इनवाइट क्लियरली सेड प्लीज ब्रिंग अ प्लेट। आई ऑनेस्टली थॉट द होस्ट वेल मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ मैं अभी तक, मैंने पढ़ा नहीं आगे का, लेकिन लिटरली आई नो ये कहाँ जा रहा है। सो यस, आई ऑनेस्टली थॉट द होस्ट वॉज रनिंग शॉर्ट ऑन crockery so I packed two clean ceramic dinner plate from my kitchen into a bag and took them along. When I arrived, everyone was placing platters of brownies, sausage rolls and dips on the table while I was standing there shiftly holding two completely empty ceramic plates. Back home, hospitality means the host feeds you until you can't walk, and asking a guest to bring something is considered rude. Standing there with empty plates in front of everyone was the most awkward moment of my life. How do we decode these confusing of Kiwi phrases? Well, this is not just Kiwi phrases, but even if you go to Canada or Australia or somewhere else, this is how they do. And problem to tha. Pehli baar jab main aaya tha, maine bhi struggle kiya tha, and I was like on the same page. So you are not the only person. I can bet you. But yes. थोड़ा मुझे टाइम लगा, बट आई अंडरस्टूड। ऑब्वियसली ये थोड़ा एम्बेरस वाला तो फील हो जाता है कि भाई सब लेके आए हैं पॉटलक जिसे कहते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ और ही था सिचुएशन। सो ये थोड़ा टाइम लगा मुझे समझने में, बट यस एट द एंड ऑब्वियसली मैं समझ गया था कि दिस इज हाउ द कल्चर ओवर हियर वर्क्स। सो मैं तो ये कहूँगा, हाईली रिकमेंड टू एनीवन जिसको अभी तक मौका नहीं मिला ऐसी पार्टी में जाने का, मैं आपको हाईली बोलता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोकल से पूछना शुरू कर लीजिए, और या फिर इवन फ्रॉम योर कम्युनिटी एज वेल, इफ दे आर लिविंग हियर फॉर लॉन्ग दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। बट यस, एक थोड़ा सा देसी जुगाड़ में कोशिश करता हूँ, होपफुली आप तक यू नो पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो मनीष भाई थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड एम्बेरसिंग मोमेंट पर शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको, ये होता है, ये सभी के साथ होता है, आप अकेले नहीं है, और ये हम सभी के साथ कहीं ना कहीं पहली बार भी हुआ होगा या फिर हो सकता है सेकेंड टाइम पे हुआ होगा। वेल आज का गोल्डन रूल और जुगाड़ नोट कर लो आप, जो कि न्यूजीलैंड में जब भी कोई बोले ब्रिंग अ प्लेट, समझ जाओ कि खाना लाना है, या फिर ब्रिंग योर ओन BYO, तो वो उसका मतलब है कि भाई अपनी ड्रिंक खुद लेके आओ। अगर कुकिंग का टाइम नहीं है तो सिंपल जुगाड़ ये है कि गैदरिंग में जाने से पहले किसी भी यहाँ के जो लोकल सुपरमार्केट्स होते हैं वहाँ पे जाओ, एक डब्बे में वार्म मिनी स्प्रिंग रोल हो गया, या फिर चिप्स हो गए, या फिर कीवी अनियन डिप्स हो गए, या लोकल इंडियन स्टोर से एक बॉक्स कॉकटेल समोसेज, या फिर यू नो रिलेटेबल चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। बट ऑफकोर्स टेबल पर वहाँ जाके आप रख लो और सब लोग आपके लाए हुए स्नैक्स पर टूट पड़ेंगे और आप इंस्टेंट हीरो बन जाओगे। बट आई एम फीलिंग या लिटिल बट थोड़ा सा फील तो हो रहा है आपके लिए ब्रो, क्योंकि आई नो ये एम्बेरसमेंट थोड़ा मैंने भी फेस किया था व्हेन आई वाज लिटरली न्यू, लाइक लिटरली मेरे 2 या 3 दिन ही हुए थे न्यूजीलैंड में और ये तब हुआ था। बट यस थैंक यू सो मच, कोई यहाँ पे है जिसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, डू टेक्स्ट मी ऑन 5599, आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स मेरे साथ। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे
1: पसंद है लड़का। हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: It's Woolworths Health and Body Sale. Refresh your routine for less with up to 40% off on Oral-B products and up to 25% off on Schwarzkopf. Stock up and save on your everyday favourites. T's and exclusions apply. Only at Woolworths.
6: Like the smell of grass in the morning? Trade Chester has been long become legendary. From seed to scarifiers, mowers to mulches, we've got everything you need to turn that embarrassing patch of Kaikilia into a golf green this summer. Want to be a lawn legend? Head to Trade Chester today.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
8: Hey you, your scrolling just got rewarding. Renew 3 times in a row with Skinny to collect Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny. Happy, happy, happy,
9: oh. My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
10: रुजबेन 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
11: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
10: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
11: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights, 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
10: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
11: बुक नाउ विद सन टूर्स।
10: कॉल करें 0800-478-686।
12: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50-inch टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल 09846-9934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
3: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हम playing Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
14: हम
0: आज ऑफिस शाउट आउट के लिए किसी का मैसेज तो नहीं आया, लेकिन यस हम एक चीज को शाउट आउट करते हैं, वो है फेस्टिवल फॉर्च्यून। आप जीत सकते हैं $5,000 के वर्थ प्राइजेस के शेयर्स। जी हाँ, आप शेयर करेंगे उन प्राइजेस को, ऑफ कोर्स बट यस वो शेयर वाली भी अमाउंट भी इतनी ज्यादा बढ़िया है दैट यू विल फील लाइक यार क्या गजब, यार गजब कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो क्या यहाँ पे तो लकी है, बट यस प्राइजेस दिस दिवाली विद हम 30 अक्टूबर को इसका डिस्क्लोजर होगा। और यस आज आपको लिख के मुझे भेजना है NZPMI और स्पेस अपने नाम के साथ मुझे भेज दीजिए 5599 पे, बिकॉज इसके जरिए आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ माइट 10 वाउचर्स। एक विनर होगा इसमें। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, आपका लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट। विजिट NZPMI.co.nz या फिर उन्हें कॉल करिए 0800-4NZPMI। आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं hum.rova.nz। बट यस एक चीज याद रखिए, अभी मैंने अनाउंस किया यानी कि अभी से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है टू अप्लाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन। टू सेंड मी द टेक्स्ट ऑन 5599 याद रखिएगा, NZPMI लिखना ना भूलिए और अपना नाम भी।
3: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

वेलकम बैक। हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे चर्चा कर लेते हैं। आज की हिस्ट्री है रिगार्डिंग सुसेन एबर्ट अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड मदर सुपीरियर। वेल, आज के दिन 1892 को न्यूजीलैंड हिस्ट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जहां पे सुसेन ऑबर्ट, जिन्हें मदर ऑबर्ट के नाम से जाना जाता था, जो डॉटर ऑफ अवर लेडी ऑफ कंपैशन नेम के रिलीजियस ऑर्डर की पहली मदर सुपीरियर अपॉइंट की गई थी। फ्रांस में बॉर्न सुसेन 1860 में न्यूजीलैंड आई थी और माओरी कम्युनिटीज के साथ काम करने लग गई थी। वो फ्रेंच, इंग्लिश और टे रियो माओरी में काफ़ी फ्लुएंट थी। उन्होंने पूरी फैमिलीज, सिख पीपल और कुछ अबंडेंट चिल्ड्रन की हेल्प की, साथ में कुछ काफ़ी गरीब परिवारों की भी, और हेल्प करने के बाद ऑफकोर्स उन्होंने इतना कुछ वहाँ पे सीखा और सिखाया भी। वैसे मिशन के लिए फंड्स जो है उसे भी रेज करने के लिए उन्होंने माओरी ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज भी प्रिपेयर करने शुरू कर दिया था और उन्हें बेचना भी शुरू किया था। बाद में वेलिंगटन में उन्होंने ऐसे केयर होम्स और सपोर्ट सर्विसेज स्टैब्लिश किए जो नीडी पीपल और चिल्ड्रन की हेल्प करते थे। 1926 में उनकी डेथ हो गई और 2016 में पॉप फ्रांसिस ने उन्हें वनरेबल डिक्लेयर कर लिया था, जो सेंटहुड की तरफ एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, सबसे पहले पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं, दिवाली स्पेशल ऑन हम। दिस दिवाली आप एक्सपीरियंस करिए एक टाइमलेस स्टोरी ऑफ द रामायण विथ हम। मंडे ऑनवर्ड्स आप रामायण एक गाथा सुन सकते हैं, करीबन 1 से 2 मिनट की एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेमोरेबल स्टोरीज, कैरेक्टर्स और मोमेंट फ्रॉम द रामायण प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंटेड अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द डे। करीबन 8:20 सुबह, फिर 1:30 दिन के, एंड देन 6:45 पे। एंड दीज शॉर्ट्स बट पावरफुल स्टोरीज आर डिजाइन टू ब्रिंग द स्पिरिट। आप सुन सकते हैं ये इन टाइमों पे। बट यस, दिस दिवाली सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विद स्टोरीज दैट हैव लिव्ड फॉर जनरेशन ओनली ऑन हम। साथ में इलेक्शन टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे और लेके आ भी 2-3 हफ्ते हो गए लेके भी आ रहे हैं। तो इस बार का जो नया कंटेंट है वो दिस थर्सडे आप ड्राइव शो में सुनिए, ऑटेरोवा स्पीक्स। वी आर पुटिंग द स्पॉटलाइट जो कि अपॉर्चुनिटी पार्टी से आ रहे हैं, पार्टी लीडर कोयल वोंग, और कन्वर्जेशन करेंगे वो पार्टी पॉलिसीज, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स एंड विजन फॉर न्यूजीलैंड, जहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा कि जो अपॉर्चुनिटी पार्टी है वो कहाँ स्टैंड करती है, क्या सोच रही है और किस तरह का फ्यूचर वो प्लान आउट कर रही है। ऑफकोर्स कौन सी पार्टी जो है काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे सकती है। एंड येस, वी ऑल्सो पुट द स्पॉटलाइट ऑन क्रिस हिपकिंस, जहाँ पे वेस्टेड वोट कमेंट एंड आस्क व्हाट दैट मीन्स फॉर स्मॉल पार्टीज, ये सारी बातें आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें भेज दीजिए 5599 पे, मेक श्योर आप ड्राइव लिखें और भेज दीजिए 5599 पे। बट यस, और क्वेश्चन भी हो तो वहाँ पे वुड बी सो ग्रेट। बट यस, मेक श्योर करना कि थर्सडे को आप फ्री रहें, शाम के 5 बजे ड्राइव शो में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम। March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
5: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
3: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
2: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
8: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI.
11: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26. 1.5K min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards. T's and C's apply.
12: Did you get my text about eggs?
13: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
14: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी, इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November. T's and C's apply.
15: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, bae. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
16: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
15: Yeah, that sounds like me.
16: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
15: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
13: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: मैं हूँ हरीश लोडिया. दिवाली के धूम एट सोना संसार नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी के स्टॉक्स आ गया है. सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है. लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है. डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस. सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड. हमारा फोन नंबर 629-3333. फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz.
17: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
18: Lots.
17: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
18: Probably.
17: Am I paying for this free coffee?
18: Definitely.
17: Will they talk me into an upgrade?
18: Oh.
17: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
19: Cheer, Midas.
20: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
21: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
22: हाँ, अच्छा
21: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
22: मिसेस सिंह.
23: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
24: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन. फोकस किचन यूनिट के

0: Chutney Shots.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. और फटाफट से स्टोरी आपको बता देता हूँ. फटाफट से खबर जो है यहाँ की आज की वो अभी बता देता हूँ. न्यूजीलैंड इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल डिबेट जो है वो कंटिन्यू होते जा रहा है. नेशनल और लेबर के बीच इकोनॉमी, टैक्स रिलीफ और कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे इश्यूज पर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स सामने आ रही है. वोटर्स के लिए अब इम्पॉर्टेंट होगा कि पार्टीज के प्रमाइसेस और उनकी फंडिंग प्लान्स को क्लोजली देखा जाए. लेगो बॉक्स और पूल लॉन्जर में मेथ स्मगलिंग की कोशिश. न्यूजीलैंड में अथॉरिटीज ने एलिजिट ड्रग स्मगलिंग अटेम्प्ट के बाद एक पर्सन को अरेस्ट किया है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स सामने आ रहे हैं. टीचिंग काउंसिल ने सीरियस फेलर एक्सेप्ट किया है. एक इंडिपेंडेंट रिव्यू में ने पाया कि कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर टिमोथी फिशर के केस में काउंसिल ने कई अपॉर्चुनिटीज के बावजूद टाइमली एक्शन लिया है नहीं लिया. काउंसिल चेयर पैट्रिक वॉल्स ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली हैंडल नहीं की. इंटरनेशनल से क्वांटस फ्लाइट पर बेड बग कंप्लेन. पर्थ से रोम जाने वाली नियरली 17 आवर्स फ्लाइट के पैसेंजर्स ने बाइट्स की कंप्लेन की. एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट को डीप क्लीनिंग के लिए ग्राउंड किया और अफेक्टेड पैसेंजर्स को ऑल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी दिए गए. स्पोर्ट्स में ऑकलैंड एफसी फैंस के लिए गुड न्यूज. स्ट्राइकर सैम कॉसग्रोव सीजन ओपनर के लिए अवेलेबल होंगे. उनकी 2-match सस्पेंशन क्लब के रिजर्व टीम के नेशनल लीग मैच में सब हो गई, इसीलिए वो ए लीग के ओपनिंग मैचेस खेल सकते हैं. इलेक्ट्रिक एवेन्यू फेस्टिवल्स के एक्स्ट्रा टिकट आ रही है. क्राइस्टचर्च के सोल्ड आउट फेस्टिवल के लिए ऑर्गेनाइजर्स एडिशनल 4,000 टिकट रिलीज करेंगे, लेकिन कैच ये है कि टिकट सिर्फ ग्रेटर क्राइस्टचर्च से के रेसिडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं. सेल की एग्जैक्ट डिटेल्स अभी अनाउंस होनी बाकी है. और रोटो

0: Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, आज का जो सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे मोस्टली सभी को पता होगा, अगर आप स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं तो। आज वो शख्स अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं, ऑब्वियसली इंडिया में अभी तो अर्ली मॉर्निंग।

है सो दे डेफिनेटली आर नॉट सेलिब्रेटिंग एट दिस टाइम अनलेस अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो बात अलग है. पर यस yes, वो अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं आज. डेट वैसे उनकी बर्थडे तो शुरू हो चुकी है बट टू गिव यू द हिंट ये बेसिकली दो वर्ल्ड कप विनर है एज अ टीम मेंबर रह चुके हैं. ऑब्वियसली खेला भी है इन्होंने और दो वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं और साथ में इन्होंने रिसेंटली एज अ कोच दो और कॉम्पिटिशन जितवा के दिए हैं अपने देश को अपनी टीम को. सो यस आपको बताना है मुझे गेस करना है कि ये कौन से खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ. अगर स्पोर्ट्स की अगर बात करूँ तो क्रिकेट की ये बात है और नाउ यू नीड टू गेस एंड डू लेट मी नो 5599 पे कि कौन है ये प्लेयर जो आज प्लेयर तो नहीं अब आई मीन प्लेयर विल ऑलवेज बी प्लेयर राइट. उसको अपन ये नहीं कह सकते ना एक्स एक्स प्लेयर तो हमेशा यू नो दे विल बी प्लेयर. इट्स ओनली दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 और प्लेइंग 16 बट ही इज अ पार्ट ऑफ टीम. जी हाँ तो यस मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अगर इसके ज़्यादा बता दे तो आपको सच मुझे पता पड़ जाएगा आपको ढूंढने की या सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट यस टू टाइम एज अ प्लेइंग 11 ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड टू टाइम एज अ कोच ये जीत चुके हैं. तो यस 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे भेजेंगे.

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less. Bunnings Warehouse.
2: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Book a five-night fly-and-stay family holiday from $1,249 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
4: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
5: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
0: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर. अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स. स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू. और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. बुक ऑनलाइन एट द कॉस्मेटिक क्लिनिक .co.nz. सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स